0: हमारे पुरखों ने लेकर गए भारत से और आज तलक हम लोगों ने करते आए हैं, और हर हर जैसे कि आप लोगों पूरा सब जगह जा पाते हैं, तो हम लोगों का यहाँ जो शहर थोड़ा दूर दूर से है, जैसे कि देन हाग, रोटरडम, लेवार्ड और अम्स्टरडम, इन शहरों में होलिका दहन का और मनाया जाता है, यानी कि होलिका दहन किया जाता है। पर हम लोग एक शहर से दूसरे शहर अभी तलक इस बात पे कभी चिंतन नहीं किया गया था, और ज़रूर इस जैसे कि आप कह रहे हैं तो हम सब के पास ज़रूर वो फैसिलिटी है, तो हम एक दूसरे के साथ ज़रूर जा करके इसका। और महत्वपूर्ण बात जो अभी आपने कहे कि एक दूसरे के साथ जा करके मिल करके और ना सिर्फ गुजिया खाएंगे पर खूब एक दूसरे के गुलाल भी लगाएंगे। पंडित सूरज जी, मैं एक प्रश्न और रखने वाले हैं आपके साथ, पर ज़रूर एक इस बात को कहना चाहूँगा कि चौताल जो अभी हम लोग यहाँ चलाते हैं, और जो होलिका जैसे कि आपने कहा 8 दिन तलक वहाँ होते हैं, तो हम लोग यहाँ जब उसका कोशिश किया जाता है बुढ़वा मंगर तलक, उसके बारे में आपके क्या संदेश है?
1: ये बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी का। वही ये सेम चीजें हैं, आप तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप उसको जो है यहाँ की जो परंपरा है आप वहां निभा रहे हैं। होली का त्योहार ही इसीलिए होता है कि अगर मन मुटाव हो गया है, मन में मैल जग गया है, आभास हो जाता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं और जो है आपसी प्रेम सौहार्द बन जाता है, और एक दूसरे से मिल करके आपस में जो है बैठ करके जो जितनी बातें होती है एक दूसरे से परस्पर मिलन होता है। कहते हैं कि मन की आटी अटपटी झटपट दर्शन, जैसे अटपट मिट जाता है झटपट दर्शन हो जाता है। तो जब प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चाहो प्रजा चाहो शीश दिए ले जाए। जब आदमी झुकता है दूसरे के प्रति, गुजिया क्या है, गुजिया में मीठापन होता है, जब मीठा आदमी मीठा खाता है तो मिठास आता है। ऐसे ही एक दूसरे से जब मिलते हैं तो सारे वैर भाव भूल करके और प्रेम से मिलते हैं तो सारे वैर भाव भूल जाते हैं, सारे आपस की जो तनातनी होती गायब हो जाती है। उस दिन हम लोग प्रेम से मिलते हैं और जो है अगले साल के लिए एकदम से वादा करते हैं कि पूरा जीवन आपके साथ हम जो है ऐसे ही प्रेम स्पर्धा बना रहे। चलो

0: अति सुंदर रूप से आपने गुझिया का संदेश भी रख दिया पंडित सूरज जी, जो हम शायद इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जो मीठापन है और ख़ास करके। पर इसमें एक छोटा सा प्रश्न और, क्योंकि मन में ये लालच बढ़ रहा है कि आपसे प्रश्न करते रहूं, पर हमें भी अपना रेडियो का समय पे ध्यान देना है, तो एक छोटा सा और प्रश्न रखता हूँ कि हम सब जो चौताल का और जो आखिरी वाला हम लोगों ने जब वहाँ से जो इस घर से यानी कि कहीं मंदिर है तो कहीं किसी के घर पे जा कर के चौताल करते हैं, तो आखिरी वाला हम लोग गाते हैं कि सदा आनंद रहे वो द्वारे मोहन खेले होली हो, तो वो अभी वहाँ गांव में भी होते हैं?
1: जी जी जी, गांव में होता है अब धीरे धीरे आधुनिकता के दौर पे, लेकिन फिर भी जो है हमारे बुजुर्गों ने आज भी जो है सजोए रखा है। हम सब युवा पीढ़ी को संदेश देते रहते हैं और हम सभी भी उसी को आगे ले जाने के लिए अथक प्रयास में रहते हैं, और गांव गांव सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का, और साथ साथ एक कार्यक्रम और का जो है हम लोग कराते हैं कि जैसे होली हो जाए, होली होने के जैसे अभी इस वक्त होली हो चुका है, लेकिन हम लोग 8 दिन तक जो होली मनाते हैं वो प्रयास करते हैं कि कम से कम 8 एरिया में जा करके नए नए लोगों से मिल करके उनको अपना बना करके अपनी तरफ आकर्षित करते हुए और अपना प्रेम सद्भाव का शिक्षा दे सके, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके, इसी को जो है होली कहा जाता है। होली मतलब होली, उसके साथ होलिया, वो मेरे साथ होले, प्रेम बना रहे। जी

0: संदेश सुनने वालों, जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अपना गांव जो करगोपुर है भारत देश, और ये बात है कि जरूर आप में ये दिल चस बनाने के लिए हम सब ये कार्यक्रम को रखते हैं। 105 तक यार 150 साल होंगे जो हमारे भारतवासी, हमारे पुरखों जो अपना और भारत को छोड़ करके सूरीनाम को गए थे, और सूरीनाम में जाकर आज कहीं 1873 से पीढ़ी जो सूरीनाम देश में, सूरीनाम से भी और हॉलैंड देश में आए, और कभी ये प्रश्न रखिए कि मैं किसका बीच हूँ, मेरे और जो वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो आज हमारे साथ जो अपना गांव से जुड़ा हुआ पंडित सूरज देवराज जी, जो हम सब के लिए अपने ओर से संदेश दिए, तो पंडित जी कुछ और संदेश आपके ओर से है और हम सब के लिए, जो खास करके हमारे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों, जो आपके आवाज़ दुनिया में 188 देशों तक सुना जा सकता है, तो कुछ और संदेश से हम सबको सुनाइए।
1: आप सभी को, जितने भी लोग हैं सभी को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आनंद पूर्वक ऐसे ही बुढ़वा मंगल तक, जैसा आप लोग परंपरा बनाए हैं, ऐसे मनाते रहें, और ये होली सदा होली बनती रहे, सदैव प्रेम मिठास बना रहे, सदैव जो है एक दूसरे के प्रति अनुराग बना रहे, सनातन में श्रद्धा बनी रहे, यही सुभाशीष, यही आशीर्वाद, आप सभी का प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। जय श्री राधे राधे।
0: सुनने वाले, सुंदर रूप से हमारे साथ जुड़े रहे पंडित सूरज देवराज जी, जो करगोपुर भारत से, और हम सब के अपना, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि अपना गांव से, जहाँ से हमारे पुरखों छोड़ करके और देश को और सूरीनाम गए थे, और वहाँ का संदेश हम सबको सुनाए। पंडित जी को एक बार से फिर हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, और गीत के बाद फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: वालों, बहुत गर्व के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ भी इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा संदेश लेकर हमारे परम आदरणीय पंडित नरेंद्र सरजुबी सिर जी, जो एक महान यज्ञ सूरीनाम देश में करके आए हैं, और उनके ओर से एक ऐसा शब्द उन्होंने प्रयोग किया जिसे हम थोड़ा बेचैन हो गए कि कैसे वो और किए। तो पंडित जी, सर्वप्रथम आपको स्वागत किया जाता है फहून हिंदुस्तानी रेडियो में, और जैसे कि अभी आपने हमें ये संदेश दिए कि आपने भारत को गए और भारत से नंदेश्वर महाराज को लेकर के सूरीनाम गए, तो पहले आप अपना एंट्री डालते हैं। पंडित जी, आपको स्वागत किया जाता है।
1: फाहुन रेडियो की श्रोतागण, आप सभी को सब हृदय नमन, सप्रेम नमस्कार। जैसे अभी आपने कहा है तो हम गत दिसंबर को गए थे भारत, वहां से शिव मंदिर, जो शिव मंदिर वेखनार पे पोत का है हंसू पे, तो उन्होंने निवेदन किया था नंदीश्वर भगवान को वहां से लाने के लिए, तो गए थे भारत और वहां से वो नंदी महाराज को ले करके निकले बेंगलोर से, बेंगलोर से अबू धाबी, अबू धाबी से पहुंच गए फिर हॉलैंड में, तो कोई प्रकार के विघ्न बाधा इत्यादि नहीं उत्पन्न हुआ, और फिर यहां से हॉलैंड से उनका जो अंतिम स्थान था जहां उनकी स्थापना होने वाला था वो था शिव मंदिर वेखनार पेपर पॉट सरनाम हंसू में। तो यहाँ की जो है कई हजार किलोमीटर बाबा ने पार किया, और ये चिंतित थे हम कि कैसे बाबा को हम साथ ले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो है स्थान वहां मंदिर में लोग बना चुके थे उनको वहां स्थापना करने के लिए। तो जबकि आप लोग को पता है कि हवाई जहाज में जाने से पहले सिक्योरिटी जो है, संरक्षण जो है, तो बहुत बहुत सख्त है, और मैंने सोचा कि चलो अगर बाबा को जाना है तो बाबा ही इसी सिलसिला में, इस समस्या में हाथ बटाएंगे। तो सिक्योरिटी पहुंचकर मैंने उन लोगों को संकेत कर दिया कि देखो ये हमारे बाबा हैं, वो मंदिर के लिए हम साथ ले जा रहे हैं, और आपसे निवेदन है इसको आप देखें, और बाबा की ही कृपा हुआ, बाबा ही तैयार हुए, बाबा ने सब आयोजन कर दिया कि सिक्योरिटी ने उनको सिर्फ स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन्हें कहा मनेर यू माख्यूरख आप अपना जो यात्रा आप जारी कर सकते हैं। तो बाबा को भारत से ही हांत बखाशे में हम साथ ले करके पहुंचे हैं सूरीनाम, और जबकि इस यज्ञ के सिलसिले में वहां की जो योगदान देने वाले हैं और जो उपसभापति है, जो बहुत जनता के लिए और धर्म के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और बाकी जो हैं मंदिर के सदस्य और जो सभापति हैं और अन्य लोग, वो जब मूर्ति का खुलासा हुआ तो वो लोग वहां रो पड़े, वो भावुक हो गए, और बाबा को पहले अभिषेक करा करके दूध दही जल गंगा जल और शहद और शर्करा घी के साथ उनको पूरी तरह अभिषेक किया, और वहां से घंट नाद और शंख नाद से लेकर के उनको अपना स्थान पर ले जा करके वहां उनका स्थापना हुआ, बस बिल्कुल बाबा की ही आमने सामने। और जब भी आप नंदी महाराज के जो सिंह हैं, उनकी दो सिंह के ऊपर आप अपने जो है उंगली डालें, आप दायम एंड वाइस फिंगर, अगर वो डाल करके और उस जो छिद्र है उसको बीच में आप देखें, और तो आपको साक्षात ही सामने बाबा दिखाना चाहिए, बाबा को आप उस रूप में आप देखेंगे। सो हुआ ये, और बड़ी बड़ी श्रद्धा और बड़ी प्रेम के साथ ये यज्ञ को जो है लोग सुसंपन्न किए, और जबकि हंसू में पहली बार ये जागरण का प्रोग्राम महाशिवरात्रि के अंतर्गत रखा गया था, तो काफी लोग वहां पधारे। तो ये जो श्रेय है, ये श्रेय हमारे धर्म का जो है, ये है हमारे बाप दादे के ऊपर जाते हैं, जिन्होंने हम सब के ऊपर वो संस्कार डाले, हम लोग के अंदर में संस्कार डाले और अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना

0: ही है जो अपना जहां जिसको लिटिल इंडिया कहते हैं लोग, जब जहां की अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना धर्म, अपना भाषा, अपना भेषा और भूषा सब अभी कायम रखे हुए हैं, ताकि ये भी इस बात को प्रेसिडेंट मोदी जी ने कई साल पहले वो गए थे सूरीनाम और यहाँ हॉलैंड में रुक करके उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप जानना चाहते हैं हम क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो सूरीनामी लोग से आप मिलें, सूरीनाम से जो है आप जाकर देखें कि हमारी क्या है। बाकी अन्य देश जो आसपास में है वहां तो संस्कृति और सभ्यता तो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन सूरीनाम एक ऐसा देश है जहां जैसे बाप दादे पहले आए थे वहां ही ऐसे सब लोग ऐसे कर रहे हैं। और सो क्योंकि भारत का उन्होंने एक एक उदाहरण दिया कि आजकल के जो माँ बाप हैं तो अब अपना मातृभाषा छोड़ करके, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो भाषा को छोड़ करके इंग्लिश भाषा में बच्चे से बात करते हैं, तो वहाँ हमारी जो संस्कार है, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता है, उसमें जाकर लुप्त हो जाता है। और यहाँ तक इसी संकेत से अपना वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अब ये अवसर हमको प्रदान किए। 5 जून को तो 150 साल हो गए हैं जो भी हमारे पुरखे श्री राम को ढूंढने के लिए, श्री राम को पाने के लिए अपना देश छोड़ करके वहां पधारे, और ये बड़े गर्व के बात है कि हमारा निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारा दृढ़ता अभी तक बना रहे और बना रहेगा, यही भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।
1: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी, जो अपने अमृतवाणी से हम सबको अपना संदेश रखे, और ख़ास करके ये संदेश है कि भारत से अभी हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि नंदेश्वर स्वयं भारत से जाकर के सूरीनाम में विराजे हैं। तो हम कार्यक्रम के और अपने समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं। आशा ये रखता हूँ कि कार्यक्रम में ज़रूर कुछ न कुछ संदेश आपके मिले होंगे।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे और सहयोग दिए पंडित सूरज देवराज जी, जो खरगोपुर और भारत से हमारे साथ जुड़े, और हॉलैंड से पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी, जो अपने ओर से अपना संदेश रखे। आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश जरूर आपके पास पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मैं हूँ संजय और सभी को एक नमस्कार।

करो और प्यार करो। सुंदर सा गीत यहाँ आपकी सेवा में जो नशर किया गया है आज इस सुबह की कार्यक्रम में सुनने वालों, यहाँ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ पेश किया जाता।

लंदन के ये फिल्म जो हम उस फिल्म से जो हमने आपके लिए निकाली है और आपने सुने हैं, फिल्म का नाम मोहरा। जी हाँ, जिंदगी जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो। जी हाँ, जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए इसलिए मैंने तुम्हें सोचना बंद और जीना शुरू कर दिया हूँ।

सही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीजें हो, अच्छा हो बुरा हो, कभी अंधेरा हो कभी उजाला हो, हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा, कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा। जब आप काम करेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर नौकरी हासिल करेंगे, आपका हमेशा झगड़ा रहेगा, जो मेरा जूनियर है वो ऐसी बात करता है, मेरा सीनियर जो है ऐसी बात करता है। लेकिन सब जो है जिंदगी से जूझ रहे हैं, इस जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ग्रेस जो है, वो लीवे जो है, हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं, जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे हैं और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे। ग्रेस से बड़ी चीज आप जिंदगी को वापस नहीं लौटा सकते। जिंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीजें हो, अच्छा हो बुरा हो, कभी अंधेरा हो कभी उजाला हो, हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी

जाने कहाँ दिल खो गया, फिल्म दिल से सुंदर सा गीत जो निकाले गया है, और यहाँ से मिलकर इस सुबह की आज की तारीख में हम यहाँ से सुने और श्रवण की है।

जाने कब आके दबे पाँव, जाने कब आके दबे पाँव, गुजर जाती है मेरी हर सांस। जाने कब आके दबे पाँव, गुजर जाती है मेरी हर सांस। मेरे जिस्म पुराने

दम धमा दम, ये सुंदर सा गीत और यहाँ से मिलकर हमने सुने हैं। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिर की तरह यादें वही खड़ी रह जाती है, यादें वही खड़ी रह जाती है रुके रास्तों की तरह। उदित नारायण की आवाज़ में।

जी हाँ, तो है मेरी किरण फिल्म डर से और उदित नारायण जी की आवाज़ में हमने यहाँ पर और सुने हैं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को, चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर। बहुत अच्छी लाइन है, सुनिए जी। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, ज़िंदगी कैसी भी है, ज़िंदगी कैसी भी है,

जिएंगे और प्यार में ही मर जाएंगे, यह सुंदर गीत फिल्म मोहरा से निकाला गया। एक उम्र के बाद उम्र कहते हैं लाइफ टाइम के, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें बहुत याद आते हैं, एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आते हैं, पर वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आते हैं।

उदित नारायण से हमने सुने कि एक दोस्त ढूंढता हूँ, दोस्ती के लिए दुनिया है हसीनों का मेला।

बिना कुछ किए सिर्फ एक ही चीज़ आगे बढ़ते हैं, अब वो है हमारा आपका उम्र यानी कि लाइफ टाइम।

मरहले इश्क मोहब्बत प्यार हमको सुनाए अल्ताफ राजा जी ने। सुने वालों, चिट्ठियाँ चिट्ठियाँ के ज़माना, कितना सब्र होता था, कितना प्यार होता था कि हम इंतज़ार करते थे कि कब कोई चिट्ठी आए, कुछ कोई ख़बर ऐसे आए। और आजकल इतना सुविधा हो गई कि आज तो रिप्लेस ज़रा सा देर हो तो रिश्ते भी टूट जाता है।

कमाने वाले को पता होता है, कमाने वाले को पता होता है पैसा कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं।

का यज्ञिक शंकर महादेवन। हाँ जी, शंकर महादेवन ने ये सुंदर से गीत सुनाए कि कोई चाहे तो ले जाए। जो लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, जो लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उस तरह से व्यवहार करना बंद कर दिया कि जैसे वो चाहते थे। तो इस बार हम सुनते हैं देवेंद्र सिंह सियुना जी।

वाकई में बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारा शहर का मौसम वाकई में बहुत सुहाना लगे सुनने वालों। और यहाँ से हम आपको बता दें कि आपका और मेरी यहाँ से मिलन जो है, तो अफसोस के साथ हमारा आपका मिलन यहीं तक है। हम यहाँ से आपसे रुखसत होंगी, कल फिर मिलेंगे। मिलने के लिए ये ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी दो पल की है, मज़े में जी लो। ज़िंदगी दो पल की है, मज़े में जी लो, वक्त वक्त की बात है यहाँ सब ऐ दोस्तों, इसलिए कल का छोड़ो और आज में जी।

मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम। और हम आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ साथ देने और सुनने के लिए।

मित्रों, क्योंकि ये जीवन बहुत बेअंबनापूर्ण है, खुशी को जानने के लिए दुख की आवश्यकता होती है, मौन की सराहना करने के लिए शोर की और उपस्थिति की सराहना करने के लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है। मित्रों, इसीलिए हो सके तो आप हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें।

दोस्तों, जीवन में कभी आशा मत खोना। आशा सब कुछ चालू रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। कभी मत सोचो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और कभी मत सोचो मित्रों कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन हमेशा सोचो, मेरे पास कुछ है, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे। मित्रों, ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे।

भाई बहनों, आप और आपका परिवार हमेशा हरे घास के मैदान की तरह फूलों के सुंदर रंगों और बेहद आकर्षक खुशबू के साथ खिलते रहें और एक व्यक्ति की तलाश में एक सच्चे व्यक्ति को मत खोइए, क्योंकि पूर्णता एक कल्पना है लेकिन सच्चाई हमेशा एक वास्तविकता है, हकीकत है। कृपया इसे याद रखें।

सुनने वालों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और यहाँ से सुबह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं हूँ संजय और आपके साथ कुछ समय व्यतीत करेंगे।

और जहाँ खुशी है तो कहीं भी गम भी हो सकता है, तो जहाँ गम है भगवान से विनती प्रार्थना किया जाता है कि उन्हें शक्ति प्रदान करे।

जो तैयारियां कर रहे स्कूल जाने के लिए, तो उनसे कहूंगा कि माँ सरस्वती जो ज्ञान का भंडार देने वाले हैं, उन्हें भूलना नहीं।

जैसे कि अभी आपने सुने हरिओम सरन जी की आवाज में इस सुंदर सा भजन। सुनने वालों, ऐसा हुआ कि प्रश्न गुरु महाराज जी, भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है और उनका ये नाम क्यों पड़ा, बताने के कृपा करें, ऐसा प्रश्न रखे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न रखा गया तो उसका उत्तर ये कहा जाता है कि पशुपतिनाथ शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक शब्दादिक और एक तात्विक।

जाता है कि शब्दिक अर्थ जब लिया जाए तो पशुपतिनाथ, पशु पति और नाथ तीन शब्दों से और जुड़ा हुआ है, अर्थात पशुओं का पति वह नाथ। पति का अर्थ होता है पथ रखने वाला, कहा गया है कि नानक पथ पति जाइए जा पति राखे सोई। नाथ अर्थात भगवान। इस अवप्रकार पशुपति नाथ का अर्थ हुआ पशुओं का रक्षा करने वाला भगवान।

जय माता दी जयकार के साथ ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। सुनवलो, भारत में एक गांव कहा जाता है मोहनजोदड़ो नाम से, और एक बार ऐसा हुआ कि एक भयंकर बाढ़ आए और वो पूरे गांव वहां से लुप्त हो गया था। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो एक गांव था और वहां पर खुदाई हो रहे थे, यानी कि वैज्ञानिक द्वारा जो हम आर्कियोलॉग कहते हैं, और वहां से भगवान शिव का एक बहुत पुरातन तस्वीर मिली। इसमें भगवान शिव ध्यान के अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके चारों ओर पशुओं बैठे हुए अर्थात

आते हैं चित्रित में और स्पष्ट भगवान शिव को पशुओं की स्वामी के रूप में और चित्रित किया गया है। वैसे भी हम देखे कि भगवान शिव के गले में सर्प को अवधारण किया है। वाहन भी एक वृषभ यानी कि एक बैल है। केवल भगवान शिव के ही नहीं, सभी धर्मों के अनेक और देवी देवताओं के वाहन पशुओं ही है। जैसे देखा जाए कि सरस्वती माता का वाहन हंस है, देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू, गणपति का वाहन मूषक है, देवी दुर्गा का वाहन सिंह और रोम का देवता विनस का वाहन कपोत है।

संकेत है कि पशु परमात्मा द्वारा और रचित इस सृष्टि के अभिन्न वे महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि समय और परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार कई बार ईश्वर ने पशु रूप में भी अवतारित लिया।

विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य, कश्यप और मुवारह अवतार पूर्णताय पशु रूप में ये थे और नरसिंह अवतार आधा नर और आधा पशु रूप में अवतारित थे।

ईश्वर ने तो हमें कितने ही अवसंकेतों द्वारा समझाया है, पशु भी परमात्मा की ही रचा तथा परमात्मा के ही रचना है और उसे प्रिय है।

संसार मेरी माया से उत्पन्न है और इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है, और भगवान ये भी कहते कि वे सभी मुझे प्रिय है, क्योंकि सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, सभी मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। सभी हमारे प्रिय होते हैं। समझ समझ के समझो, यह भी एक समझ है, क्योंकि इसमें हमें किस प्रकार दृष्टि डालना है। जितना चराचर जितना जीव है, कहावत है कि सब भगवान के द्वारा उत्पत्ति, भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए हैं।

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है

अन्यत्र कहा गया है कि आखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोही बराबर ही दया, कि सब पर मोही बराबरी दया। ये संपूर्ण विश्व मेरे पैदा किया हुआ है, अथ सब पर मेरी और बराबरी दया, यानी कि बराबर का और दया है।

कवि ने इन्हीं अवभावों को शब्दों में कुछ यूं पिरोया है। उन्होंने इस प्रकार से लिखा है, कि मानो पशु पक्षी लता पदप कीट पतंग सब में प्रभु नित्य वास रहे। सब में उनके अंग कहने का भाव कि इस अवधारा पर श्वास ले रहा प्रत्येक जीव प्रभु का अंश है, इसीलिए प्रभु को अप्रिय है। परंतु ये सभी सत्य ही है। इन सभी जीवों में से मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सर्वोत्कृष्ट है। ईश्वर ने मानव को अपने जैसा ही बनाया है।

संबंधों का कुछ पांच सीढ़ियां होते हैं। देखना पहला होता है, अच्छा लगना दूसरा होता है, चाहना तीसरा और चौथा होता है पाना। ये चार बहुत सरल सीढ़ियां है। सबसे कठिन पांचवा सीढ़ी है, इसे हम निभाना कहते हैं। तो दोस्तों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अक्तंत भजन प्रोग्राम जो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और अगला भजन जो रोटरडम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

अनूप जलोता जी के आवाज में हम सब सुंदर सा भजन को जो सुने, रोटरडम होपफुली टेक्सस वेग 5 श्री विष्णु मंदिर संस्था हिंदू सेवा संघ संस्था जागृति श्री गंगा माता मंदिर रोटरडम वेस्ट ब्लॉक बाकरस्ट्रात 46 श्री सरस्वती माता स्कूलन कॉम्प्लेक्स भवन से पंडित मंडली सभापति श्रीमान पंडित राजकुमार महातम जी के ओर से कि जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो, कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं।

गंगा के किनारे, ये हरीशराज रघुवंशी ने ये सुंदर सा भजन को और गाए है। अगला भजन जो हम रखने वाले हैं हमारे अख्तंत भजन प्रोग्राम कार्यक्रम के

शिव ही मेरी स्तुति, शिव ही मेरा ध्यान, शिव ही है मेरे गुरु, शिव को कोठी कोठी प्रणाम। अगला भजन का मांग करने वाले श्रीमती लीलियन मोतीराम जी। श्रीमती लीलियन मोतीराम जी जो अपने ओर से ये सुंदर सा भजन हम सबके लिए मांग किए हैं। दुनिया के हर एक कोना में जहां तक इंटरनेट है ये कार्यक्रम को सुना जा सकता है।

हर हर महादेवा रे देवा, ये सुंदर सा भजन जो स्पॉन्सर किया गया फ्रॉ लिलियन मोतीराम जी के ओर से।

जिनका व्यवहार अच्छे और दिल छू लेने वाला होता है, जिनका व्यवहार अच्छे और दिल छू लेने वाले होते हैं, उनके लिए दुआएं अपने आप निकल आते हैं। हमारे फाहुन का डायरेक्सी और सभी स्टाफ लेडर की ओर से ये सुंदर सा भजन जो हम अब आपके लिए प्लेयर पर चुन करके रखे हैं।

सुनने वालों, ये सुंदर सा भजन जो हमारे डायरेक्शन और स्टाफ के ओर से रखा गया। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं और अनूप जलोता जी के आवाज में। सुनने वालों, हमारे अगला भजन जो स्पॉन्सर किया गया है दनहा खेई क्नेटल स्ट्रातिन हिंदी प्रचार संस्था परिवार चांद गुरबीन के ओर से। हिंदी के बारे में कुछ भी मानो बात आपको करना है, कैसे पढ़ना है, लिखना है, कैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बारे में आप जरूर चांद गुरबीन जी को और मालूमात कीजिए। उनका तार का नंबर है 06 45 09 05 26। उनके ओर से ये सुंदर सा भजन।

0: सुख के सब साथी,
1: मेरे राम
0: दुख में ना कोई। सुनने वालों, यहाँ तक हमारा हिस्सा

खेतवा के पीछे रहती थी नानी, रोज रोज गगरिया में भर लाती थी पानी। एक रोज मुझे नानी से मुलाकात हुई, मैंने नानी से मांगा एक गिलास पानी, नानी मुझे छुटकार दिया। हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए।

से मीनी को तो होइगे तीन खेलो सब आज हमारे घर कारज परोसिन भाई नाराज न होइए हमारे घर शादी परोसिन भाई नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न होइए हमारे घर शादी

आकाशवाणी रेडियो फाउन के सुनने वालों, प्यारे भाइयों बहनों, जान पहचान वालों, दोस्तों, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा, जो कि बहुत जरूरी है। मैं हूं आपके सेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम, सलाम सत श्री अकाल, राधे राधे, शाम से मिला दे, नमस्कार हो जी। आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, सुनने वालों, जो लाइव एंड डायरेक्ट आपके कानों तक लात या जाता है। और इसी के साथ साथ हमने एक सुंदर सा गीत आपके लिए चुन कर रखी हूँ, और वो है जो गाया गया है लता जी के मुखारबिन से, साथ दे रही है मोहम्मद रफ़ी जी।

हाँ बस होने लगे दिल में टिक टिक टिक, जरूर से होना चाहिए। हम जिंदा है इसलिए हमारे दिल टिक टिक टिक करते। लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने सुने हैं। बता दे हम आपसे कि फिल्म का नाम है हम जोली। ये सुनिए जी, सांसे किसी का इंतजार नहीं करते। हमारे सांसे जो है ना, वो किसी का इंतजार नहीं करते, बल्कि चलते रहते हैं या चल देती है। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए।

ये भी ज़रूर कहूँगी सुनने वालों की, ये कलयुग है जैसे हम आजकल सुनते हैं, ये कलयुग है साहब, ये कलयुग है। यहाँ इंसान किसी की मदद करने में भी अपना फ़ायदा देखता है।

फिल्म प्रेमनगर, प्रेमनगर से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है और हम देखे हैं निखत फिरन से फन तक ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। किशोर दा और लता जी की आवाज़ में हमने यहाँ से मिलकर और सुने हैं।

जी हाँ, कुछ कुछ तो कहता है रोमांटिक सॉन्ग आप सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेगा। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेगा।

ता चला गया। इसमें म्यूजिक दिया है जयदेव, गाना का लेखक है साहिर लुधियानी। इस बार हम सुनेंगे एहसान तेरा हो।

सुने रफ़ीक जी के आवाज़ में पहला भाग और दूसरा भाग में लता जी के आवाज़ में, और इस बार फिर एक बार हम सुनेंगे रफ़ीक जी के आवाज़ में।

जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। म्यूजिक दिया इसमें रोशन, और इस बार ये सुंदर सा गीत है कि जियो तो ऐसे जियो कि जैसे सब कुछ तुम्हारा है। आगे आप बयान जरूर सुने राग।

मेरी भी बयान है सुनने वालों की, जियो तो ऐसे जियो कि जैसे सब कुछ तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे मरो कि जैसे कुछ भी तुम्हारा नहीं है। लिखने वाले की क्या तारीफ और गाने वाले की भी क्या बात कहे। रफ़ी जी की आवाज़ में हमने सुने मोहब्बत की पैगाम आपके नाम।

सुनने वालों, आप ही के वास्ते पेश किया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। इस बार फिर एक बार मोहब्बत की पुकार, जाने क्या ढूंढ रही हो।

मोहब्बत के नाम सुनने वालों, आप ही का नाम जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में आप में। आप सुन रहे सुनने वालों फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के लिए इस बार पेश किया जाता है साज हो तुम आवाज़ों में रफ़ी जी की आवाज़ में।

राग पहाड़ी मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में सुनने वालों आपके लिए पेश किया गया क्या फरमाए और गीत म्यूजिक इसमें दिया नौशाद जी। तुम्हें ने दर्द दिया।

गरीब जान के कितने अच्छी बयान है, मैं क्या कहूँ। और इस बार आपके लिए, जी हाँ, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत, पैसा खूब कमाओ पैसा खूब कमाओ, मगर इसके लिए रिश्ते मत गवाओ। तेज बनो मगर इतने नहीं कि किसी के साथ चल भी ना पाओ। बटोरो सारे ऐश और आराम, मगर हाथ दुआओं से मत खाली रखो।

बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत मदन मोहन के साज और संगीत पे ये सुंदर सा गीत हमने श्रवण की है। कहते हैं कि इत्र मित्र चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं, ये चारों अपने परिचय स्वयं दे जाते हैं। सच तो अपने दिल की सुनिए, उसे पता होता है कि आप सच में क्या

रफ़ी जी की आवाज़ में हमने एक बार फिर सुन ली है आप ही का फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो के प्रोग्राम से दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे मत जाओ।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए स्टूडियो में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शांता खेमाई जी और बबली आसरा जी, जो हम सब के साथ मिल करके और ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो हम सब कुछ न कुछ संदेश लेकर आज यहाँ उपस्थित है, अभी आपके लिए रखने वाले हैं। तो पहले एंट्री लेते हैं शांता खेमाई जी और फिर उसके बाद में बबली आसरा जी।
1: श्री गणेश जी की कृपा आशीर्वाद सदा हम सब पर बना रहे। यहाँ पर स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम आज इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: वक्त और हालात सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने शांता जी और बबली जी के सुन चुके हैं, तो हम सब उसी ओर बढ़ेंगे। कौन सा गीत जो इस समय प्लेयर पे शांता जी आपने चुन करके रख चुके हैं?
1: हाँ, वही मशहूर गीत जो हरिओम शरण जी, जैसे आपने कहा तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।
0: उदासी मन काहे को डरे, तो हम वही गीत चलाते हैं। और फिर दोस्तों हम सब अभी आपके लिए और आपके साथ जुड़ जाएंगे। राम

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुंदर सा गीत को और सुने, आज का विषय जो रखा गया है कि हमारे शांता जी, आप हंस रहे हो, जरा बताइए कि विषय का शीर्षक क्या है आज?
1: वही तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आज का विषय क्या रहेगा।
0: एक बड़ा अजीब सा विषय है जो हम शायद नेकर एंगल्स में उसे कहते हैं कुंभा।
1: कुंभा, कुंभा माने के वक्त बबली जी, आपको पता है कुंभा क्या है? या मैं कह दूं, नेदरलैंड्स में तो हमारा बबली जी बताएगा भारतीय भाषा में क्या है कुंभा। मेरे ख्याल से नाफल को कहते।
0: जरूर, नाफल को कहते हैं, और उसे इसके बारे में बातचीत होगा आज शांता जी।
1: हाँ,
0: क्योंकि हमारा जो सुरिनाम से हम जुड़े हुए हैं, तो एक कहावत भी है कि हमारा और नाभि गाढ़ा हुआ है सुरिनाम में।
1: हाँ,
0: तो उसके बारे में उसमें कुछ और भी और संदेश लेकर हम सब आने वाले हैं आज। अभी बबली जी भी कुछ उसके बारे में कहने वाले थे।
2: हाँ जी, जैसे अब शांता जी ने कहा कि नाफल, उससे मैं थोड़ा समझ गई, तो हिंदी में कहते नाभि। हाँ जी,
0: तो नाभि, बबली जी ये बताइए कि नाभि को, जैसे हम लोगों ने देखा जाए कि हमारे सुरिनाम में ऐसा होता था कि जब लड़का का जन्म होता था तो उसे और उसके जब नाफल स्त्रंग उसे कहते हैं, और उसके जब वो जो बच्चा से छूट जाता था तो उसके कहीं, मेरे ख्याल से कहीं गाड़ दिया जाता था, उसके ऊपर में पेड़ लगा दिया जाता था। क्या ये सच है शांता जी?
1: मुझे तो उतना पता नहीं है, मैं उसके बारे में ज़्यादा तौर नहीं बता सकती हूँ। पर तो हाँ, आपने कहा कुंभा, वो नेकर एंगल्स में हो जाता है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो एकदम नेकर एंगल्स जो हमारी सरनाम का भाषा है, जो सरनाम में ज़्यादा तादाद में और हमारे अंडर द क्रियोल सबरूदर्स जो कहा जाता है, उसका भाषा में वो कहा जाता है।
1: हाँ,
0: और हमारा हिंदी में क्या और हिंदुस्तानी में कैसा कहते हैं?
1: हाँ, कहो तो हम जाती बोले, देख हम हिंदुस्तानी भी बताए। हाँ, ढोड़ी
0: ढोड़ी
1: ढोड़ी ढोड़ी और ढोड़ी दो चीज हो ना। ढोड़ी होवे है जो बच्चे होने के बाद खाया जाता है, और ढोड़ी है नाफल, जो हम लोग अपने घर में ऐसे बात कर रहे थे ढोड़ी। हाँ, तो बबली जी भी कुछ उसके बारे में कहना चाहती हैं
2: ना? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत में भी वैसे ही करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि को गांव में ज़्यादातर ऐसे ज़मीन में गाड़ देते हैं। जो आजकल शहरों में है वो तो हॉस्पिटल में पैदा होते बच्चे, उसका मैं नहीं जानती कि वो क्या करते हैं।
0: तो दोस्तों, हम आज इसी के अंतर्गत बातचीत होगा हमारे साथ, और जुड़े हुए हैं शांता जी और बबली जी, जो अपने ओर से संदेश रखने वाले हैं नाभि के अंतर्गत। पर शांता जी, इस ओर बढ़ने से पहले क्यों ना एक सुंदर सा और एक अच्छा सा गीत के ओर बढ़ते हैं, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

0: हाँ, तो हमने यहाँ सुंदर सा गीत सुने, पर उसके साथ में हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे नाभि के बारे में, यानी ढोंगड़ी के बारे में। तो इसी बात पे तो मुझे ये पता चल गया, ये याद आ गया कथा में जो मिलता है सुनने के लिए, कि जब विष्णु भगवान अपने से यहाँ पे जो लेटे थे, यहाँ से सृष्टि का शुरुआत हुआ है ना, तो विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला था जिस पर ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुआ है। तो ये मुझे याद आ गया नाभि से।
1: ये बात जरूर, आप सत्संग में जाते हैं और शांता जी, और इसी कारण आपको ऐसा ऐसा सुंदर सुंदर सा संदेश भी है। पर शांता जी, आज का विषय जो हमारे विशेषज्ञों लोग खोज करके हमारे लिए रखे हुए हैं, तो ख़ास करके नीदरलैंड्स में आप हम सब के लिए और सुनाने वाले हैं, क्यों ना हम उस ओर छलांग लगाते हैं और फिर इसी नाभि तथा ढोंड़ी जैसे आप कहते हैं उस ओर और बढ़ेंगे।
0: हाँ जरूर से। तो यहाँ पे हमने भी कुछ मिला हैगा जो डच भाषा में है, तो हम उसको भी सुनाएंगे कि नाभि ढोंड़ी, और हमारा बबली जी कैसे कह रहे थे भारती,
2: नाभि
0: और नाभि ढोंड़ी नाफल और
1: हम तो कह रहे थे कि कुंभा।
0: हाँ कुंभा,
1: क्योंकि शांता जी आपको शायद पता नहीं होगा, नहीं ये तो मैं गलत कह दिया ना, आपको जरूर पता होगा कि अगर आप सूरीनाम गए
0: जी,
1: और सूरीनाम जा करके और दोसी नहीं खाए,
0: दोसी
1: तो आपको सूरीनाम गए हुए तो कुछ थोड़ा से कमताई तो हो ही जाता है ना।
0: दोसी
1: आपको पता है क्या है?
0: वो जो जिसे गुजिया का था,
1: हाँ वो कहा जाता कि जुका का गुजिया।
0: अच्छा,
1: और वो बनाया जाता है अपना ही सूरीनाम का धरती में, जो निकलते हैं कसाबा और अनानास और हाँ। चीनी से डाल करके कैसे बनाते हैं, वो एक बिसोंदर खरेख्त है जो सूरीनाम से और गए और दोसी नहीं प्रयोग किए तो जान लो कि फकांसी और गए वहाँ से आने वाला भी जरूर दोसी लेकर आते हैं और जाने वाले भी वापसी में दोसी लेकर आते हैं।
0: हाँ, दोसी और कसाबा रोटी
1: पर कसाबा रोटी तो कोई कोई लेकर आता, पर दोसी हाँ। तो हर बार रहते हैं।
0: हाँ।
1: तो दोस्तों हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ लोग जो आज का जो नाभि हमारे नाभि के अंतर्गत में संदेश रखे हुए है, क्यों ना हम उस ओर छलांग लगाते हैं शांता जी।
0: हाँ, छलांग लगाने से ये आप तो दोसी के बाद में बात कर रहे थे
1: तो थोड़ा और बढ़ा देते
0: हाँ, तो हमको वो सब नज़ारा देखने को आएगा, यानी कि पहले पहल कि जब सांदराई को हम जाते थे या आते थे, तो सांदराई के रास्ता में पहले पीना के हेत था,
1: पीना के हेत यानी कि हाँ,
0: पीना
1: कंपोजन
0: जिसमें वो सब अपना बस्ती बसाते थे। तो दाम किनारे तो वही मरकुसा
1: सही बात,
0: मरकुसा आवारा मोपेना मलुपा
1: सही बात,
0: मलुपा और दोसी जैसे तू बोले ना,
1: ये तो होते थे क्योंकि हाँ, ये सूरीनाम हो वक्त
0: हाँ,
1: एक सूरीनाम एक ऐसा देश है
0: हाँ,
1: जो सिर्फ गुजिया, देखो गुजिया में कैसे हमारे होली त्योहार आते हैं
0: हाँ,
1: होली में कुछ बने या ना बने पर गुजिया तो बनाना आवश्यकता, क्योंकि उसमें मिठास होता है और उसमें खोया डाला जाता है
0: हाँ,
1: और उसमें कैसे बनाया जाता है ये तो मुझे पूरा तरीका से नहीं पता, पर मैं खा लेता हूँ हर होली में
0: बबली जानती है बनाने के लिए,
1: जरूर बबली भी जानते होंगे बनाने के लिए, पर ये बात होते है उसमें द एसेंसी दराख्तर इस दी जो होली त्योहार होता है उसे उस समय वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें जो मिठास होता है उसे खाकर सब कोई अपने परिपक्व हो जाते हैं, अपने मीठा वाणी बोलने लगते हैं, उसी उस समय पे खूब चौताल आदि जो खूब गाया जाता है
0: हाँ।
1: पर आज का कार्यक्रम तो हमारा होली का तो थोड़ो है
0: नहीं होली के नहीं पर
1: हम क्यों भटक रहे
0: नहीं बात में बात करो तो ऐसे ही
1: आगे हो जाता
0: आ जाता है ना, तो वही मैं कह रही थी कि संदर्भ जो पहले जाते थे आते थे तो कितना रौनक था, कल कुछ अलग सा था और आज में तो एकदम से
1: कुछ
0: बहुत बदलाव आ गए,
1: बहुत बदलाव आए हाँ। बहुत बदलाव आए और ये भी हो जाता था कि हम लोग जब उतना जल्दी भी संदर्भ बगल नहीं जाया जाता था, पर उस ओर जाओ तो वहाँ का मिट्टी भी दूसरा हो जाता था
0: हाँ।
1: वेद शांति कहते थे ना
0: हाँ।
1: मिट्टी वहाँ का बिल्कुल एकदम अलग सा हो जाता था, जो हमारे गांव का मिट्टी होते थे तो वो तो काला मिट्टी
0: हाँ।
1: जो जिसमें केला आदि लगाओ कोई कुछ भी लगा दो हो जाता था, पर वहाँ का मिट्टी उसे बोल रहे सफाना खबीत ना
0: हाँ, पारा खबीत
1: पारा
0: पारा
1: ऐसे ही कुछ
0: हाँ। डिस्ट्रिक्ट पारा है,
1: डिस्ट्रिक्ट पारा में
0: हाँ, डिस्ट्रिक्ट पारा यहाँ पे सांद्रे हवाई अड्डा जो है हाँ। तो थोड़ा से हम तो सूरीनाम के बारे में तो इस दोषी के दोषी ने हमको ये सब ये हमको भी इतना दूर ले चल गए हैं
1: हाँ। नहीं, कहने के बात ये है शांता जी कि हमारे सुनने वालों भी इस बात को जाने कि सूरीनाम जाए
0: हाँ।
1: तो दोषी लेकर आना ये कोई यहाँ और हम लोग स्टूडियो में जो उपस्थित होते हैं तो हम लोग का भी ख्याल कर लेना ना
0: हाँ हाँ जरूर से
1: कि
0: जरूर
1: दोषी जरूर सरनाम का प्यार हाँ। वही होता है
0: बिल्कुल,
1: तो जरूर उस पे ध्यान देना। और हम देख रहे हैं शांता जी की पनेल के पीछे ऐसा क्यों ना एक गीत को रख देते तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते
0: हाँ, ये तो सही होगा।
1: तो सुनने वालों हम सब अभी आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे और ये आशा रखता हूँ कि इस बार हम सब भटके ना और जो विषय आज के रखा गया है हमारे विशेषज्ञों के ओर से तो हम सब आपके लिए और लेकर उसे और प्रस्तुत करें। अभी आपके साथ हम सब फिर जुड़ने वाले हैं।

0: हाँ तो सुने वालों, हम तो भूल गए थे बबली से पूछने के लिए कि वो जानते हैं दोषी क्या। हालांकि बबली जी कई बार भी सूरीनाम हो आए। तो बबली जी,
1: शांता जी, पहले तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जानने लग गई हूँ। दोषी, हाँ, जैसे अब वही संजय जी ने बताया कि गुजिया, और वो, हाँ, वो कफरियों की गुजिया, सही बात। लेकिन मैंने खाई नहीं, मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, देखी जरूर है।
0: क्यों नहीं खाए?
2: तो इसमें जरूर ये बात हो जाता है बबली जी, आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि हमारा सूरीनाम का प्यार उसमें जुड़ा हुआ है।
1: क्योंकि हाँ, सही बात, खाऊंगी तो पता चलेगा वो मीठी है कि नमकीन है, तभी स्वाद पता चलेगा।
2: देखो, नमकीन से प्यार नहीं बढ़ता है, प्यार सरनाम का जो बढ़ाना है तो कैसे मीठा, उसमें मीठा क्या क्या, उसमें क्या क्या होता है शांता जी?
0: मेरे ख्याल से पहला तो कसाबा होता है।
2: कसाबा का तो जो जैसे कि ओम्होलसल है, पर अंदर से उसमें मेरे ख्याल से अजनास या कुछ और है, मुझे ना पता, हमारे सुनने वालों को पता होंगे, जरूर इसके बारे में अब ही आप जरूर चर्चा करना, या आप लाइव स्टूडियो में फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे दोषी बनाया जाता है और उसमें क्या क्या चीज, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अभी तक हम कोई हिंदुस्तानी के घरे हिंदुस्तानी के बनाया हुआ नहीं खाया, ऐसा नहीं है?
0: नहीं,
2: वो हमारे यानी कि हमारे जो सरनामी
0: कुल्तूर
2: खबोंदन प्रोडक्ट है। शांता जी, आज का विषय जो हमारा है कि नाभि के अंतर्गत जो आप हम सब के सुनाने वाले हैं, तो जरूर हम सब के उस ओर और ले चले।
0: हाँ, तो यहाँ से मैं तुरंत शुरू कर दूंगी नाफल के बारे में। नाभि, ढोड़ी, कुंबा, नीदलांस में नाफल कहते हैं। हाँ, द नाफल विश वार ओम ये फर्शेल द ओलियन इन एंड ऑफ द नाफल मुतून उनसे नाफल नाभि इस अ गवेल्डिग गेस्केंक दैट ओंस स्केपर ओंस हैव गिवन वोल्गेंस द वेटेंस्कप इस हेट एर्स्टे डेल दैट ना द कॉन्सेप्सी इस गेक्रिएट द नाफल Nadat het is gecreëerd, sluit het zich aan bij de placenta van de moeder via de navelstreng. Onze navel is zeker iets geweldigs, en dat zeg ik ook wel, het is iets geweldigs.

0: तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ संजय जी, अगर नाफल नहीं होते, ना भी नहीं होते ना, तो शायद मैं और आप बबली जी यहाँ नहीं होते, या संसार में कोई नहीं होता।
1: क्योंकि वही जो जुड़ते हैं, एक बच्चा जो अपने माँ से जुड़ते हैं ना।
0: हाँ, बबली जी कुछ कहना चाहती है?
2: ना, मैं ये कहना चाहती थी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बच्चा उसी से जुड़ा होता है जो माँ खाती हुई बच्चा खाता है। अगर माँ ना खाए तो बच्चे को भी ना कुछ मिले खाने को।
0: हाँ, तो बबली जी भी कुछ कहा नाफल के बारे में। तो उनसे नाफल इज सीकर इट्स खव्यादक्स आल ओन से आदरन सैन फॉर बोंदन मत ओन से नाफल। ये भी मैं नहीं जानती थी, तो ये मुझे भी आज पता चला कि आल ओन से आदरन सैन फॉर बोंदन मत ओन से नाफल्स वार दौर दे से हेट सेंट्राल पॉइंट फॉर ओन्स लेखाम इस द नाफल इस हेट लेफन सेल्फ। जी हाँ, द नाफल इस हेट लेफन सेल्फ द पचोटी sit achter de navel die ruim 72.000 aderen heeft. De totale hoeveelheid bloedvaten die we in ons lichaam hebben is gelijk aan het dubbele van de omtrek van de aarde. Wauw. संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कहा आप जोर से सांस ले ली।
1: नहीं, मैं इन बातों को सुन के तो भी हैरानी से हो गया शांता जी, जो आप कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, कितने बात पे हम सब ध्यान नहीं देते हैं, पर जो हमारे विशेषज्ञ लोग ऐसे और हमारे वैज्ञानिक लोग जो समान और खोज करके, और यानी कि जो लिख देते हैं, बनाते हैं हम लोग के लिए, तब सुन करके भी जरूर हैरानी से होते हैं कि हाँ ऐसा।
0: जी हाँ,
1: क्यों ना आप आगे बढ़ते हैं और फिर हम सब हमारे सुनने वालों भी इस जानकारी को प्राप्त करें।
0: जी, dat wisten we om de temperatuur te verlagen naar de baby's. We hebben een wattenstaafje met alcohol in de navel gedaan. Nu weten we dat met olie beter is. Olie aanbrengen in de navel herstelt de droogheid van de ogen. Sunyeji, olie aanbrengen in de navel herstelt de droogheid van de ogen. Slecht uitzicht, de alvleesklier, het hakken en gekapte lippen, houdt het gezicht helder, het haar gezonder tegen pijn in de knie, de rillingen, letharige pijn in de gewrichten en droge huid. To dekho, naam hi mein tel lagane se ये सब जो समस्या है ये सब दूर हो जाता है।
1: तो शांता जी, ये बात को तो अब जब आपने सुनाई दिए है कि तेल लगाने, तो वो बच्चे के लिए तेल लगाना चाहिए सिर्फ, या हम बड़ों को भी लगा सकते हैं तेल?
0: हाँ, तो
1: क्योंकि अभी आपने कहा कि आँखों का जो
0: रोशनी,
1: हाँ नहीं रोशनी नहीं, आँखों जो कभी कभी आँखों सूख जाते हैं ना।
0: हाँ, द्रोह,
1: हाँ, द्रोह, ओह,
0: कैसे बोले, त्राण कम रहता,
1: हाँ,
0: है, हाँ, तो वो, हाँ, तो बहुत दर्द देता है।
1: सही बात, पर क्या हम बड़ों भी अपने नाभि में तेल लगा सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, नाभि तो सिर्फ बच्चे, हम ही तो धरती माँ के बच्चे, अपने माँ के बच्चे है, हालांकि हम नानी आजी हो जाते फिर भी हम माँ के बच्चे रहते, तो नाभि तो हमारे साथ आई है, नाभि हमारे साथ रहेगा, और नाभि से हम जाएंगे, तो क्यों नहीं हम अभी से, जैसे हमने सुने हैं, तो अभी से नाभि में तेल लगाना शुरुआत कर दे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आज लगाने से कल उसका उसका कैसे कहते het verschil ga je niet gelijk zien, maar door het continu te gebruiken, dan kan je dat resultaat na een maand of drie wel zien. हाँ, बबली जी कुछ कहना चाहती है?
2: मैं ये कहना चाहती थी कि तेल लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नाभि में कई बार गंदगी फंस जाती, मैल फंस जाती, वो भी चिकनाहट से साफ हो जाती है, तो नाभि को साफ भी करते रहना चाहिए, सफाई करनी भी जरूरी है।
1: क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद फिर हम अभी अपने सभी सुनने वालों के साथ जुड़ जाएंगे। तो सुनने वालों सुनते रहना है, क्योंकि शांता के पास अभी काफ़ी संदेश है और वो हम सब के लिए रखने वाले हैं। हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: नमस्कार सुनने वालों, तो हम यहाँ पर फिर उपस्थित हो गई हूँ गीत के बाद। हम यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि ब्रेंग नीम ओली आन ए नाफल ओम द हार्ट नेकह पेशस अकने आफ्त को मन। हे भगवान सुनो तो। हाँ बबली जी, अभी ये बात कही थी कि हाँ, तो नीम के तेल नाभि में लगाने से ये हार्ट नेखक पर्शस जो है, अकने जो है, तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। सो और देखो, तो नीम के तेल हमने बताई, ब्रिंग अमांडल ओली आन ए नाफल ओम अंस्त्रालंद खसेख तबरेकन। सुनो, नाभि के करमात नीम के तेल और अमांडल ओली से, ब्रिंग अमांडल ओली आन ए नाफल ओम अंस्त्रालंद खसेख तबरेकन। ब्रिंग मोस्टर ओली आन ए नाफल ओम द्रोहे gekapte lippen weg te werken. Ook je darmen in beweging houden om schadelijke bacteriën te verwijderen, maar het goede te behouden. Zo. Werk eigenlijk als een milde detox. Breng olijfolie of kokosolie aan om je vruchtbaarheid te verbeteren. Zo. Houd alcohol gedompeld katoen op je navel om verkoudheid, griep en een loopneus te genezen. Sanjay ji, aap sun rahe?
1: Ye sun kar to, jaise ki abhi main keh raha tha, dit zijn wel heel veel informatie die ik nooit eerder in mijn leven had gehoord.
0: हाँ, तो मैं भी ये सोच रही थी, अबे गत दिनों मैं भी बहुत बीमार था, मेरे को तो सर्दी थी, अगर मैं आगे से ये जानती तो मैं तो कब के बेहतर हो जाती, तंदुरुस्त हो जाती। ओम फरकाउत है ख्रिप एन अलोप नुस्त खनेसन है कान या अन कतुन कतुन स्टाफ, सो कैसे बोले ओके,
1: रुई जो से हम कहते हैं,
0: रुई अल्कोहल में दोंपल करके बस ओके नाभि में लगा लेते कान ये देता अलमाल।
1: पर दोस्तों ये बात नहीं है कि ये संदेश है जो आपके खनीसिंग के लिए, ऐसा ना हो कि आप बोतल खोले तो बोतल का
0: दवा के
1: और आप बढ़ जाओ। नहीं, ये सब संदेश है जो हमारे और जाकर के जानकारों ने और हम लोग के लिए खोज करके रखे हुए, और उसे इसी तरह से प्रयोग करने से आपके बहुत और यानी कि उसमें सफलता को प्राप्त करेंगे। शांता जी, जो संदेश हम सबको और रखने वाले हैं।
0: आज हम बेबी बैक पेन है, दून व अंपार द्रुपस डायरेक्ट इन द नाफल एंड हेफन व द मसाज अराउंड द मरीना अंपार मिनिटन द पेन इज गनेसन। ओली वर्क ऑफ द सेल्फ द मनीर, houd brandy doorgeweekte waterbol op je navel om menstruatiepijn en krampen te verzachten. Sesamolie.
1: Dus Shanta ji, sesamolie ke or hum sab chalne wale, par main dekh raha hu Babli bhi kuch kehne wale hai, to Babli ji zara hum log ke hindi mein bhi zara iske bare mein kuch aur sandesh sunaiye.
0: Ha to wo to bahut acha hota kyunki hum to isme gum ho gaye the. Babli ji aap kuch kaho.
2: हाँ जी ज़रूर। पैदा होने के बाद जब बच्चा माँ की नाल से जुड़ी बच्चे की गर्भ नाल हो डॉक्टर्स द्वारा बांधकर अलग किया जाता है तो बच्चे के पेट पर एक निशान बन जाता है जिसे नाभि बोलते हैं। नाभि का आकार और संरचना सभी में अलग अलग होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की नाभि के आसपास अधिक रोएँ होते हैं। नाभि सिर्फ स्तनधारी जीवों में पाई जाती है, अंडे देने वाले जीवों में नहीं।
1: तो ये संदेश जो बबली जी भी और रखे हम सबके ये नाभि के अंतर्गत, शांता जी क्यों ना अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आप क्या कहते हैं?
0: हाँ, अबे बबली जी जैसे कहा कि सिर्फ जो स्तन पान करते हैं उनको सिर्फ नाभि होते हैं।
2: स्तनधारी जीव वो है जैसे इंसान, और कई जो अंडे देने वाले जानवर हैं उनमें नाभि नहीं मिलते। हिंदी में स्तनधारी कहते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं उनमें नाभि पाई जाती है, चाहे जानवर हैं उनमें भी। अच्छा। और जो जानवर अंडे देते हैं उनमें नाभि नहीं पाई जाती। अच्छा। क्योंकि उनके बच्चे अंडों से पैदा होते हैं इसीलिए।
0: हाँ जी, तो बबली जी से हमने सुने और यहाँ से हम जारी करेंगे सही साम ओली के बारे में। Sei sam olie wordt gebruikt bij alle soorten gewrichtspijnen. Het staat ook bekend om botten te versterken. Veel ouders gebruiken het bij hun kinderen elke avond voor het slapen gaan. Gebruik een gelijke hoeveelheid mosterdolie en gemberolie voor maag, opgeblazen, misselijkheid en spijsverteringsproblemen. Het gebruik van warme ghee, geklaarde boter, het gebruik van warme ghee verbetert de doorbloeding naar het zenuwstelsel en verhoogt ook het immuniteitssysteem. Het geneest constipatie en bouwt een sterk spijsverteringsstelsel. Het geeft verlichting van gewrichtspijn. Tijmolie. Tijmolie is antispasmodisch. Het helpt je slagaders en aderen te ontspannen, waardoor de bloeddruk en stress naar je hart wordt verlaagd. Het kan ook helpen om je hartspieren te versterken en te तिन्तन।
1: तो सुनने वालों, अभी आप सुन रहे हैं शांता जी जो हम सब के लिए आज का संदेश सुना रहे हैं, जो नाभि जो हमारे होते हैं, जो हमें, जिसे हम अपन नेखरेंगस में कहते हैं कुंभा, और हिंदी में कहते हैं ना, सरनामी में कहते हैं ढोड़ी ना, उस अंतर्गत में और उसमें कितने प्रकार के तेल अलग अलग तेलों से और जाकर के कितना, यानी कि अपने शरीर, ये सुंदर काया जो हम सबको प्राप्त हुआ है ना, तो उसके अंतर्गत में कितना चमक धमक देने के लिए अलग अलग तेल से, और क्या क्या संदेश हमारे वैज्ञानिक लोग और खोज करके रखे हुए हैं।
3: अधिकृत कंतोर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
4: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft Meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
6: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
7: Digitale radio, Fahonfm.nl.
8: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een woordvoerder liet vanochtend weten dat Iran de geruchten over een snelle deal tegenspreekt. Afgelopen weekend kwam er vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel aan zou komen, maar Teheran trapt nu dus op de rem. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden zelfstandig het toestel verlaten. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen die water vanaf de branding dieper de zee intrekken.
7: En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer licht toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst is of als uitzendkracht werkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden, terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen.
8: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
9: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: मैं देख रहा हूँ बबली जी भी इस समय तैयार हो गए माइक्रोफोन के पीछे कुछ और रखने के लिए। तो बबली जी आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: हाँ जी, हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाभि हमारी जीवन का ऊर्जा का केंद्र है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 6 मिनट तक रहते हैं। शरीर में दिमाग से भी महत्वपूर्ण स्थान है नाभि का। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो प्राण वायु से संचालित रहता है। दूसरा, हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है। यदि कोई संत या सिद्ध पुरुष शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर से कहीं भी विचरण करता रहता है तो उसके सूक्ष्म शरीर की नाभि से स्थूल शरीर की नाभि के बीच एक रश्मि जुड़ी रहती है। यदि यह टूट जाती है तो व्यक्ति को अपने स्थूल शरीर से संभर टूट जाता है। तीसरा, हिंदू शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से हुआ था,
0: जैसे कि अभी शांता जी ने हम सबको सुना ही चुके थे।
1: इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से ही होता है। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। विष्णु पाताल लोक में ही रहते हैं। इस धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड का भी नाभि केंद्र है। नाभि केंद्र से ही संपूर्ण जीवन संचालित होता है। चौथा, योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ इकट्ठी होती है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्म योगी कहते हैं। यह लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्षा, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि काश्य कल्पश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। पांचवा, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोग पहचानने के कई तरीके हैं। उनमें से एक है नाभि संपदन से योग की पहचान। नाभि संपदन से यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर का कौन सा अंग खराब हो रहा है या रोगग्रस्त है। नाभि के संचालन और इसकी चिकित्सा के माध्यम से सभी प्रकार के रोग ठीक किए जा सकते हैं। छठा, नाभि संपदन पद्धति के अनुसार यदि नाभि ठीक मध्यम स्तर के बीच में चलती है तब महिलाएं गर्भधारण योग्य होती हैं। लेकिन यदि यही मध्यम स्तर खिसक कर नीचे रीढ़ की हड्डी की तरफ चली जाए तो ऐसी महिलाएं गर्भधारण नहीं कर सकती। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन महिलाओं की नाभि एकदम बीचों बीच में होती है वो बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं। सातवां, नाभि के खिसकने से मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताएं कम हो जाती हैं। यदि गलत जगह पर खिसक जाए व स्थायी हो जाए तो परिणाम खराब हो सकते हैं। नाभि को यथास्थान लाना एक कठिन कार्य है। थोड़ी सी गड़बड़ी किसी नई बीमारी को जन्म दे सकती है। नाभि की नाड़ियों का संबंध शरीर के आंतरिक अंगों की सूचना प्रणाली से होता है। इसलिए नाभि नाड़ी को यथास्थल बैठाने के लिए इसके योग्य वैद्य जानकार डॉक्टरों का सहारा लिया जाना चाहिए। नाभि को यथास्थान लाने के लिए रोगी को रात्रि में कुछ खाने को ना दें। सुबह खाली पेट उपचार के लिए जाना चाहिए क्योंकि खाली पेट ही नाभि नाड़ी की स्थिति का पता लग सकता है।
0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने कि बबली जी ने सात प्रकार यानी कि सात संदेशों जो नाभि से जुड़े हुए हैं ना शांता जी।
2: हाँ, बबली जो बता रहे थे तो हम तो गौर से सुन रहे थे। हम लोग कहते हैं कि नारा घसक गए,
0: सही बात। हाँ।
2: और जैसे बबली ने कहा और दच भाषा में हमने आपको भी सुनाई है, त्वेयन सेफन तक दर्शन के हिसाब से नस चल रहा है नाभि पे। और बबली जी बतावे कि जब जो अपन जगह पे ना रहे सब नस, तब बेटियाँ जो है माने बन सकती है और बहुत से प्रकार से बीमारी भी उत्पन्न हो सकता है,
0: कष्टों का कारण हो जाता है।
2: हाँ, तो नारा हम लोग बोला नारा बैठावे याने।
0: तो इसी प्रकार से शांता जी, इसी कारण देखा जाए ऐसा है कि उसमें हमारे जो वैज्ञानिक लोग ने ऐसे अलग अलग तेल से और यानी कि खोज करके और हम सब के लिए ये संदेश आज ऐसे हम लोग के सो मकल खमाक कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें और परिवर्तन लाने के लिए। क्यों ना हम बबली जी, मैं देख रहा हूँ उंगली उठा लिए है, तो बबली जी आप अपना सुनाइए।
1: नहीं, आपकी बात सुन के मेरे को भी एक बात ध्यान में आ गई शांता जी। हमारे एक फुआ का बेटा पंजाब से, तो सिर्फ वही ऐसे नाड़ा सबका जब चढ़ जाता था तो वही कसते थे, और वो दो धागे लेके दोनों अंगूठे में ऐसे बांध के, पता नहीं कैसे, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता, किसी को करना आता है तो, और जिसको आता है उसी से करवाना चाहिए। और वो जब भी दिल्ली आते वो पंजाब रहते थे कोट कपूरे, तो कभी किसी का चढ़ना ज़्यादा, मेरे बड़की माई का बेटा पप्पू उसी का नाड़ा ज़्यादा चढ़ता था, तो उसी को वो ठीक करवाते थे। एक बार मेरी बहन उसके भी चढ़, वो हॉकी खेलती थी तो उसके भी ऐसे नाड़ा चढ़ गया, तो अचानक वो आया हुआ था पंजाब से तो उसी ने ठीक किया।
0: बबली जी ये बताइए, नारा जो जैसे कैसे कहते हैं कि जो नारा उखड़ गए ना,
1: नारा उखड़ गया, खिसक गया, चढ़ गया, कुछ भी कह सकते हैं,
0: यानी कि कुछ गड़बड़ हो गया है और उसे और ठीक कराना है, तो पर उसमें कैसे पता चलेगा कि किसी का नारा और चढ़ गया या उखड़ गया है या घसक गया, कैसे उसमें व्हाट्स इन द सिम्पटम?
1: पेट में बहुत दर्द होता है
0: ऐसा?
1: हाँ जी,
0: पेट में बहुत दर्द होता है। शांता जी इसमें आप क्या कह सकते हो?
2: हाँ, हम तो मेरे को तो कभी नहीं हुआ है, पर हमने देखे ऐसे एक बूढ़ी माँ थी सूरीनाम में, तो वो भी ऐसे कई व्यक्ति के भी सार रहते ना।
0: हाँ, मालिश करके भी ना।
2: हाँ, तेल लगा कर मालिश करते करते और फिर इतने कस का घंच घंच के चारों ओर से ला कर फिर वह नाभि के ओर लाते हैं, तो वो जाकर बैठे तो उसमें उंगली डाल के टोटे है कि सब
1: अपनी जगह पे।
2: हाँ, उसका भी धड़कना जो है नाभि में धड़कन जो होता है, धड़कना तो उसका उससे स्पर्श हो जाता है कि वो अपनी जगह पे है या नहीं।
0: तो दोस्तों यहाँ भी हम सब के जो दो प्रोफेशनल्स शांता खेमाई जी और बबली आसरा जी, जिसके पास जानकारी भी है ऐसे क्योंकि उन्होंने हम सबको सुनाए कि
2: तुम्हारा अनुभव
0: हमें, जैसे कि अभी आपने कहा कि मेरा भी कोई उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं कभी हुआ। हाँ, अभी नहीं हुआ है लाओ हो पफा नीत, क्योंकि ऐसा कहता है लोग कि जैसे अभी आप जाने वाले हैं सूरीनाम, और सूरीनाम जाते समय आप अपना कम से कम एक सूट केस पैक करते हैं ना, तो कोई कोई जब 30 किलो के जगह 30 भर देते, 23 किलो के जगह 30 किलो उसमें डाल देते ना।
2: हाँ, हाँ,
0: वो समझते कि 23 और 30 में अंतर नहीं है और एक ही दाइन में आप उसे लेकर खड़ा हो जाए तो गड़बड़ हो सकता है, ऐसा हाँ, कहते हैं लोग।
2: हाँ, तो वो हाँ, तो बबली जी
1: बिल्कुल लगता है शांता जी, भार उठाने से जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं उनको भी होता है ज्यादातर,
0: यानी कि स्पोर्ट्स से भी हो सकता है।
1: हाँ, क्योंकि उछलो कूदो उससे भी नारा चढ़ जाता है।
3: कभी ऐसे गलती से फिसल जाता।
0: शांता जी आप बात कर रहे हो बिगर माइक्रोफोन के साथ।
2: अच्छा बबली जी, जैसे जैसे कभी अचानक में हमारा गोड़ फिसल जाए तो?
1: उससे भी हो सकता है, पता थोड़ी ना हम कैसे फिसले हैं, तो अपनी जगह से नाभि खिसक सकती है।
0: तो दोस्तों हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद फिर हम सब आपके साथ जुड़ जाएंगे। अभी जो आज का कैसे विषय है कि ढोड़ी और नाभि जिसे हम कहते हैं, हमारे सूरीनामर्स जो होते हैं कि उसे कहते हैं कुंबा, और इस अंतर्गत में आज का विषय जो रखा गया नहेल माकल का विषय, पर उस पर जब देखा जाए जानकारी जो रखा गया है आज, हम एक गीत के बाद आपके साथ जुड़ जाएंगे। फिल्म केसरी से निकाला गया।
1: मिट्टी में मिल जाऊंगा।

0: हाँ तो सुनने वालों, यहाँ से हमने सुंदर गीत सुने हैं, पर बबली कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह है कुछ बताने के लिए, तो हम बबली से सुन ले।
1: जब हम पंजाब जाते थे अपनी नानी के घर, तो हम तो छोटे थे, फिर भी ध्यान है कि हमारी नानी ये ऐसी चीज़ें बहुत ठीक करते थे। लोग ठीक करवाने आते थे, कोई किसी की नाभि चढ़ जाने, खेत में काम करने गए हैं तो कह रहा था ताई या चाची मेरी नानी मेरी नाभि चढ़ गई है तो ठीक कर दो, तो किसी ने कहना मेरे गले में दर्द है, किसी ने कहना अरे और चीज़ें, तो ये पुरानी चीज़ें मेरी नानी ज़्यादा जानती थी, वो सब ठीक करते थे। और पंजाबी में धुन्नी भी कहते हैं,
2: यानी कि ये पंजाबी शब्द है ना धुन्नी।
1: हाँ जी,
2: तो ढोड़ी को धुन्नी कहते हैं पंजाबी में।
1: हाँ जी,
2: गुजराती में कैसे कहते हैं
1: वो मैं नहीं जानती।
0: हाँ सुनने वालों, तो यहाँ से हम जारी करेंगे, दच भाषा में आपको बताएंगे, और इस बार हैगा तैम ओली के बारे में। तैम ओली का ये लेखाम हेल्पन ओम ओ फरतोल वातर साउथ एंड हिफ स्टोफन अच लेखाम तफर वैदरन वत हेल्प बै खवेख्त ब्लू ड्रग स्पेस फर तेरिंग ए मेर। Tijm olie is een verwacht middel wat betekent dat het slijm uit je luchtwegen en longen kan verwijderen. Zo. Tijm olie is goedgekeurd door de Duitse Commissie E voor de behandeling van bronchitis, kinkhoest en ontsteking van de bovenste luchtwegen. जानकारी
2: बहुत सा जानकारी है शांता जी, और जैसे कि आप सुना रहे हैं हमारे सभी सुनने वालों भी, और इस बात को सुन के भी शायद थोड़ा से चकित भी होंगे कि इतना ज़्यादा तादाद में कैसे लोग और जा कर के इसके बारे में रिसर्च किए होंगे ना।
0: जी हाँ,
2: और फिर जा कर के ऐसा और बनाया जाता है, और यहाँ हमारे विशेषज्ञ लोग जो हम लोग के लिए खोज करके और रखते हैं ताकि हम सब भी रेडियो बना सके। शांता जी जो कार्यक्रम में और भी संदेश रखने वाले हैं, आप आगे बढ़िए शांता जी।
0: जी, onthou dat tijmolie een krachtige verbinding is en niet direct op je huid gebruikt mag worden. Aangezien dit sensibilisatie en irritatie kan veroorzaken. Het moet eerst verdund worden met draagolie zoals olijfolie, kokosolie of amandelolie. Janneke, jagar ham samje, to tijmolie okar वर्किंग थोड़ा से क्रखतक है,
2: थोड़ा कड़क है ना।
0: हाँ,
2: और उसे मिला कर,
0: हाँ मिलावे के चाहे ओलिव ओली, कोकोस ओली ऑफ आमंडल ओली थोड़ा फर्दुन करे, जो में कि इरिटेशन ना फर और साक करे।
2: तो शांता जी क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।
0: जैसे आप कहे चले,
2: पनीर के पीछे तो आप बैठे हुए, तो चला दो एक सुंदर सा गीत।

0: आज सुनने वालों, तो हमने गीत के बाद यहाँ से आपके साथ जुड़ गए हैं, और जैसे बबली जी अब साथ सेफ पंत बहांदल करी से या सुनाई से हमको, तो उनके पास अब और भी जो हमको सुनाना चाहते हैं, तो बबली जी आप सुनाओ।
1: हाँ जी जरूर। आठवां, नाभि में 1498 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
2: 1450 ना?
1: हाँ जी,
2: 1450 यानी कि 1458 सोर्टन बैक्टीरियन।
1: हाँ जी।
2: तो शांता जी, ये तो बड़ा गंभीर बात हो गया कि इतना ज्यादा तादाद में और बैक्टीरियन हो सकता ना।
0: हम तो एकदम चुप हो गए।
1: लेकिन ये ऐसे वैसे बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया हमारी रक्षा करते हैं शरीर की। शांता जी,
2: ओ ये हुआ। अच्छा, बात
0: हम तो डर गए थे
2: कुछ। हम तो डर गए, हम बिल्कुल डर गए थे। पर जो
0: तो
2: यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे रक्षक बनते हैं।
0: हाँ
2: ऐसा। तो बबली जी, अब ये तो जरा जल्दी जल्दी सुना दो,
0: स्पर्श कर दो,
2: क्योंकि ये सुनने को हमारे कानों इस समय और ये चाहते हैं कि बेचैन हो रहा है,
0: साथ साथ हमारे सुनने वाले जो भी
2: जो हमारे सुनने वाले इस समय जो ये कार्यक्रम को अपने गाड़ी में बैठ करके सुन रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, और खास करके जो ये कार्यक्रम के सूरीनाम देश में, और ये तो बात है कि हॉलैंड देश में तो अनेक उपरांतों में ये कार्यक्रम को सुना जाता है, अन्य देशों में भी। तो अभी हम सब जो ये संदेश नाभि का अंतर्गत है, और जैसे कि बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं, तो बबली जी आगे बढ़िए।
1: हाँ जी जरूर। जो बाहरी बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, नाभि में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसे में नाभि को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी इतनी भी सफाई नहीं करनी चाहिए कि इसके बैक्टीरिया ही मर जाएं। यानी उनके कहने का मतलब है कि नाभि में बैक्टीरिया थोड़े रहने चाहिए,
2: ऐसा
1: कि ज़्यादा भी सफाई ना करो कि ये बैक्टीरिया ही मर जाएं।
2: आप उस पर ध्यान देना कि कैसे आपको साफ करने हैं। दोस्तों बबली जी आगे सुनाइए।
1: हाँ जी। नंबर 9, नाभि पर सरसों का तेल लगाने से होंठ मुलायम होते हैं। नाभि पर घी लगाने से पेट की अग्नि शांत होती है, और कई प्रकार के रोगों में यह लाभदायक होता है। इससे आँखों और बालों को लाभ मिलता है। शरीर में कंपन, घुटनों और जोड़ों के दर्द में भी इससे लाभ मिलता है। इससे चेहरे पर रौनक आती है। नंबर 10, समुद्र शास्त्र में नाभि के आकार प्रकार के अनुसार स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के बारे में उल्लेख मिलता है। जिन महिलाओं की नाभि समतल होती है उन्हें जल्द गुस्सा आता है, लेकिन पुरुष की नाभि समतल है तो वह बुद्धिमान और स्पष्टवादी होगा। जिनकी नाभि गहरी होती है वे सौंदर्य प्रेमी, रोमांटिक और मिलनसार होते हैं। इन्हें जीवन साथी सुंदर मिलता है। जिन महिलाओं की नाभि लंबी होती है वे आत्मविश्वास से भरी हुई और आत्मनिर्भर होती हैं। जिनकी नाभि गोल होती है वे आशावादी, बुद्धिमान और दयालु होती हैं। ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय गुजरता है। उथली नाभि वाले लोग कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोग अक्सर काम को अधूरा छोड़ देते हैं और वे स्वभाव से चिड़चिड़े भी होते हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर की ओर बड़ी और गहरी होती है ऐसे लोग हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। उभरी और बड़ी हुई नाभि है तो ऐसे लोग जिद्दी होते हैं। अंडाकार नाभि वाले लोग सोचने में अपना समय गवा कर हाथ आया मौका छोड़ देते हैं।
0: जिस नाभि के भी कई कई नाभि के भी कई कई फॉर्म होते हैं।
1: हाँ जी,
0: ये तो मुझे आज भी पता चला।
2: ये बात तो मुझे आज पता चला शांता जी, क्योंकि दोस्तों अगर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हो तो आप जरूर इस पे ध्यान देना, क्योंकि इन बातों का पता हमें भी नहीं था और इस बात को सुन करके आज हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि कितना और द फोरम खैफिया अलसतवार कैसे कहा जाए उसे कि स्वभाव में
1: कि जैसे नाभि का आकार होगा उसी के अनुसार मनुष्य का स्वभाव होगा,
2: थोड़ा उसमें थोड़ा से दृश्य हो जाता है ना।
1: हाँ जी, कहने का मतलब यही है।
2: सही बात। तो अभी आप और हम लोग को सुनाने वाले हैं कि पर अभी शांता जी को भी कुछ संदेश और रखना है, पर सुना दीजिए बबली।
1: हाँ जी, थोड़ा सही है। चौड़ी नाभि वाले लोग शक करने वाले और अंतर्मुखी होते हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर से नीचे आती हुई दो भागों में बटी हुई दिखाई दे तो ऐसे लोग आर्थिक, पारिवारिक और सेहत की दृष्टि से मजबूत होते हैं।
2: दोस्तों, जैसे आकार होता है नाभि का, वैसा स्वभाव होता है मनुष्य का। और जैसे शांता जी और बबली जी ने अपना संदेश रखे, आज इस बातों को सुन करके हमें भी बहुत सा आश्चर्य हो रहा है कि इन बातों पे हम अब शायद और भी ध्यान देंगे। शांता जी, आप कुछ कहने वाले थे।
0: संजय जी, आपने कहा शायद, तो मैं कहती हूँ शायद में खतरा है, आपको करना चाहिए।
2: शायद में खतरा है।
0: हाँ, शायद में खतरा है, यानी कि
2: तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब इस पे कभी हम सब ध्यान नहीं दिए थे और अब इतना जानकारी होने पे जरूर उस पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। शांता जी, अभी आपके भी कुछ और सुनाना है, क्योंकि बबली जी ने कुछ संदेश रखे। अभी हम सब आपके ओर बढ़ेंगे, फिर गीत के ओर, या पहले गीत चला देते तो फिर हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: बबली जी, अभी आपने कहा कि चौड़ा नाभि वाला शक वाला होता है, जो मनुष्य बहुत शक करता है उसका नाभि चौड़ी होते हैं, तो हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा पहचान हो गया है मनुष्य जो बहुत ज्यादा शक करेगा तो जान जाना कि इसका नाभि थोड़ा चौड़ा है।
1: जरूर, सही बात
0: अच्छा, तो यहाँ जैसे संजय जी ने कहा है तो मैं अपना भी यहाँ से जारी करती हूँ। दज भाषा में नाभि के बारे में, नाफल के बारे में बताऊंगी, पर ये जरूर कहूंगी संजय जी, बबली जी, ये जो ओलिया है नाभि में लगाने के लिए तेल जो है, ये हानिकारक ना है कि ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल करो तो गड़बड़ी आएगा या नहीं, ये तो बहुत आसान से हैगा।
2: बहुत आसान से है। हाँ। और जैसे कि जोन जोन रकम का तेल और क्या क्या हम सब के लिए द फॉरबेटरिंग फॉर ओन सेल्फ है, तो हम सब के लिए क्या क्या और बढ़िया कर सकते हैं यानी कि फॉर ओन सेल्फ, तो जरूर सुनने वालों इस पे ध्यान देना। और अभी शांता जी जो, और मेरे ख्याल से और भी तेल है ना शांता जी, जो अभी आप जानकारी, क्योंकि आप कितने प्रकार का तेल के बारे में सुना चुके हैं।
0: हाँ, तो आप आगे आप सुनते रहे ना, तो आपको सुनने में मिलेगा कि और किस तेल के बारे में हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो उसके बाद हम आपको सुनाएंगे फॉर किडनी पेन, जॉइंट है, कैसे कहते हैं,
2: जॉइंट, हाँ, घुटनों,
0: घुटन, फॉर किडनी पेन दू स्नैक्स फॉर एट स्लापन खान द्री द्रुपल्स कस्टर ओली इन ये नाफल एंड स्मेर हेट अंडर हाफ सेंटीमीटर रोंट ये बैग।
2: शांता जी, कस्टर ओली, कस्टर ओली क्या ये वही तेल है जो हम लोगों बेओखे में जाकर पीते थे, कस्टर ओली?
0: हाँ संजय जी, वही
2: वही तेल जो हम सब जा करके और बेओखे में पिया जाता था, और उसके बाद में तो घर पे सुपु बनाया जाता था ना, और हाँ, भी काम होता था का, हाँ, ज्यादा तादाद में। पर आजकल इसके बारे में हम लोग के द यंगर ऑन से केंद्र एंड सो वो उस पे ध्यान नहीं दिया जाता है।
0: हाँ, आप लोग जाते थे बेओखे, हम लोग के तो महीना में एक दफे हमारा माताजी मामा एक एक एट लेपल हम लोग के देते थे पीने के लिए सात डाह के, और उसके बाद हंडा भर वड़का हड़िया भर सूप बनता था,
2: ब्राफू सूप बनाया जाता
0: ब्राफू
2: था।
0: सूप, हाँ,
2: ब्राफू सूप, और यानी कि अपना पेट का साफ रखने के लिए, हाँ, और पहले बहुत उस पे ध्यान दिया देता था, हाँ, और आजकल उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता मेरे ख्याल से। अभी तो मैं कभी किसी के बच्चे का मैं नहीं सुना कि मैं किंत मुतनार द कंसल्टेंसी फॉर एन लक्सेर मेडल,
0: मां अब तो बहुत सहज में मिल जाता है, दरखस्तराई में मिल जाता है खरीद कर, और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आपके लिए, बबली के लिए, मेरे खातिर भी है,
2: और मिलता है,
0: हाँ मिल जाता है मां, जो यहाँ पे मिलता है वो रोइक फ्राई होता है,
2: रोइक फ्राई होता, हाँ, वो कस्त्रोली जो होता था ना क्योंकि वो हमारे जाति भाई लोग भी अपने बालों में लगाते थे ना,
0: हाँ,
2: तो उसे

0: 20 मीटर से महक उसका
1: आ जाता था
0: उसका सुगंध। तो दोस्तों अभी जो कस्त्रोली ऑयल के बारे में शांता जी जो संदेश रखे कि आपके घुटनों में यानी कि यकनीय अशदार पेन है और उसे लगा करके कैसे शांता जी उसे आप प्लीज दोहरा दी।
1: फर्कनी पेन दूसरा फंस वर्ड स्लापन खान द्री ड्रॉप्स कस्टर ओली एयनाफल एंड स्मेर हेड अंडर हाफ सेंटीमीटर रोंट योर बैक एंड फॉर pijnverlossing en droge huid. Doe 's avonds voor het slapen gaan 3 druppels mosterdolie in je navel en smeer het 1,5 centimeter rond je navel. Warm olie in en om je buikknop zetten. Je navel kan detecteren welke aderen zijn opgedroogd en door olie te zetten openen de zenuwen. Je kunt een klein druppel potje met een benodigde olie naast je bed bewaren en een paar druppels in je navel plaatsen voordat je gaat slapen. Dit maakt het handig om te gieten en voorkomt per ongeluk morsen. तो यहाँ तक था सुनने वालों थोड़ा जानकारी नाभि के बारे में और तेल के बारे में जो यहाँ से कई प्रकार के तेल का नाम हमने आपसे बताए हैं और किस किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको सुनने के लिए मैं कहती हूँ धन्यवाद।
0: सुनो वालों अभी तो रेडियो बाकी है शांता,
1: रेडियो बाकी है पर आप जो इतने अच्छे से बैठकर और सुने हैं मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ।
0: तो दोस्तों हम सब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं पहले एक सुंदर सा गीत और गीत के बाद में फिर बबली जी जो हम सबको कुछ और संदेश रखने वाले है।
2: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

अब मैं आपको बताऊंगी कि नाभि उखड़ने से क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए। नाड़ी उखड़ती है भारी सामान उठाने से, सीढ़ी पर तेज चढ़ने से नाड़ी उखड़ जाए, और उसको ठीक करने के आसान तरीके। नाभि अगर आपकी खिसक गई है या फिर बार बार खिसक जाती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं जिससे खिसकी नाड़ी अपनी जगह पर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नाभि अपनी जगह पर आ जाए तो चाय पत्ती उबाल कर पी लीजिए, फिर देखिए कैसे पेट का दर्द ठीक होता है। नाभि अगर आपकी खिसक जाती है तो आपको आसन करने चाहिए जिनके नाम है नौकासन, पवनमुक्त आसन और हलासन। इससे नाभि खिसने की समस्या दूर हो जाती है। सरसों का तेल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। नाभि खिसकने में 3 से 4 बूंद सरसों की नाभि में डालें। ऐसा करने से खिसकी हुई नाड़ी अपनी जगह पर आ जाएगी। जब आपकी नाड़ी खिसक जाए और दर्द बहुत हो रहा हो तो वो मसाज करवा लें। इस दौरान मसाज एक्सपर्ट से करवाएं, क्योंकि नाड़ी खिसकने का विशेष तरह का मसाज होता है। सूखा आंवला भी खा सकते हैं पेस्ट बनाकर, इससे भी खिसकी हुई नाड़ी अपनी जगह पर आ जाएगी। इसका रस भी पी सकते हैं। सौंफ भी नाड़ी खिसकने को ठीक कर सकती है। इस सुबह खाली पेट खा लीजिए, ऐसा करने से आराम जल्दी आएगा।

जी हाँ सुनने वालों, गाना के चून से, गीत के चून से तो पता चल गया है। और यहाँ से मैं ज़रूर कहूँगी कि मन से अमीर रहिए, मन से अमीर रहिए, धन तो आता जाता रहेगा। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी। राम राम पर।

विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।

लोग अक्सर कहते हैं जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए शांता खेमई जी, बबली आसरा जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुँचे होंगे। सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार, फिर मिलेंगे।

0: कभी तो हंसाए।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इस बार कसमें वादे प्यार वफा, फिल्म का नाम उपकार।

0: फिल्म उपकार से सुने कस्मे वादे प्यार वफा।
1: ये भाई

इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है,

समय के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, समय के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, क्योंकि दुख के बात यह है कि समय बहुत कम है, और खुशी के बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए वक्त मत गंवाओ।

मेरा यार मेरी जिंदगी फिल्म का नाम ज़मीर, फिल्म समीर से ये सुंदर सा गीत हमने यहाँ पर आपके लिए पेश कर दी है। मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है। घर बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होता, घर बैठे सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। इस बार सुनेंगे चलत मुसाफिर मोहे ले लिए। फिल्म का नाम तेरी कसम, नहीं नहीं तीसरी कसम होना चाहिए।

फिल्म तीसरी मंजिल से ये सुंदर सा गीत आपने सुने। इस बार सुनेंगे लागा चुनरी में दाग दिल ही तो है। ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है 1963 में।

कितने कमाल के साज और संगीत पे हमने सुंदर सा गीत सुने और फिल्म का नाम दिल ही तो है जो, और इस बार हम सुनेंगे झनक झनक तोरी पायलिया।

तुझ बिन जीवन कैसा जीवन, क्या दर्द भरी बयान इसमें हमने सुने हैं। फिल्म का नाम बावर्ची, 1927 तक में ये पिक्चराइज किया गया फिल्म है। शीशा कमज़ोर होते हैं, शीशा यानी कि आईना कमज़ोर बहुत होते हैं, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमेशा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो, ये सोच कर कि इस दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान और लोग भी हैं।

क्यों ना कैसे मैंने रहने बिताई, मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का नाम।

चाहते हुए भी कुछ राहों से गुजरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कुछ राहों से गुजरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी अपनों के लिए खुद को ही भूलना पड़ता है। ये ज़िंदगी ऐसी होती है दोस्तों, ये ज़िंदगी ऐसी ही होती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबसे बड़ी उदाहरण है हमारी सांसें।

जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आते हैं वक्त नहीं। आपको बड़े प्यार से हम यहाँ से आपको स्वागत कर रही हूँ सुनने वालों। और यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे मेहंदी हसन के खूबसूरत आवाज़ में एक सुंदर सा गीत, यहाँ से आपके लिए पेश करेंगे।

जाने जा तू जो कहे, मेहंदी हसन के आवाज़ में हम सभी ने सुने। तो किसी ने क्या खूब कहा है सुनने वालों की, जो जो क्लॉप होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि फॉलक योर हार्ट वन दी क्लॉप या

सुनने वालों, मोहब्बत तो ज़िंदगी है, मोहब्बत से आप और हम, मोहब्बत से ये जहान है। और कह रहा कि लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है और प्यार की ज़रूरत दिल में होती है।

हाँ जी, हमने सुने। आप सोचते होंगे कौन ये गीत गाए है, तो हम आपसे बता दें, नूरजहां। जी हाँ, नूरजहां के आवाज़ में हम यहाँ से सुन रहे हैं ये सुंदर सुंदर सा गीत।

किस नाम से तुझे पुकारूं और क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी बता दे तो, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ऐसे ही वो शोले में बसंती से पूछ रहे थे।

पर हुआ जो हमने सुने और ये भी एक बार जो हमको फिर से सुनाई और वो भी है नूरजहान की आवाज़ में।

सुंदरगीत जो हमने सुने और सुनाए हमको महेंद्र कपूर जी, सुरेश वर्तकर, उषा खन्ना, सुंदर सा गीत जा देखा तेरा वादा। जीवन एक यात्रा है, जी हाँ जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी। जीवन रोकर जिएंगे तो बहुत लंबी लगेगी, और हंस कर जिएंगे तो कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा।

आया करो मैं क्या सुकु सुकु हमने सुने फिल्म जंगली से जो फिल्म जंगली से जो ये सुंदर सा गीत निकाला गया है और हमारा मरहूम मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में हम सब मिलकर सुने।

0: म्यूजिक।
1: जिंदगी वाकई में इम्तिहान लेती है सुनने वालों। जीवन से सबसे बड़ा, जीवन में सबसे महंगी चीज क्या है? हाँ सुनने वालों, जीवन में सबसे महंगी चीज क्या है? आपका वर्तमान, हमारा और आपका वर्तमान। वर्तमान जाने कि इस पल, ऑफ दिस मोमेंट, नू, ये हमारा सबसे महंगी चीज है, वर्तमान, आज, इस पल, इस वक्त। जो एक बार चला गया ना, तो फिर पूरी दुनिया के संपत्ति से भी हम उसे वापस, हम उसे खरीद कर नहीं ला सकते। और समय के बाद सुनने वालों, घड़ी, हम यही दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु से, परमात्मा से कि हे कान्हा, मेरी एक ही प्रार्थना है कि महंगी घड़ी सबको देना। हाँ सुनने वालों, कि महंगी घड़ी सबको देना, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को ना देना। हाँ, इसमें भी एक अंतर है कि महंगी घड़ी पहनने से तो वक्त तो चलेगा, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना मिले।

यस। हर वक्त हर वक्त बदलाव तो जीवन में होता है, मौसम में होता है, इसलिए ये भड़कती हुई गीत आपके लिए पे

हे कमलेया, जयंत महावीर जी के आवास में, और यहाँ से आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए फारिस बरसाती।

0: के लिए हम जरूर से आगे में सुनाएंगे।
1: न्यू DAB+ रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले DAB+ रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

जिंदगी की बस यही रीत है, आप तो गीत में सुन ली है कि कभी हार है तो कभी जीत है ना। फाहोन रेडियो से आप और मैं जुड़े हूँ सुनने वालों आज इस खूबसूरत पल के लिए, ये खूबसूरत पल के लिए हम यहाँ से भी आप वहाँ से भी एक दूजे के बंधन में बंध

बेकार होता अगर तुम ना होते ये जिंदगी। रैंडे बाई ताली जी की आवाज पे म्यूजिक फॉर्मेट सी नो मर्सी साज और संगीत के जरिए से आप फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये सब सुंदर सुंदर भड़कती हुई गीत नए नए गीत आपके लिए पेश किया जाता है। ऐ मेरे दोस्तों प्यारे प्यारे सुनने वालों, दिल के अरमा आंसुओं में बह गया सलमा आगा जी की आवाज पे।

के अरमा आंसुओं में बह गए। ये दर्द भरी गीत सलमा आगा जी की आवाज में फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपके लिए पेश किया गया है। सलमा आगा के बाद हम सुनेंगे विशाल खेमा जी की आवाज में हम छोड़ चले हैं महफिल को। हम छोड़ चले हैं महफिल की तरफ बढ़ते हुए हम आपको ये कहना चाहती हूँ, कहना नहीं बल्कि बताना चाहती हूँ, स्टेक द फ्लम फन वेरल सलीफ द अन एंड मार्क इंग द अस मार्क फन ये हार्ट एंड पेन मार्क फन ये इंटेलेक्ट एंड स्क्राइवर एंड स्क्राइव en schrijf dat wat geen grens of einde kent. Schrijf dat wat geen grens en einde kent. Als iemand heeft besloten geen respect voor je te tonen, wat je ook doet, zal hij of zij niet plotseling je waarde inzien. Verspil geen tijd met wachten tot ze van mening veranderen. Gebruik je inspanning daar waar het een verschil maakt. Geloof me, je zult later beseffen hoe goed het verder gaan is. Hoe goed het verder gaan is en is geweest. Als u zelf het inziet en de verandering inbrengt. En daarvoor hebt u heel veel inspanning nodig. En u kunt dat wel. विशाल खेमा जी की आवाज में हम छोड़ चले हैं महफिल को।

आपके मनचाहा रेडियो स्टेशन रेडियो फाहौन पर आप चुन है। मैं आपका दोस्त रजेश आप सबके सेवा में। अभी आपने सुने प्रोग्राम होस्टेड बाय साथी अनाउंसर रोमियो होस्ट और लाए थे कुछ ताजा खबर खास करके सुरीनाम देश के बारे में। दोपहर यानी कि 4:05 व्यतीत होते हैं। आप सबको एक शुभ दिन, एक शुभ सोमवार एंड हेल फैन मांदा तो कवेंस्ट।

पाँच बजे तक मैं आप सबके सेवा में हूँ और सबसे सबसे नए नए गीत लेकर जब मैं आया हूँ तो आप सुनते जाइए, लुफ्त उठाइए, मनोरंजन ही मनोरंजन आपके ओर आ रहा है।

इसे सुनने वालों, आप सुनते हैं ये सब, मुझे लगता है थोड़ा से AI इसमें शामिल हो गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सुन करके बता सकते हो मुझे

ऐसे ना मुझे तुम देखो द फंकी रेगे मिक्स। और पूरा उम्मीद या तो आशा मैं करता हूं कि आपके जरूर से बहुत पसंद आया हुआ होगा।

और इसे धूप छाई है जहां तक भी आप सुनते हो दुनिया भर में, यानी कि इंटरनेट के लहरों से आप सुन सकते हो फाहोन FM.NL और यहां पर आप देखते हो गर्मी का मौसम है, यानी कि समर टाइम है, तो कुछ चटक मटक आपके लिए चुन कर लाए हूं।

अरे जी जबरदस्त डिस्को सॉन्ग आप सबके सेवा में पेश हुए हैं। पता नहीं एक मिथुन का फिल्म था

तो जैसे मैंने पहले से कहा कि AI का समाना है और ऐसे म्यूजिक रेवोल्यूशन में भी बस गया है। तो AI से सिर्फ कहना मेक दिस सॉन्ग अ डांस सॉन्ग और अ रेगे सॉन्ग और अ अफ्रीकन सॉन्ग।

और दोस्तों मित्रों, तब यहाँ तक मेरा हिस्सा आज के लिए। बुधवार को फिर मिलते हैं। आप सबको एक शुभ दिन हो और सुनते जाइए फाहन हिंदुस्तानी रेडियो।

0: नीले गगन के तले
1: नीले गगन
0: म्यूजिक फार्मेसी एक्सक्लूसिव। हाँ हाँ, आप सोचते होंगे कि हम बीच में क्यों बात कर रहे हैं, तो चलो यहाँ से आपके लिए एक बार फिर शुरुआत कर देते हैं।

What a song, what a song. नीले गगन के तले रणधीर और डीवॉक्स के आवाज में म्यूजिक फॉर्मासी एक्सक्लूसिव और शिनेल गीत गाया गया है महेंद्र कपूर की आवाज में। बस बद बद बद ये कुछ अलहिदा है, सुनते ही झूमने को जी चाहता है ना? Yes, yes, yes, yes, yes. You're listening to Radio Fahun. हम जख्म गहरा देंगे, तुम थोड़ा सब्र तो करो। आए मेरे दोस्त, मेरे सुनने वालों, प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम जख्म गहरा देंगे, तुम थोड़ा सब्र तो करो।

कि मैं ए मेरे दोस्त हाय रे मैं तेरे कुर्बान सचित टंडन जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है। तुम दूर रहो या करीब रहो ए मेरे दोस्त, तुम दूर रहो या करीब रहो, मेरी चाहत हमेशा हमेशा हमेशा तुमसे ही रहेगी।

क्या कहना क्या कहना है, देवेंद्र सिंह हिमसेल्फ द लाइन। जब कोई बात बिगड़ जाए तो आप सोचो मेरे प्यारे सुनने वालों, और शिनेल अगर आप सुनो तो उसका मजा कुछ और है, और कलास तो देखो। इसको कोफर कर दिया है, एक डांस नंबर बन गया है, और इसमें भी कितना मेहनत लगा होगा ये इस ढंग से बनाने के लिए कि जब कोई बात बिगड़ जाए। बहुत खूब से, बहुत खूब खूब ढंग से ये सोच समझ कर और कॉफर कर दिया। अच्छा लगता है भी सुनने के लिए देवेंद्र सिंह शिवनाथ हिमसेल्फ। बस साथ चलते रहो, बस साथ चलते रहो ए दोस्त, कुछ पल की नहीं, कुछ पल की नहीं, ये दोस्ती हमें उम्र भर चाहिए, यू नो। आपने ठीक सुना, ये दोस्ती मुझे उम्र भर के लिए चाहिए, बस चाहिए।

0: ये चांद सा रोशन चेहरा आपने सुने। अभी तो शीशा हूँ सबकी आंखों में चुभता हूँ, अभी तो शीशा हूँ सबके आंखों में चुभता हूँ, जब आईना बनूंगा ना सारा सारा जहाँ देखेगा, जब आईना बनूंगा तो सारा जहाँ देखेगा।
1: न्यू DAB प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले DAB प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाश वाणी।

0: विंशतर जो और रीमा जी की आवाज में पहला नशा योर स्टिल द वन यू स्टिल द इन हसैन पहला नशा ना समझ ही रहते तो अच्छा था ना समझ ही रहता तो अच्छा था उलझने बढ़ गई है जब से समझदार हुआ हूँ जितने ही ए मेरे दोस्त
1: Gezond leven. Schakel pijnverlichting in met Elmec Sensitive Professional Reading.
0: जितने खराब हालातों से आप लड़ोगे कामयाबी उतने ही बड़ी होगी जितने आप हालातों से लड़ोगे कामयाबी ऐ मेरे दोस्त उतने ही बड़ी होगी हिम्मत नहीं हारना है बस बढ़ते ही चले जाना है

सुंदर सुंदर काफर किया गीत आपके लिए पेश किया जाता है। जी हाँ, आप ही का फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। पागल यानी कि आप बहुत सोचोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि अगर आप चल पड़ोगे तो जरूर से मंजिल आपके करीब ही होगा और आप ही का ही फायदा उसमें होगा। और कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता दुनिया सोचता है क्या। फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, मैं अच्छा हूँ ये मेरी माँ कहती है। और ये दो लाइन भी बहुत गहरा है। उम्मीदें नहीं थी उसकी जो हकीकत में हुआ है। उम्मीदें नहीं थी उसकी जो हकीकत में हुआ है।

But I love you सच्चे में ए मेरे दोस्त, I love you, दिल से कहती हूँ, आप है तो सब कुछ है, प्यार है तो सब कुछ है, क्योंकि प्यार से ये सृष्टि बना है, आप बने हैं, मैं भी बनी हूँ, ये रेडियो स्टेशन भी बने हैं। ये दो लाइन आप सुनोगे तो आप कहोगे वाह वाह। लिखने वाले कितने अच्छे अच्छे ढंग से लिख दिया है। कहते हैं कि उड़ने दो मिट्टी को जो उड़ने दो मिट्टी को आखिर कहाँ तक उड़ेगी, उड़ने दो मिट्टी को आखिर कहाँ तक उड़ेगी। हवाओं ने जब साथ छोड़ता तो जमीन पर ही गिरेगी। उड़ने दो मिट्टी को आखिर कहाँ तक उड़ेगी, उड़ने दो मिट्टी को आखिर कहाँ तक उड़ेगी। हवाओं ने जब साथ छोड़ता तो जमीन पर ही।

farhånden udsendte det på radioen her, farhånden udsendte det jo, आप ही का रेडियो आखिर तुम्हें आना है। बरसात के मौसम में फिल्म का नाम है मिस्टर सानू एंड उदित नारायण, दोनों की आवाज में आप सुनेंगे।

0: है मेरी हमरा, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

बारिश हो या झूरा, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, हमेशा लेता रहना फाउन हिस्सा रेडियो का नाम। दोस्तों, अब की बार जो सॉन्ग आप सुनेंगे साहिद वाहिद का म्यूजिक है और समीर का लिखा हुआ सॉन्ग है, और एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ खोया खोया चांद लाइक नेवर बिफोर। बाबुल सुप्रियो का सोल वॉइस में आप ये सॉन्ग सुनेंगे।

बाबू सुप्रियो के बाद दोस्तों तैयार हो गया है उदित नारायण एंड अलका याग्निक। अभी तो मोहब्बत की आवाज है, अभी तो मोहब्बत का आवाज है। क्या आवाज है दोस्तों, ये दोनों की मीठी आवाजों में आप सुनेंगे उदित नारायण, पद्मश्री उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: ऐ मोहब्बत के दोस्तों, है मोहब्बत के दोस्तों, आपको मैं छोड़ देता हूँ मोहब्बत के दुश्मनों। है मोहब्बत के दुश्मनों, आपको मोहब्बत नहीं आता है, क्यों दूसरे के रास्ते पर आप, क्यों दूसरे के सड़क पे आप चलते हो? छोड़ दो, एक दूसरे को प्यार करने दो। क्या आप बीच में जाकर और ये मोहब्बत रोक देते हो? ऐसा मत करना चाहिए।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है, तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू।

अब की बार दोस्तों कृष्ण कुमार कुन्नत या मिस्टर के आवाज में द वॉइस ऑफ लॉ ऑफ मिस्टर के इनकी आवाज में आप गीत सुनेंगे।

किया बादलों में, किया बादलों में सफर जिंदगी भर, समीप बनाए घर जिंदगी भर, किया बादलों में सफर जिंदगी भर, जमीन पे बनाए घर जिंदगी भर, मोहब्बत रही चार दिन के जिंदगी में, मोहब्बत रही चार दिन के जिंदगी में, रहा चार दिन का इंतजार नहीं जिंदगी भर। अरिजीत सिंह की आवाज में आप गीत सुनेंगे।

हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, वाह हिंदुस्तान रेडियो हमेशा आपके साथ। सॉन्ग में पाकिस्तानी सांगर अतीफ असलम के आवाज में आप सभी को ले पेश करूंगा। एंटीक हिंदी सॉन्ग कलेक्शन से मैं निकाल के आपके घर तक पहुंचाऊंगा। आप जहां पर भी रेडियो सुनते होंगे आपके कानों तक मैं पहुंचाऊंगा अतीफ असलम का सॉन्ग।

आतिफ असलम ये न सिर्फ एक सानर लेकिन एक एक्टर भी पाकिस्तानी के पाकिस्तानी फिल्मों में भी आतिफ असलम ने काम किया है। अभी एक दूसरा गीत मैं आतिफ असलम का आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं चला जाता हूँ बाबुल सुप्रियो के सॉन्ग के ओर। और बाबुल सुप्रियो ये भी एक काफ़ी मशहूर गायक है, उसके आवाज़ में आप सुनेंगे मेरी तरह तुम।

बाबुल सप्रियो और साथियों की आवाज़ में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ अतीफ असलम के एल्बम के ओर। और अतीफ असलम 2005 में बॉलीवुड का प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने उन्हें मौका दिया फिल्म सहर में एक नंबर पेश करने के लिए। और वो था ये गीत दोस्तों, मैं आपको सुनाऊंगा वो लम्हे वो बातें अतीफ असलम के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

लतीफ असलम के आवाज में वो लम्हे वो बातें, अब की बार मैं चुन के रखा हूँ दोस्तों, सेलेक्ट करके रखा हूँ अभिजीत का एक सॉन्ग। और अभिजीत ये प्लेबैक सिंगर से पहले ये एस डी बर्मन के साथ शो देते थे, शो पर स्टेज पर गाना गाते थे। उसके बाद ये नेखरी त्वेन तख्तक में जैसराज फिल्म ने इन्हें ले लिया गया और ये वहाँ से शुरुआत किया अपन प्लेबैक सांगर का काम, वो भी बॉलीवुड फिल्मों में। वैसे प्लेबैक सांगर म्यूजिक कंपोनिस्ट और ऑन द नेमर भी अभिजीत है। तो अभिजीत की आवाज़ में एक दो सॉन्ग आप सुनेंगे।

अभिजीत अभिजीत अभिजीत अभिजीत गुलशन कुमार और एरदे बर्मन के साथ शुरुआत किया दोस्तों, जैसे मैंने कहा तो किशोरदा का गीत गाते थे, उसके बाद अपन सिलेक्शन बॉलीवुड फिल्मों में पेश किया। एक बार फिर अभिजीत के मीठी आवाज में आप गीत सुनेंगे, अभिजीत बच्चाचारिया।

अब की बार दिल में हो तुम। बप्पी लहरी का म्यूजिक है और अरमान मालिक के आवाज में आप एक गीत को सुनेंगे। अरमान मालिक सॉन्ग राइटर, इंडिया से सांगर, म्यूजिकांत, प्रोड्यूसर और एक्टर। ये सिर्फ हिंदी में, लेकिन तेलुगु, एंग्लिश, बंगाल, कनाडा, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और मलयालम में भी अपन गीत पेश किया है। अरमान मालिक के आवाज़ में गीत सुनेंगे आप।

हूँ सीधे साधे राजन, आप सुन रहे फाहन हिंदुस्तान रेडियो राजन के साथ श्रिया घोषाल एंड पद्मश्री उदित नारायण। जमाने की सारी खुशी मिल गई है। जब जमाने की सारी खुशी मिल गया दोस्तों, तो और जमाने में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, और कुछ कमी नहीं है दुनिया में जब सारी खुशी मिल जाए तो।

में तुम मिले जिंदगी मिल गए, अभी भी किसी ने सीरियो में तार किया कहा, पुराने गाने में जो मजा था अभी की गाने में कहा। 200 लोग है जो पुराने गाना से मजा लूटते हैं, और लोग जो है वो नए गाने भी चाहते हैं, तो पुराने नए गाने सब चलाना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी पुराने गाने चलाते हो, कभी कभी नया गाना आपके लिए पेश करता हूँ। पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपको मालूम है वो दिन वो तारीख आपको याद है या नहीं? आपको ज़रूर याद होगा। ये पहली बार जो मोहब्बत होता है वो हमेशा दिल में जाकर समा जाता है और कभी दिल से नहीं निकलता है। ये चीज़ मैं सोचता हूँ जैसे सभी के साथ होता है। दोस्तों, पहली पहली बार मोहब्बत की है, किसी ने ये बात नहीं कह सकता है कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की है। मोहब्बत एक चीज़ है जो हर एक इंसान एक बार जरूर किए होंगे, तो आप भी किए होंगे, मैं भी किया है, वो भी किया है।

एल्बम सदक का सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। संजय दत्त और पूजा भट्ट फिल्म में काम किया। संजय दत्त दोस्तों बीते हुए दिनों में ये आदमी जेल यात्रा, इसे मैं अच्छा कहा जेल यात्रा या जेल कातिल कोई बात नहीं, ये जेल गया और ये फिर वापन खफालक था। तो कई महीना ये जेल, लगभग 8 महीना ये जेल काटा। लेकिन उन दिनों में सलमान खान इनका बहुत मदद किया, संजय दत्त का मदद उन दिनों में सलमान खान बहुत किया। अब की बार धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मिस्टर सानू वंस अगेन, लेकिन अब की बार नहीं नहीं एक बार फिर अनुराधा पौडवाल के साथ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।

रुलाना रुलाना हर किसी को आता है, रुलाना हर किसी को आता है और हंसाना भी हर किसी को आता है, मगर रुला के जो मना ले, रुला के जो मना ले वो बाप होता है, और रुला के जो खुद रो पड़े वो सिर्फ माँ होता है। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए।

भरी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए। साथी किस तरह से मिलेगा दोस्तों? हम लोग के तो हिंदुस्तानी लोग को यहाँ पर रईस बिरो है, फ्लेश वेंकल है, तरकारी दुकान है, कपड़ा दुकान है, लेकिन हीलक्स बिरो मुझे पता नहीं है या नहीं। अगर होगा दोस्तों तो आप फाउन हिंदुस्तानी से कॉन्टैक्ट करके और प्रचार कीजिए, ये हीलक्स बिरो के जरिए साथी ज़रूर मिल जाएगा। आपके करीब है, आपके करीब हम रहते हैं।

रोमांटिक सॉन्ग साजन की बाहों में से मैं निकाल कर आपके लिए पेश किया था। सो ऋषि कपूर एंड टब्बू इस फिल्म में काम किया। कभी ये चांद सितारे जमीन पर रहते हैं। आपको मालूम है कि ये जमीन पर कितने चांद सितारे रहते हैं? अगर मालूम नहीं दोस्तों तो खोज कीजिए, यकीन कीजिए, देख लीजिए, तो आपको चांद सितारे जरूर नजर आएगा। जिंदगी को प्यार बिना

दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी बड़े जतन से कमाई है। इसमें रफ्तार तो भरपूर है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव ना गहराई है।

वास्तव में जब दिल लेना है तो दिल फिर देना पड़ेगा। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बात में सोचता हूँ कि ये सही हो गए, लेकिन जो गीत मैं पेश करूँगा वो है ये आंखें है आईना मेरी जिंदगी का।

कोई मेरे दिल में है, मुझे तो ये एहसास नहीं होता है कि आपको एहसास है कि कोई आपका दिल में है। मैं सोचता हूँ अगर होगे तो आपको जरूर एहसास होगे। कोई मेरे दिल में है, अनुराधा पौडवाल एंड मिस्टर सानू।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्वप्न। सपने, सपने हमें क्यों आते हैं, सपने हम क्यों देखते हैं और उन सपनों का मतलब क्या है, इस सब विषय के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी।

स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न की परिभाषाएं, यानी सपने कितने प्रकार के होते हैं और उसकी क्या परिभाषा है। भारतीय मत, जागृत अवस्था में हुए संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान अवस्था का नाम ही स्वप्न है। जब हम जाग रहे होते हैं तो जो चीज़ें हम देखते हैं, और जब सो जाते हैं और जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उसी को हम सपना या स्वप्न कहते हैं। आरसत्तु, स्वप्न नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन है। जो आरसत्तु एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उनका मत है कि स्वप्न नींद के समय हमारे मस्तिष्क का जीवन है। ब्रिज, अवस्था शारीरिक परिणाम ही स्वप्न है। जब हमारा शरीर काम नहीं करता और हम नींद में होते हैं उसी को स्वप्न कहा जाता है। फ्राइट, नींद में मन पर क्रिया करने वाले उद्दीपकों को उनके ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया ही स्वप्न है। कि जब नींद में होते हैं और हमारे अंदर सारी चीज़ें मस्तिष्क में चल रही होती हैं और उसी को स्वप्न का नाम दे दिया जाता है। डायलॉग आलिस, जागृत अवस्था में जिन लक्षणों के कारण सर्वाधिक प्रबल रूप में कर्ता प्रभावित होता है उस अवस्था की पूर्ण प्रवृत्ति ही स्वप्न है। स्वप्न हमारे नरक और स्वर्ग की ओर प्रवृत्त होने का बैरोमीटर है। स्वप्न दर्पण है चित्त की दशा का। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वासना का प्रतिबिंब ही स्वप्न है। सर्वप्रथम स्वप्न ब्रह्मा जी ने देखा था। 33 देवों ने स्वप्न को शक्ति प्रदान की। स्वप्न तत्व, जिन व्यक्तियों की देह में पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक होती है उनका बाह्य आवरण थोड़ा कठोर, हड्डियां मजबूत और देह पर बालों की भरमार होती है। पृथ्वी तत्व तपोगुण प्रधान होता है, इसलिए ये जातक अधिक आलसी, अधिक सोने वाले, शीघ्र डर जाने वाले, देर से निर्णय लेने वाले, दीन स्वभाव वाले, अधिक मीठा खाने वाले तथा अधिक स्वप्न देखने वाले होते हैं।

सुनने वालों, अभी तक आपने सुना कि स्वप्न की परिभाषा क्या है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मन तथा स्वप्न, यह मन कभी निष्क्रिय नहीं बैठता, कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहता है। स्वप्नों के विश्लेषण का कोई वैज्ञानिक नियम भी नहीं होता। लिंग, स्वभाव, वातावरण की प्रतिकूलता के अनुसार एक ही प्रकार के स्वप्न विभिन्न व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। सुनने वालों देखो ना, जैसे हम सपने लेते हैं तो जैसे जिसका स्वभाव होता है उनके सपने भी अलग अलग होते हैं, व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जातियों और देशों के लोग एक ही प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्वप्न का कोई ठीक और निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। अंतःकरण में संस्कारों का जो समूह एकत्र रहता है उसी में से किसी एक या अनेक का चित्र शुद्ध अथवा विकृत रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। संस्कार अथवा चिंतन निकट वर्तमान कालीन अथवा दूर भूतकालीन भी हो सकता है। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में घटित होते देखे गए हैं। काम स्वप्नों का अंतिम फल वही होता है जो जागृत अवस्था में किए जाने वाले विषय भोग का होता है और इसको स्वप्न दोष कहते हैं, जो एक रोग होता है।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना स्वप्न की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फल समय, स्वप्नों के फल पर विचार करते समय सर्वप्रथम यह बात देखी जाती है कि स्वप्न रात्रि के या दिन के सोते समय किस भाग में देखा गया है। दिन में देखे गए स्वप्न सर्वथा अविश्वसनीय माने जाते हैं। रात्रि के समय उत्तरार्ध में देखे जाने वाले स्वप्न अधिक विश्वसनीय होते हैं और चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त के निकट काल में देखे गए स्वप्न सच्चे होते हैं। रात्रि के चार पहर में देखे गए स्वप्न इस प्रकार फल देते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हो सुनने वालों कि जब दिन में सपने देखते हैं वो ज़्यादातर सच नहीं माने जाते, और जब रात को सपने देखते हैं उनको ही हम लोग सच मानते हैं या सोचते हैं कि वो सपने ही ठीक हैं। और उसके चार पहर बताए गए हैं जो हैं, पहला पहर के सपने एक वर्ष में, दूसरे पहर के सपने छः मास में यानी छः महीने में, तीसरे पहर के सपने तीन मास में तीन महीने में, चौथे पहर के एक मास में यानी एक महीने में, और प्रभात के सपने तत्काल यानी प्रभात सुबह के जो सपने हम देखते हैं वो हमें तत्काल उसी समय दिखाई देते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य की सिद्धि असिद्धि स्वप्न में देखना, कि जैसे हम में सपने जो आते हैं उनमें सिद्धि क्या है और असिद्धि क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। शैया पर बैठकर ओम हील हील शून पणे स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे देवे दवेश, हे शूलधारी, हे वृषध्वज, मैं सोता हूँ या सोती हूँ, मेरे कार्य में सिद्धि असिद्धि में कुछ भी फल हो उसे कृपा करके स्वप्न में कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप अजम्मा त्रिनेत्र ऐसे वाम विश्व रूप आप स्वप्न के अधिपति को मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को एक बार जाप कर और पूर्व की ओर सिर करके दाहिनी करवट के बल शयन करें और स्वप्न की प्रतीक्षा करें।

लगा। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सोने पर फल नाश। जो व्यक्ति स्वप्न देखकर फिर सो जाता है, वह मनुष्य स्वप्न से मिलने वाले शुभ अथवा अशुभ फल का भोगता नहीं होता। इसलिए शुभ स्वप्न दिखने पर बुद्धिमान पुरुष को पूर्ण नहीं सोना चाहिए और शेष रात्रि जागकर ईश्वर आराधना करते रहना चाहिए। यदि कोई पहले अशुभ स्वप्न देखे तो बाद के शुभ स्वप्न के फल को ही पाता है। बुरे स्वप्न को देखकर यदि व्यक्ति सो जाए अथवा रात्रि में ही किसी से कह दे तो बुरे स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है। अथवा प्रातःकाल उठकर भगवान शंकर को नमस्कार कर स्वप्न फल निवृत्त के लिए प्रार्थना कर तुलसी के पौधे को जल देकर उसके सम्मुख स्वप्न को कहें अथवा अपने गुरु को स्मरण करें, तब भी बुरा स्वप्न का नाश होता है। आप तो जानते हैं कि जब हमें बुरे सपने आते हैं तो हम एक दूसरे से सुबह उठ के बातचीत करते हैं कि रात को हमने ये सपना देखा। सुनने वालों, जब हम अपना बुरा सपना किसी को बता देंगे, किसी से बातचीत कर लेंगे तो मन को एक तसल्ली मिलती है।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि स्वप्न तथा माया। स्वप्नों के गीत सदा अधूरे नहीं रहते, पूरे भी हुआ करते हैं। यानी कि जो हम सपने देखते हैं वो कभी अधूरे नहीं रहते, कभी कभी सच भी होते हैं सपने। ऐसी बात नहीं है सुनने वालों,

जो अपना होता है वह कभी सपना हो जाता है और जो सपना होता है वह कभी अपना हो जाता है। एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक फरियाड के अनुसार स्वप्न हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रकाशन मात्र है, विशेषता हमारी वह इच्छाएं जो समाज के भय से जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं हो पाती स्वप्न में साकार हो जाती हैं। ये तो आप सब जानते हैं सुनने वालों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए लेकिन नहीं हो पाता, और वही चीज़ें कई बार हमारे दिमाग में घूमती हैं और वही सपना बन के हमें दिखाई देने लग जाती हैं।

हृदय में दबी हुई प्रत्येक वासना स्वप्न में पूर्तिमान होकर अनेक कर्तव्य दिखाती है, किंतु उनके यह विचार एकांगी तथा अश्मातक ही ठीक है। स्वप्न की अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है, जिसे समझने के लिए विशेष प्रकार की शब्दावली होती है। कोई दिव्य शक्ति मनुष्यों को स्वप्न के माध्यम से उनके शुभ या अशुभ भविष्य के विषय में सूचना दिया करती है। कुछ उन्हें अपनी चैतन्य आत्मा की शक्ति से प्राप्त सूचना बतलाते हैं। व्यक्ति को जब निद्रा आती है, यानी जब हम सो जाते हैं, तो उनका मन सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। हमारे जन्म जन्मांतरों का इतिहास लिखा रहता है। हमारे शरीर में एक ऐसी नाड़ी होती है जिसमें हमारे जन्म जन्म का इतिहास लिखा रहता है। ऐसा केवल आत्मा की शक्ति के कारण ही संभव है, जो अजर अमर है। सभी जानते हैं सुनने वालों की हमारी जो आत्मा है वो तो अजर और अमर है। ये शरीर ही हम लोगों का अरे मर जाता है तो, और इसीलिए किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। मानव देह में उपस्थित जीवात्मा विश्वव्यापी परमात्मा की शक्ति का ही एक अंश है। उसका कभी नाश नहीं होता और वह पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नए नए शरीरों में प्रकट होती रहती है। पूर्व जन्म के जो संस्कार बहुत बलवान हो और जिनकी जड़ें बहुत गहरी हो, वह इस पर जन्म में अनुकूल परिस्थितियां पाने पर पुनः याद आ जाते हैं और क्रियाशाली हो जाते हैं। जैसे हम जन्म जन्म से जन्म लेते रहते हैं और हमारी आत्मा तो अजर अमर है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं, कई बार वो हमारे साथ ही रहती हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर कलिटन का कहना है कि नींद में जितनी गहरी होगी स्वप्न उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं कलिटन मन, उनका कहना है कि स्वप्न हम जितनी गहरी नींद लेंगे सपने उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। स्वप्न देखना भी सांस लेने जैसी स्वाभाविक क्रिया है। नींद की गहराई पूरी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर 2 घंटे के लिए ही आती है, और सारी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर यह अनुभूतियाँ बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। अस्त व्यस्त स्वप्न अधिकतर खाने की गड़बड़ी या मादक पदार्थों के सेवन के कारण आते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जिक्र करेंगे तुरीय व्यवस्था। इसका मतलब है कि जो साधक, जो आदमी जागृत, स्वप्न और सुषमित इन तीनों अज्ञान अंधकार की अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेता है, वह ज्ञान और प्रकाश की तुरीयावस्था में प्रवेश पाता है। भगवान कृष्ण का गीता में योगी का रात्रि में भी जागते रहते रहने का संकेत इस अवस्था की ओर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी रात को जागते हैं, ये संकेत उन्हीं की ओर है। उसमें चेतना का पूर्ण जागरण होता है, सारा अंत जगत प्रकाशित हो उठता है, अंत ज्योति से जगमगा उठता है। ऐसी महाज्योति जलने लगती है जो बिना बाती और बिना तेल के युगों युगों तक जलने की समर्था रखती है। यदि पूर्ण ज्ञान की अवस्था है तो और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यही चमत्कारों का चमत्कार है। आप परमात्मा ही हो जाते हो, क्योंकि परमात्मा चेतना का सागर है, पूर्ण जागृति का प्रतीक है। इस पूर्ण जागृति की अवस्था को ही बुद्ध तत्व और शिव तत्व कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के सभी दुख विसर्जित हो जाते हैं। जीवन की प्रत्येक क्रिया उसकी साधना का अंग बन जाती है। वह चलते फिरते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, नहाते धोते साधनातर रहता है और सारी क्रियाएं उसके लिए जप, तप और ध्यान सिद्धि होती है, क्योंकि इन तपस्याओं की अनुभूतियां उसे सहज में अपने आप होती रहती हैं।

एक अमानसिक कारणों के बिना जो स्वप्न दिखेगा उसका ही फल प्राप्त होगा। निरोगी अप्रसन्न मन स्थिति में देखा गया स्वप्न भावी घटना का संदेश देता है। विकार रहित मन में दिखाई देने वाला स्वप्न ही उसके लिए उपयोगी होता है। विकार ग्रस्त मन में आया स्वप्न निष्क्रिय होता है। स्वयं स्वप्न देखने की इच्छा मन में ना हो उसके लिए कोई विशेष प्रयास ना किया गया हो एवं ना सार्गिक रूप में स्वप्न दिखे, तत्प्राय यह है कि स्वप्न पर किसी का वश नहीं चलता, वह निद्रा अवस्था में अवश्य ही दिखाई देता है।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। फल संपन्न स्वप्न, कि जिन सपनों का फल हमें मिलता है या मिलने वाला है तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं। इस उक्ति के अनुसार बिना प्रयास के मनुष्य को स्वप्न दिखाई देता है, ऐसे स्वप्नों का कारण अवश्य ढूंढना चाहिए। स्वप्न देवी सत्ता के अधीन होने से उसमें गलतियों का परिणाम भी कम होगा। ऐसे कारणों के लिए भी सपनों का सहारा निसंचोक रूप में लें, जिसकी जैसी भावना हो वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा, यह सिद्धांत समेक्षी होता है। सुनने वालों, आप सबको पता है कि हम हमेशा सपने में जो चीज़ें देखते हैं वो कभी सच होती हैं, कभी सच नहीं होती, ये तो बात है। आज मैंने आपके लिए थोड़ी सी सपने की परिभाषा बताई है, कि जो 10 परिभाषा है

सुनने वालों, आज मैंने आपके सामने स्वप्न की परिभाषा रखी और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें तो जरूर प्राप्त हुई होंगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे, आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाऊंगी अगली बार और सपनों के बारे में कुछ और जानकारी आपको प्राप्त होगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಂಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಧಿನಂ ಕುರುಮಿ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಶು ಸರ್ವದಾ ರುಬ್ರರು ಮಿಲ್ನೆ ಕಾ ಮೌಕಾ ನಹಿ ಪಾರಹ ಅಥ ಶಬ್ದೋ ಸೇ ಅಪ್ನೋ ಕೋ ನಮನ್ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ರೂಪ ಮೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋತಾ ಹೇ ಇಸಿಲಿಯೇ ಆಪ್ಕಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಕೋ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸೇ नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप इस समय फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे चून हैं और आज का विषय उसके बारे में थोड़ा से मैं रख देता हूँ कि साल 2023 में 150 साल हुए हमारे पुरखों जो भारत छोड़ करके हमें और जाकर के सूरीनाम देश में अपना कंतराक काटे और वहाँ से आज हम सब उसकी बीच है हम सब और यहाँ हॉलैंड में भी आकर के रह रहे हैं। क्या हम उसके बारे में कभी चिंतन किए कि हमारा पर आजा हमारा वृत आजा हमारा वृत आजी कौन थे? तो इस अंतर्गत में कुछ मटेरियल भारत से भी और हम सब इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे अभी और ख़ास करके मैं आपसे गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि अपना गांव जहाँ से हमारे पर पर पर दादा जो भारत को छोड़ करके गए थे वहाँ से और पंडित सूरज राज जी जो हम सब के साथ और अभी आगे कार्यक्रम में उसे टेलीफोन द्वारा और सम्मिलित करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी जो भारत से लेकर के और मूर्ति जो सूरीनाम देश में गए हैं वहाँ पर स्थापित किए हैं, इन बातों के हम सब अभी आगे में सुनेंगे। ये ख्याल रखना कि कुछ मटेरियल जो भारत में बनाया गया है उसे भी कोशिश करेंगे और अभी आपके लिए रखने के लिए। तो दोस्तों पहले हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे।

0: ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ये कार्यक्रम जो हमारे पुरखों जो 150 साल पहले सूरीनाम देश को और प्रवेश किए हैं, जो भारत देश को छोड़ करके सूरीनाम देश को गए हैं और वहाँ जा करके हमारे जो परिवार वहाँ शुरू हुआ सूरीनाम में, जिसका और बीच हम सब है आज इस कार्यक्रम में, उसके बारे में कुछ संदेश रखा जाएगा। ऐसा हुआ कि हम सब तैयार होकर और भारत देश पहुँचे और अपना परिवार के खोज में, तो परिवार की खोज खोजते खोजते और बहुत जो मेहनत से वो स्थान को प्राप्त किए जहाँ से हमारे पुरखों, हमारे पर दादा अख्तिन ससन नईखन तक में, उस समय जब बोट अब्बे जहाज जो होते थे लकड़ी का और बनाया जाता था, जिसे हम सैल बोट जो हवा के माध्यम से और कुछ 3 महीना तक समुद्र के लहरों द्वारा भारत को छोड़ करके सूरीनाम को पहुँचे, इन फीरन तख्त दाख जो रईस दूर हुए थे, तो वहाँ जा कर के पहुँचे और वहाँ अपना कंत्राक जो होते थे उसको काट करके और अपना फिर परिवार घर गृहस्थी बढ़ाए। तो हम भारत देश में पहुँचे और पहुँचे कहाँ पर, एक स्थान है जिसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है गोंडा, और गोंडा में गोंडा भी ठीक से और देखा जाए कि गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है और एक दौरप का नाम है भी, और दौरप में भी जो बड़े दौरप होते हैं उसमें भी छोटे छोटे और अपना इलाकाएँ होते हैं। तो एक होता है करगोपुर, और करगोपुर में हम लोग प्रवेश किए और वहाँ जबकि जा करके खोजा गया तो और मिला एक पंडित जी, और उसके साथ हम कार्यक्रम में पंडित सूरज जी के साथ कार्यक्रम में आगे हम प्रवेश करेंगे।
1: देखिए, जब आप पढ़े लिखे तो आपको ये तो क्लियर होगा कि ब्रह्म से
2: हम लोग
1: और शक्ति से
2: जी
1: हम लोग का प्रादुर्भाव हुआ।
2: सही बात।
1: सप्तऋषि आए,
2: सप्तऋषि
1: सनक सनंदन सनत को जो आए,
2: हाँ।
1: चार, और उसके बाद पांचवें नारद आए।
2: हाँ जी,
1: पांचवें नारद आए।
2: हाँ जी,
1: जो है तो 7 और 5 12 लोग हो गए।
2: हो गया 12।
1: 12 से हम लोगों का शुरू हुआ पूरे सृष्टि का निर्माण
2: शुरू।
1: मनु शत्रुपा आई इनके द्वारा।
2: हाँ जी,
1: बना सब ठीक है
2: जी।
1: अब जब हमारा गोत्र ब्रह्म है
2: जी,
1: हमारा गोत्र ब्रह्म है, फिर हम इधर उधर भटकने की जरूरत क्या?
2: जरूरत
1: हमारा गोत्र अच्युत है। अच्युत गोत्र यानी भगवान विष्णु का गोत्र होता है।
2: हाँ जी,
1: तो भगवान विष्णु का गोत्र अच्युत है, तो आप ये गोत्र लेकर के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि निज गोत्र मेरा ब्रह्म है। जो हमारा गोत्र है वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई गोत्र नहीं है।
2: सही बात।
1: सप्तऋषि भी तो ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए।
2: एकदम बिल्कुल।
1: तो जब ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए हैं ठीक है, तो फिर जो है अब हमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं।
2: बिल्कुल ना, पर माथा पच्ची नहीं करेंगे तो कैसे आपके साथ यहाँ बैठे?
1: हाँ, ये सही
2: तो
1: है।
2: बोले प्यासा को आप समझ गए, तो मैं इसलिए आपका अप नंबर हो गया ना।
1: चलिए,
2: और जो
1: गया।
2: इस समय हम लोग यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहे हैं ये नहीं होता भी।
1: जी जी, सही है।
2: समझ गया।
1: देखिए, ईश्वर की कृपा थी, मुलाकात हो गई।
2: ये जो होना है वो होना है, और ये बड़ा ये तो मुझे, अरे यही तो मुझे देखना था।
1: दर्शन करवाते हैं। देखिए, सबसे पुराना मंदिर है।
2: हाँ जी,
1: ये उदासीन आचार्य है, उदासीन आचार्य श्री चंद्र भगवान नानक जी के लड़के।
2: हाँ जी,
1: तो नानक जी का ये मंदिर है
2: जी,
1: शिव जी का मंदिर है।
2: ये तो जो सोचा भी नहीं था।
1: हाँ,
2: ये है मंदिर पुराना।
0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, तो ये आवास जो एक वहाँ करगोपुर में हम सब पहुँचे पुलिस खाना के पास और जो प्रश्न किए, तो वहाँ ये पंडित जी को हम सबको मिला दिया गया, और पंडित सूरज जी जो अपना मोटरसाइकिल पे आए थे, और हमने वहाँ का वातावरण, हमने वहाँ का और पहुँचते हुए वो जो अपनापन होता है, वो महसूस किया और मोटरसाइकिल पे पंडित जी के साथ बैठ गए और जैसे कि मोटरसाइकिल खींच रहे हैं आगे के ओर, तो सड़क पे देखने को मिलता है पत्थर का सड़क था, पर पत्थर का सड़क पर आप ऐसा महसूस कीजिए कि पत्थर का सड़क पर फूलों का और गुलदस्ता बनाया गया था। सुनने वालों, और मोटरसाइकिल पे बैठे चल रहे हैं, आगे में देखते हैं कि एक महिला जो सड़क के किनारे खड़ा हो करके और लोटा जो कहते हैं पात्र में जल सूर्यदेव को अर्पित करते हैं, और आगे में गाय का तबेला दिखाई देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक व्यक्ति जो जैसे सूरीनाम में हम सब गर्मी में और धान काटते थे, वहाँ एक धान काट रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो अपना ही गांव में जो महसूस होता है कि केन का झाड़ा, यानी कि यहाँ पर केन ढेर सारे हैं, और आगे मोटरसाइकिल पे बढ़ते हैं और फिर जहाँ कुछ झुंड के साथ लड़के बैठे हुए अपने बातचीत कर रहे हैं, और थोड़ी दूरी पे वहाँ जो जैसे कि गांव के सबसे पुराना मंदिर और उसका दर्शन हुआ। तो अभी इस बात के बारे में और भी चर्चा होगा, पहले हम मंदिर का दर्शन करते हैं।
2: जय हनुमान बाबा, क्योंकि पुलिस वाला ने भी कहा कि भगवान तो आप ही है, ऐसे ही कहा ना। जय हो। देखो यहाँ ये मंदिर का नाम शुभ नाम का
3: जय हो प्रभु। पहले माथा तो टेक ले।
2: हो माथा टेक ले। जय हो प्रभु।
1: सर झुका के
2: ओ लगत चोट तब पता चला।
1: आइए दर्शन कर लीजिए हनुमान जी महाराज का।
2: हाँ हनुमान बाबा, फोटो वो बना लेते हैं।
1: आइए फोटो खिंचवाते हैं।
2: हनुमान बाबा, हम लोग ना आ गए बहुत दूर से। जय हो।

0: ये हनुमान जी महाराज है सबसे पुरानी मूर्ति है।
1: बहुत पुराना मंदिर भी जैसे आपने कहा,
0: बहुत पुराना मंदिर है। हाँ। ये जो है भगवान श्री चंद्र नानक पंथ का ये मंदिर है। हनुमान जी महाराज सीताराम परिवार से अयोध्या विराजमान है। आगे चलिए आपको शिव जी के मंदिर दिखाता हूँ, जहाँ पंथ हाँ एक मिनट साथ में हो जाए फोटो हो जाए।
1: सुने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और ये कार्यक्रम में जो रखा जा रहा है कुछ बेल्द जो टेलीफोन द्वारा वहाँ पर बनाया गया, उसे हम सब भी इस कार्यक्रम में रख देते हैं ताकि आपको वो महसूस हो सके कि ये वहाँ पर का वातावरण कैसे हो गया था। और अपना परिवार के खोज में जो हमारे साथ और भी लोग थे और जा कर के कितना खुशियाँ महसूस कर रहे थे, हम सब कुछ बेल्द मटेरियल है, शायद बेल्ट मटेरियल देख करके आप और भी समझ पाते, पर वो तो रेडियो द्वारा नहीं रखा जा सकता। पर कुछ कोशिश है कि हम अपना और संदेश आपके साथ बांट सके। जो हम सब अभी हनुमान जी का मंदिर में दर्शन दिए, एक ऐसा मंदिर, एक पुराना मंदिर जो भारत के और करगोपुर में, जिसमें और प्रवेश करते ही मन एकदम पुलकित हो जाता है। तो हम पंडित सूरज जी से अभी और भी संदेश सुनेंगे। ये है मंदिर गांव में खरगोपुर, और हम लोग ने यहाँ पहुँच गए हैं। ये जय शिव शंकर भवानी।

0: सुनने वालों, जैसे कि हम सब मंदिर का दर्शन किए, हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर जो वहाँ है, और उसके बाद में मंदिर से बाहर निकलते तो एक बड़ा सा वृक्ष था, और बड़ा सा वृक्ष के बगले में एक तालाब, तालाब वाटर फाइफर जो वहाँ पर बनाया गया है, कितना सुंदर रूप से जो और है, और उसके पाछे में एक समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है, इसे तो हम सुन करके और चकित हो गए, पर वो समाधि के बारे में बताया गया, और उसके बारे में तो एक अलग सा कार्यक्रम हम रखने वाले हैं और ज्योति का प्रकाश के अंतर्गत। पर समाधि वहाँ पर एक संत का वहाँ एक समाधि बनाया गया है, और उसे और देख करके भी दैट इज ओकन हेल बिसोंदर है दच दत्त कांसिन एंड दत्त बस्तात इन इंडिया, ऐसा ऐसन चीज़ों जो हम और भी शायद तीर्थ स्थानों पे नहीं देखेंगे, ये सुंदर सा और स्थान से देखे। तो सुनने वालों, आगे का कार्यक्रम में हम सब बढ़ रहे हैं, और वहाँ जो मंदिर के पास एक छोटा सा शहर है जिसे तौन सिटी कहते हैं वो लोग, जो बखेन यार नई खंतीन होंदत में जो अभी ब्रिटेन का राज चल रहा था वहाँ, और उसे तौन सिटी बनाया गया एक छोटा सा गांव में। और ऐसा समझिए कि एक रास्ता जो पत्थर का है, और छोटे छोटे दुकानें बगल बगल करीब करीब में है, और सब एक दूसरे के वहाँ पहचानते हैं, क्योंकि मैं पंडित जी के साथ वहाँ और प्रवेश लिए है। मंदिर के बस कुछ मलिटों यानी कि 2-3 मलिट का रास्ता था।
1: ये गांव है हम लोग,
2: ये खरगुपुर है,
1: खरगुपुर गांव,
2: खरगुपुर नगर पंचायत,
1: नगर पंचायत। और ये हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं मार्केट,
2: नहीं अभी मार्केट तो उधर जाए,
1: ओ, वो उस तरफ है,
2: टाइम में है, गुरु जी गए मार्केट में, हम जब तक जो घूम आएंगे तब तक जो है जो वो भी आ जाएंगे, गुरु जी आएंगे तो उनसे भी हो जाएगी आपकी मुलाकात।
1: अच्छा
2: आइए चलते
3: हैं।
1: समाधि
3: सेतल वर्ति नाम लख बखरा था वो अध्ययन वाद नहीं हकरी में तो मलित वर्ति के मार्ग पास होगा चमका देना मिशन ट्रांसलेट
2: जी जी जी जी
1: ये राजेंद्र जी बहुत चलाक आदमी है, ये ट्रांसलेशन में बहुत बढ़िया। पंडित जी कौन सा पूजा होता है
2: यहाँ? बाबा श्री चंद्र का पूजा होता है, और यहाँ पे भगवान शिव जी, भगवान हनुमान जी महाराज, सीताराम परिवार, ये सब जो है विद्यमान है इस मंदिर पे। ये उदासीन संप्रदाय का मंदिर है, राम जानकी मंदिर उदासीन आश्रम खरगुपुर के नाम से विख्यात है। इसमें जो भी लोग अपनी मनोकामनाओं को मान करके यहाँ आते हैं और उनके कार्य जो है पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनके भगवान श्री चंद्र उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मान्यता है। और हम सभी, हमारा बड़ा भाग्य है कि हम जो है मंदिर के सेवादार के रूप में बाबा श्याम सुंदर दास तूफानी बाबा जी जो हमारे गुरु जी हैं उनके सानिध्य में हम सही मंदिर पे रहते हैं। आप लोग आए हैं इतने दूर से, आए कहाँ से आए हैं आप?
1: होलैंड,
2: होलैंड जर्मन के पास,
1: जर्मन के बगल बिल्कुल करीब है।
2: तो आपकी जिज्ञासा यहाँ आने की कैसे?
1: जिज्ञासा ये हुआ कि कितने बार देखा कि लोग अपना खोज किए
2: जी,
1: मुझे भारत से कुछ 2001 से संबंध है, और मन में ये उठा
2: वही जो है हॉलैंड जहाँ रहते हैं वही,
1: हाँ
2: तो वहाँ करते हैं,
1: तो वहाँ पर ये एक से हुआ दो, यानी कि ऐसे आगे बढ़ता गया।
2: ये मार्केट यहाँ से प्रारंभ होता है,
1: वो मार्केट तो आपने कहा था 10 मिनट का, ये तो 2 मिनट
2: अब स्टार्ट हो गए।
1: हाँ ये तो मार्केट है,
2: ये हमारा मार्केट है, और यहाँ पर जो है छोटा सा एक कस्बा है, और यहाँ से आगे 2-3 मीटर जाएंगे बाबा श्रीनाथ का मंदिर।
1: अच्छा,
2: जो कि बहुत ही भव्य है, दिव्य है, एशिया का नंबर एक शिवलिंग है, सबसे ऊंचा शिवलिंग है।
1: अच्छा,
2: अगर आप उसके दर्शन जो है करना चाहें तो अभी बाहर से है रास्ता, वहाँ से चलते हैं, वहाँ पे दर्शन कीजिएगा।
1: यहाँ टुक ले लेते?
2: नहीं वो तो है ना,
1: ओ
2: आपके पास से वही गाड़ी, इसको बढ़िया हाईवे रोड बना है।
1: हाँ।
2: अब योगी जी के शासन में जान लीजिए यहाँ का बहुत बढ़िया विकास हो गया। योगी जी ने अयोध्या में जिस तरीके से दीपोत्सव मनाया है, अब जान लीजिए पूरा जनता जागरूक हो गई
1: जी,
2: आज लोग अपने धर्म को पहचान रहे हैं, सनातन धर्म क्या है इसके बारे में लोग जान रहे हैं, आज बच्चा बच्चा जो है अपने धर्म को पूर्ण रूप से जान रहा है, तो ये बहुत बड़ा अलग जगह है आदरणीय योगी जी के। ये हमारा
1: खरगोपुर बाजार है ये सुंदर से।
0: दोस्तों जैसे कि अभी आपने ये कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि कुछ मटेरियल जो हम सब टेलीफोन द्वारा वहाँ से और बनाए थे और इसी कार्यक्रम में रख रहे हैं ताकि आपको ये महसूस हो पाए और वहाँ का वातावरण किस प्रकार से है। दोस्तों ये हुआ कि हम सब वहाँ पर पंडित जी के माध्यम से हम सब वहाँ पहुँचे जो उस शहर का सबसे अवस्था वाला व्यक्ति था। वो बाबा जी कुछ 100 साल का था और उसके पास हम सब जा कर के पहुँचे और वहाँ ये प्रश्न रखे कि आप हम जिस जिस नाम से जुड़े हुए हैं जिस नाम को चला रहे हैं उस नाम को कोई व्यक्ति को वहाँ पहचानते हैं या नहीं। और वहाँ इस बात को भी ये पता चला कि ऐसा हुआ जो 150 साल पहले के बात होते हैं सुनने वालों, तो उस समय से और आज तक भी काफ़ी और बदलाव भी आ गया है देश में। कोई कोई बिल्कुल पूरा परिवार वो और स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान से चले गए हैं और कोई कोई भी अभी तक वहाँ रह रहे हैं। और जैसे कि बाबा जी हम सबको और अपना संदेश सुनाए कि 5 पीढ़ी तक उन्होंने ऐसा दर्शन दिलाए कि कैसे एक ही व्यक्ति जो अपना जिस प्रकार से वो बाबा जी रह रहे इतना अवस्था का हो गए हैं और उनको इतना व्यक्ति को पता था। तो हम देखते हैं और कोशिश करते हैं ये जो मोबाइल द्वारा मटेरियल इकट्ठा गया है उसे रखने के लिए
2: बाजार में आप आए। हमारा भाग्य है कि आपको लेकर के हम मार्केट टहला रहे हैं। जो अलैया गट्टे की दुकान है, सब छोटे व्यापारी यहाँ पर जो अपना व्यवसाय
1: व्यापारी करते हैं।

0: वो कश्यप गोत्र से
1: काम चलता है,
2: कश्यप से नहीं हम ज्यादातर इस बारे में जानते भी हैं।
3: अच्छा,
2: नहीं वो तो मिल जाता 1826 नहीं, ये आप 1192 की अगर खोज करें तो हम बता देंगे आपको।
1: अच्छा,
2: यदि आप 1192 की वाली बात पूछेंगे तब भी हम बता देंगे आपको खरगपुर में।
1: वही बात समझ गए, वही बात
0: मार्केट में हम बता रहे हैं। मार्केट में 1896 में हमारे पूर्वज रहे, 1896 के बाद में
2: ये 1904 में टाउन एरिया बनी।
0: मैंने आपसे बताया 1904 में ये टाउन एरिया बनी और देश आजादी के बाद से इलेक्शन होने लगा और उसके पहले बहुत सारे लोग आए गए।
1: कितना बदल गया,
0: बहुत बदल गया। अब देख जब आए होंगे
2: पहले आप लोग नहीं,
1: ना
2: हम देखने से भी हम लोगों को मालूम हो जाता है कि आप लोग किस कास्ट से, आप लोग अपर कास्ट से।
0: चलिए आप अभी आपको जन्मभूमि मिले है
4: सीधे नाम राम का देश तो यहाँ से जाइए, लेकिन सर नाम से फिर तो हॉलैंड आ गया यूरोप में, हॉलैंड से तो यहाँ आ गया, लेकिन भूमि यहाँ है कि यहाँ पर चलते तो आपको लगते है कि यहाँ के हो।
0: अब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर भगवान लवकुश का क्षेत्र है जहाँ पे भगवान की गायें, ये गोंडा में गायें चरती थी और जो है राज्य उनका लवकुश का श्रावस्ती है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
5: सुनो वालो, ऐसा हुआ वहाँ पर हम सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और उसी समय पे वहाँ पर मीडिया वाला भी उपस्थित हो गए। मीडिया वाला भी अपने ओर से और जोर डाले और जाकर के फिल्म बनाए, यूट्यूब पे रखा गया है और उससे और खरगोपुर में जो एक गांव है वहाँ पर दिखाया गया।

0: उनका बाप का बाप
1: जगन्नाथ जगन्नाथ
0: जगन्नाथ की वो जो
1: अब आप 18,000 किलोमीटर से दूर खाली यही पता कर रहे हैं
2: अपने जन्मस्थली
3: जैसे कसर साहब के संबंध
1: ये वहाँ इनके तो इनके जो पास जो कागज है वो खरगू को ही दर्शा
0: और नहीं देता और उस टाइम पे नहीं था सब कुछ ना कंप्यूटर था ही नहीं
2: कंप्यूटर था हाँ
0: तो वो जो जो बोल दिया तो लिख दिया
1: अच्छा वो मोहल्ला
3: उनके भाई जगदम्बर है तो वो सब मर मराए गए सब
1: उनके पूर्वज
0: और जदुनाथ नहीं था भाई
1: जदुनाथ कोई
0: या उनका बाप का बाप
1: जगन्नाथ जगन्नाथ
0: क्योंकि वो जो 1896 में गया तो लिखवाया था 26 साल का पर वो कॉन्फिडेंट नहीं कि 26 साल का यही खड़गो
3: तो आपके
1: अब आप 18,000 किलोमीटर से दूर खाली यही पता कर रहे हैं
2: अपने जन्मस्थली
3: जैसे कसर साहब के संबंध
1: ये वहाँ इनके तो इनके जो पास जो कागज है वो खरगू को ही दर्शा
0: और नहीं देता और उस टाइम पे नहीं था सब कुछ ना कंप्यूटर था ही नहीं
2: कंप्यूटर था
0: तो वो जो जो बोल दिया तो लिख दिया दादाजी कैसे चार भाई थे
2: जगत मणि चार भाई थे
4: ब्राह्मण जगत मणि थे ठाकुर और
3: विश्वनाथ
4: संसारी
0: ऐसे
4: ये चार भाई थे और बाकी ठठेर में
0: 1904 में ये दूसर सेठी बना
2: 1904 में सब पूरा पूरा सब गायब होगा
4: हाँ। अब इससे पहले घर द्वारिया होत रहा
3: जय देखो हम बताई
4: हाँ।
3: पहले अंग्रेज जब आवा है 1857 में यहाँ अंग्रेज भारत पे यहाँ कब्जा की
0: हाँ।
3: 1860 में यहाँ बंदोबस्त अव्वल बनाई तब वो पूरे जिला बनाइस बाजार के नक्शा बनाइस उगरे बाद अव्वल के बाद फिर उमा बना है 72 में उगरे पहले बना जब 72 नहीं उमा बना 47 जो अब सब पटवारी उठवारी
4: अच्छा अच्छा हाँ
0: 47 में यानी 75 साल पहले के बाद
3: और उसके बाद में 72 में आखिरी बना है लेकिन वो आबादी के नहीं बना है खाली खेत खरियान बाग बगीचे बना अब आप क्या बहुत दिन तो हो गया
0: बहुत दिन
4: पांचवी पीढ़ी
3: पांचवी पीढ़ी देर नहीं लगता देखो लाला महादेव श्यामलाल राजकिशोर
2: और
3: कल्लू लड़का पांच पीढ़ी हाँ। हमारे सामने होगी
4: पांच पीढ़ी आपके सामने
3: तो बड़ी बात नहीं है
4: समय बहुत ज्यादा
5: ये दादाजी जो भारत खरगोपुर में सबसे अवस्था वाला आदमी व्यक्ति जो वहाँ पर हम सबको अपना संदेश सुनाए और जो संदेश को रखे कि कैसे पांच पीढ़ी उसके सामने जन्म लिया और फिर जाकर के आज भी वो और स्वस्थ हम सबको हम सब के साथ बात किए और जो रेडियो में कोशिश किया गया रखने को और शायद क्वालिटी जो हमारे और वॉइस का उतना बढ़िया नहीं होंगे पर संदेश जो दादाजी ने रखे तो संदेश से हम सबको और ज़रूर उस पर ध्यान देते हैं और ज़रूर इसके बारे में सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों जो भारत को छोड़ करके सूरीनाम आए थे क्या हम कहाँ से आए थे हमारे बीच कहाँ से रखे हुए भारत जो हमारी मातृभूमि ही कहलाते हैं मातृभूमि है और क्या हम अपने जीवन में जो ये सुंदर सा शरीर जो ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है इसके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं क्या हम उसके कभी खोज किए हैं इस साल हम सब जो इसी प्रकार के कार्यक्रम में और यानी कि तेईमा जो एमिग्रासी नार सूरीनाम इसी अंतर्गत में और भी कार्यक्रम बनाया जाएगा आप के ओर से जब इसमें आप सहयोग देना चाहते हैं आप कोई के और किस प्रकार से आपके अवस्था वाला आपके नानी नाना आजी आजा अभी जीवित है और वो वॉइस आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हो तो ज़रूर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो में मालूमात कीजिए और मांग की

कीजिए। संजय को और संजय जो कोशिश करेंगे, मैं जरूर इस बात को कोशिश करेंगे कि ये वो फॉइस जो आर्काइव में रखा जाएगा और ये हम अपना यानी कि उनस एक आइडेंटिटी को और हम जान सकेंगे। तो दोस्तों हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे न्यूज़ और कमर्शियल के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: सुनने वालों, जैसे कि हमने कार्यक्रम बना रहे हैं और कार्यक्रम जो हमारा गांव से जुड़ा हुआ है, भारत भारत में एक, जैसे कि अभी आप सुन भी लिए हैं कि ये हमारा जो जहां से हमारे पुरखों जो आज से 150 साल पहले छोड़ करके सूरीनाम को गए थे और वहाँ का त्योहारों कैसे मनाया जाता है, तो हम इस समय लाइन पे आ रहे हैं हमारे श्री पंडित सूरज देवराज जी से, और जो हम सबको वहाँ पर का वातावरण वहाँ के और संदेश वहाँ से और हम सब के सारा वृतांत जो सुनाए हैं, तो हम पंडित सूरज देव राज जी को और लाइन पे ला रहे हैं, और ताकि हम सबको जो वहाँ अभी तक जो अपना गांव है वहाँ का वातावरण, वहाँ कैसे वो त्यौहार, जैसे होली हम सब यहाँ मनाते हैं, जैसे दिवाली हम सब यहाँ मनाते हैं, हॉलैंड में सूरीनाम देश में जो हमारे पुरखों लेकर गए थे वहाँ से हम सब यहाँ आकर के मना रहे हैं, तो हम इस समय लाइन पे आ गया। मैं देख रहा हूँ कि सूरज पंडित सूरज देवराज जी, और पंडित सूरज जी आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ रहे इस कार्यक्रम में। तो सूरज जी, भला ये बताइए कि जो हमारे पुरखों लेकर गए हैं और अभी तो हम सब उसी तरह से और चला रहे हैं कार्यक्रम, पर हमारे गांव में कैसे और करगोपुर में कैसे त्यौहार जैसे होली पे खास करके मनाया जाता है?
1: जी जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे खरगोपुर में गोंडा जनपद है, गोंडा जनपद का नगर है खरगोपुर, जो 1904 में अंग्रेजों के समय पे भी टाउन एरिया रहा है, और उस वक्त से हमारे यहाँ परंपरा चली आई है, कोई ये हमारी परंपरा तोड़ नहीं पाया है। और ये प्रभाव जब हमारा देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद से हमारे खरगोपुर में, जैसे मथुरा में होली होती है, ऐसे हमारे यहाँ लोग कम से कम 8-10 जिलों के लोग हमारे यहाँ होली देखने आते हैं। होली में खासकर पर्व ऐसा पर्व मनाया जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि दिन में हम लोग जुलूस निकालते हैं, लोग ग्रुपिंग वाइज जो है एक भारी संख्या में पूरे नगर के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर के ढोल नगाड़े के साथ में, साउंड ऑन के साथ में जो है वो पूरा जुलूस निकालते हैं, और जहां जहां होलिका दहन की जाती है वहां वहां जाकर के दर्शन करते हैं, उनका भभूति लेते हैं, और उसके बाद में फिर ये कार्यक्रम होली खेलते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुजिया मिठाइयों जो है अंबाल लगी रहती है, हर लोग एक दूसरे से मिलकर के खाते पीते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जब शाम होती है, शाम होते होते एक नई रोशनी उदय होती है और हमारे यहाँ सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, और एक नई राधा कृष्ण के साथ, जो भगवान भोलेनाथ के साथ, पार्वती जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में एक दिव्य भव्य झांकी निकाली जाती है, जो पूरे नगर के क्षेत्र के लोग और आसपास के लोग, आसपास जिलों के लोग आते हैं, और पूरे प्रशासन के साथ जो एडिशनल एसपी एसपी लोग रहते हैं इस कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं, और दिव्य और भव्य झांकी होती है, और ये पूरे नगर का एक जो है एकमात्र ऐसा त्योहार होता है, या आपके खरगोपुर का, विशेष रूप से खरगोपुर में, आसपास जिले में ऐसा कार्यक्रम भी नहीं होता है।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने पंडित सूरज जी की, जैसे कि हम लोगों ने भी फिर भी कुछ उसमें से मैं निकाला हूँ कि जैसे होली में अभी जैसे पंडित जी ने कहा कि खाने वाला पकवानों में और गुजिया, तो ये भी आज तक हम लोगों मनाते और बना कर के खाते हैं इस त्यौहार में। पर जिस प्रकार से और जुलूस निकलते हैं, जैसे कि अबतोख बोले जाते हैं, और हर एक स्थान पे जहाँ पर जैसे पंडित जी अभी और चर्चा किए कि जहाँ होलिका दहन यथा होली को और दहन मनाया गया, वहाँ वहाँ जा कर के और सभी मिल कर के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। पर पंडित जी ये बात हो जाता है कि हम लोगों भी सूरीनाम देश में भी कुछ देहाते थे और जहाँ पर कुछ 60 लोग का परिवार रहते थे और वहाँ घर घर जैसे क्रोनम्बेरो सूरीनाम में एक स्थान है, उसे क्रोनम्बेरो कहा जाता है, वहाँ भी घर घर जा कर के और ये जो चौताल आदि किया जाता था। तो जैसे कि अभी आपने चर्चा की है, तो वहाँ का और ऐसा वातावरण वहाँ का करगुपुर का कैसे किया जाता है?
1: यहाँ पर जो है जितने भी लोग होते हैं वो अपने स्थान पे जाकर के अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, दर्शन करते हैं और चौपाल लगा करके जो है हारमोनियम के साथ ढोलक के साथ बढ़िया
2: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736372747। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 0703652247.
3: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij Peter Murrell heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Een agent raakte gewond. Bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. Een van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान। सपने तो हम सबको जरूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी।

सुनने वालों, पिछली बारी मैंने आपको जानवर के संबंधी कुछ शकुन अपशकुन के बारे में बताया था। अब मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाती हुई कुछ और बातें आपको बतलाऊंगी।

अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ और जानवरों के बारे में आपके लिए बतलाऊंगी सुनने वालों। अब मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ। गाय, बकरी संबंधी शकुन, दाई और मिले लाभदायक, बछड़े को दूध पिलाती मिले बहुत शुभ सफलता, बाई और हुंकार सुने अत्यंत सिद्धि, धन संतान स्त्री संपत्ति की प्राप्ति सुलभ है। अगर गायें मार्ग में जाते हुए मिलें तो अनिष्टाकारी, धन हानि, स्वास्थ्य हानि। पाँव के खुर से भूमि खोदें, यदि अपने पाँव से वो मट्टी खोदें तो उसका जटिल रोग के चक्र में या गड़ा धन मिलेगा।

इसका मतलब है सुनने वालों कि यदि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमारी दाई और हमें गाय दिख जाए तो उसका बहुत लाभ होता है। अगर बछड़े को दूध पिलाती गाय हमें मिल जाए तो बहुत शुभ सफलता मिलती है। अगर गाय हमारे सामने आ जाए और हुंकार सुने उसकी, यानी वो कुछ ऐसे बोले, तो अत्यंत सिद्धि, धन संतान, स्त्री संपत्ति की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और अगर रास्ते में जाते हुए गाय मिल जाए तो धन हानि, स्वास्थ्य हानि होती है। और पाँव अपने खुर से वो मिट्टी खोदे तो उसका मतलब है जटिल रोग के चक्र में या गड़ा धन, यानी कि हमें जो रोग है उसके चक्र में फंस जाएंगे, कहीं से हमें धन की प्राप्ति होगी।

अगर रात्रि में कर्कश स्वर में बोले भय सूचक, मादा के ऊपर मक्खियाँ बैठी हों वर्षा का सूचक, प्रसन्नता युक्त हुंकार भरे लाभदायक। कुछ का मत है कि भैंस दर्शन का वही फल है जो गाय दर्शन का होता है, यानी मृत्यु का भय, रोती दिखाई दे मृत्यु की संभावना।

इन सब बातों का मतलब है सुनने वालों कि अगर रात में गाय अजीब सी आवाज़ में बोलें तो उसका भय का सूचक यानी कि वो डरावने वाला होता है। मादा के ऊपर मक्खियाँ बैठी हों, यदि गाय के ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं तो उसका मतलब है कि बारिश आएगी, वर्षा होगी। प्रसन्नता युक्त हुंकार भरे, अगर समझ लो कि थोड़ी हंसी वाली वो हुंकार भरती है तो वो लाभदायक, उससे लाभ मिलता है। और कुछ का ये मत है कि गाय भी भैंस की तरह अगर दर्शन दे और उसका मतलब है कि मृत्यु का भय, और अगर गाय रोती दिखाई दे तो मृत्यु की संभावना है सुनने वालों।

अब गाय के बाद हम चलते हैं हाथी की ओर। हाथी अगर सामने से आता दिखाई दे तो शुभ लाभ, यदि उपरोक्त दाई ओर हो उपरोक्त से कम शुभ। यदि सामने से सफ़ेद हाथी आए सर्व सुख की प्राप्ति, दाएं दांत पर सूंड रखे हुए हो बहुत लाभकारी, बाएं दांत पर सूंड रखे हुए हो विशेष फल नहीं। मंदोत्मत दशा में चलता अत्यधिक लाभदायक, नदी के किनारे को खोदता शकुन नष्ट कर देता है। सहसा ही भगन गति हो जाए या रुक जाए तो भय कारक।

इन सब का ये मतलब है सुनने वालों कि अगर हाथी सामने से आता दिखाई देता है तो उसका हमें शुभ लाभ प्राप्त होता है, और यदि दाई ओर से आता दिखाई दे तो उसका कम लाभ मिलेगा। और अगर सामने से सफ़ेद हाथी आए सर्व सुख की प्राप्ति, वैसे तो सफ़ेद हाथी कमती दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी सफ़ेद हाथी दिखाई दे जाता है। और हाथी अगर दाएं दांत पर सूंड रखे हुए हो तो बहुत लाभ होता है सुनने वालों, और बाएं दांत पर सूंड रखे हुए तो विशेष फल नहीं होता, उसका कमती फल मिलता है। और मधु मत दशा में चले तो बहुत लाभ होता है। नदी के किनारे को खोदता, यदि अगर नदी के किनारे वह मिट्टी को खोद रहा है तो सब शकुन नष्ट कर देता है। सहसा ही मगन गति से चलता हुआ दिखाई देता है तो उसका मतलब है भय का कारण।

अगर हाथी सहसा तीव्र गति से चलने लगे तो भय का सूचक, समय पर ना जागे स्वामी के लिए हानिकारक, स्वेच्छा से वृक्षों का मंथन करे राष्ट्र के लिए विजय, दांत दांत का मूल मगन हो जाए स्वामी को कष्ट, बाएं दांत का बीच भाग भगन शत्रु को नष्ट करे, यदि घुटने टेक दे तो पराजय, अप्रत्याशित रूप से सूंड ऊंची करे कार्य में सफलता। इन सब का मतलब है सुनने वालों कि अगर वह तेज गति से अगर हाथी चलता हुआ दिखाई दे तो उसका भय का सूचक कि हमें डर लगता है वो देख के, समय पर ना जागे अगर हाथी तो जो उसका स्वामी होता है तो उसकी हानि हो जाती है। अगर वृक्षों का मंथन करे, अगर वृक्षों को देखे अच्छे से तो राष्ट्र के लिए विजय, दांत दांत पर मूल मगन हो तो उसके स्वामी को कष्ट होता है, बाएं दांत का बीच भाग मगन तो शत्रु को नष्ट करता है, उससे शत्रु का नाश होता है, और यदि हाथी घुटने टेक दे घुटने के बल बैठ जाए तो पराजय, अप्रत्याशित रूप से सूंड ऊंची करे तो कार्य में सफलता मिलती है। सुनने वालों अब हमें गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, अभी जो आपने ये गीत सुना, ये गीत था फिल्म लव स्टोरी से, और इसमें कलाकार थे कुमार गौरव, विजेता पंडित। और आप सबको पता है ये फिल्म बहुत सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुई थी।

तो मैं आप सबको बता रही थी कि जानवरों के बारे में, कि अगर हमें जानवर रास्ते में मिल जाए या वैसे देखें तो उसके शकुन और अपशकुन क्या होते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों। अब हम चलते हैं घोड़े की तरफ। यदि हमको घोड़ा रास्ते में दिखाई दे जाए या यात्रा पर जा रहे हैं दिखाई दे जाए तो उसका क्या असर होता है। यदि सफ़ेद घोड़ा अपने स्वामी सहित सामने दिखाई दे तो शुभ, लाल या अन्य सुशिक्षित घोड़ा मिले तो शुभ, काला घोड़ा मिले तो शुभ नहीं। बाएं पांव को पेट से लगाए अशुभ बाधा, काला दाएं पांव को बहुत शुभ, बाई और हिहनाए या दाएं पांव से धरती खोदे बहुत शुभ, उच्च पद की प्राप्ति। बाई और हिहनाता घोड़ा दिखाई दे तो बहुत शुभ, सम्मान प्राप्ति।

इन सब बातों का ये मतलब है सुनने वालों कि अगर सफ़ेद घोड़ा अपने स्वामी की आता हमें दिखाई देता है तो उससे हमें शुभ लाभ होता है, यदि लाल घोड़ा दिखाई देता है तो उससे भी शुभ लाभ प्राप्त होता है, अगर काला घोड़ा दिखाई दे तो वो शुभ नहीं है। बाएं पांव को पेट से लगाए अगर घोड़ा हमें दिखाई देता है तो वो भी अशुभ माना जाता है सुनने वालों। काला दाएं पांव, अगर काला घोड़ा दाएं पांव के साथ आए तो बहुत शुभ होता है। बाएं और हिनाएं या दाएं पांव से धरती को खोदें तो बहुत शुभ और हमें उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर घोड़ा बाएं और हिनाता और अपने अंग को खुल जाए यानी खारिज करे तो उससे बहुत शुभ और हमें सम्मान की प्राप्ति होती है।

अगर काले रंग का घोड़ा बाईं ओर से आता दिखाई दे तो अशुभ नहीं, परंतु सामने या दाईं ओर से घोड़ा आए तो अशुभ है। लाल रंग का घोड़ा दिखाई दे तो राशि सुख प्रदान करे। अगर पीले रंग का घोड़ा सामने आ जाए तो राशि सात्विक सुख। अगर सफ़ेद रंग का घोड़ा सामने आ जाए तो सात्विक सुख। अगर काले रंग का घोड़ा सामने आ जाए तो तामसी सुख। बिना मारे जो घोड़ा कई बार मल मूत्र त्याग करे, टेढ़ा चले, बेगड़ चले, शुभ फल नहीं देता। सुनने वालों, भक्ष पदार्थ, मध्य पदार्थ और लगाम प्रसन्न होकर ग्रहण करे और दक्षिण पार्श्व की ओर दृष्टि रखे तो शुभ फल की सिद्धि मिलती है। सुनने वालों,

अगर काले रंग का घोड़ा हमें बाईं ओर से सामने दिख जाए तो उसका मतलब है कि वो अशुभ नहीं है, वो शुभ ही माना जाता है। परंतु यदि दाईं ओर से घोड़ा आता दिखाई दे तो वो अशुभ माना जाता है सुनने वालों। और अगर लाल रंग का घोड़ा सामने से आता दिखाई दे तो हमें राशि सुख यानी ऐशो आराम सुख प्रदान होता है सुनने वालों। अगर पीले रंग का घोड़ा सामने आ जाए या सामने से आता दिखाई दे तो राशि सात्विक सुख प्राप्त होता है। अगर सफ़ेद रंग का घोड़ा हमें दिख जाए तो सात्विक सुख मिलता है, और काला घोड़ा सामने आ जाए तामसी सुख मिलता है। अब बिना मारे अगर घोड़ा हमारे और आए तो बहुत शुभ फल नहीं देता सुनने वालों।

अब हम चलते हैं गधे की ओर। आप सबको तो पता है कि गधा कौन है। अगर गधा हमें बाईं ओर बोले तो कार्य सिद्धि, बाईं ओर रुके या शरीर को खुजाता हुआ बाईं ओर से आए तो सब प्रकार का लाभ संभव। पीठ पीछे रेंगे या जोर से रेंगे यानी बोले, सब प्रकार के कार्य सिद्ध सामने दिखाई दे, असिद्धि की सूचना, सामने खड़ा पांव को फेंके लड़ाई का संकेत, सामने प्रस्त लड़े बहुत दुखदाई, सामने लेटा हुआ या सिर घुनाता हानिकारक, दाई ओर खड़ा हो अशुभ, दाई ओर से आपकी तरफ आए अस्मिक कष्ट, सामने से बाईं ओर आता मिले अशुभ नहीं होता।

सुनने वालों, जैसे हम कहीं जा रहे हैं या यात्रा पे जा रहे हैं तो सामने से एक गधा या कई गधे बोले तो हमें कार्य, हमारे जो भी कार्य हैं सब सिद्ध हो जाते हैं सुनने वालों। और बाईं ओर रुके या शरीर को खुजाता हुआ दिखाई दे तो सब प्रकार का लाभ संभव है, सब तरह से हमें लाभ प्राप्त होता है सुनने वालों। पीठ पीछे रेंगे या जोर से रेंगे, कि अगर हमारी पीठ के पीछे वो जोर से बोलता है तो सब प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। अगर सामने से आता दिखाई दे तो असिद्धि की सूचना, तो वो ठीक नहीं है सुनने वालों। सामने खड़ा पाँव को फेंके तो इससे लड़ाई का संकेत है कि किसी से लड़ाई होगी। अगर गधा सामने प्रस्त लड़े, किसी के साथ लड़ता है गधा, अरे एक गधा दूसरे गधे से लड़ता है, तो इसका मतलब है बहुत दुखदायी, कि बहुत दुख आने वाला है। अगर सामने लेटा हुआ या सिर खुजाता घोड़ा गधा दिखाई देता है तो बहुत हानिकारक होता है सुनने वालों। अगर हमें दाईं ओर खड़ा मिलता है गधा तो वो अशुभ, वो भी शुभ नहीं माना जाता, बहुत अशुभ माना जाता है। अगर दाईं ओर से आपकी तरफ आए तो वो भी एक तरह से कष्ट प्राप्त होगा हमें। सामने से बाईं ओर से आता गधा मिले तो उसका मतलब भी हमें अशुभ प्राप्ति होगी।

अगर गधा में दाई ओर आता मिले तो बहुत कष्टकारी, दाई ओर हटता हुआ चला जाए अल्प विपरीत रहे, दाई ओर आता हुआ पीछे चलता जाए कम हानि, दाई ओर आता हुआ एकदम पीठ पीछे आए अत्यंत खराब, मैथुन करता दिखे यात्रा में सफलता। इसका मतलब है सुनने वालों कि अगर गधा हमें दाई ओर सामने से दिखाई दे तो बहुत कष्ट मिलेगा, दाई ओर हटता हुआ चला जाए तो अल्प विपरीत रहे, दाई ओर आता हुआ पीछे चलता जाए तो हमें बहुत थोड़ी सी हानि होगी, ज़्यादा नहीं, और दाई ओर से आता हुआ एकदम पीठ पीछे आए तो स्थिति अत्यंत खराब की ज़्यादा खराब होगी। मैथुन करता दिखे तो इससे यात्रा में सफलता मिलती है सुनने वालों।

ये है आप सबका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम लेकर आता है, जिसे आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं। अब अपने गीत की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

सुनने वालों, जो आपने ये गीत सुना, ये बहुत फिल्म हिट रहे, इसमें काम किया था राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर ने। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। मैं आप सबको बता रही थी गधे के बारे में, बता चुकी सच, अब आगे बताऊंगी आपको सुअर के बारे में।

यदि हम यात्रा पर जा रहे हैं और सामने से हमें सुअर आता दिखाई दे तो वो शुभ माना जाता है। भीगा कीचड़ में सना हुआ सुअर दिखाई दे तो शुभ होता है। यदि कीचड़ सूख गई हो तो अशुभ। बाईं ओर दिखे सफलता, प्रवेश करते समय दाईं ओर दिखे लाभ। बैल अथवा सांड अगर जाते हुए हमें रास्ते में दिखाई दे तो बाईं ओर सींग अथवा खुर से खोता तथा दाईं ओर अन्य चेष्टा करते देखे, आधी रात को बोलता दिखे, अपनी तरफ से दाईं तरफ आता दिखाई दे तो ये सभी शगुन शुभ माने जाते हैं। सुनने वालों, इन सब का अर्थ है सुनने वालों कि अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं और हमें सूर्य सामने से आता दिखाई देता है तो बहुत शुभ की प्राप्ति होती है, हमें शुभ लाभ मिलता है। अगर भीगा कीचड़ से सना हुआ अगर हमें दिखाई दे वो भी शुभ माना जाता है। सुनने वालों, यदि कीचड़ लगा है लेकिन सूख गया है तो वो अशुभ माना जाता है, तो उससे हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर बाईं ओर से सुअर आता दिखाई दे तो इसका मतलब है हमें सफलता की प्राप्ति होगी, हमारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और यदि कहीं हम जा रहे हैं और सामने से सुअर आता दिखाई दे तो हमें बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, और यही चीज़

मैं आप सबको जानवरों के बारे में बता रही थी कि अगर हम यात्रा पर जाते हैं या वैसे ही हमें जानवर दिखाई दे तो उन सबका क्या लाभ मिलता है या क्या कष्ट होता है। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी हिरण के बारे में, यानी मृग के बारे में। यदि हमें हिरण विश्व संख्या से मिले बाएं से दाएं आए तो सफलता काले रंग का अधिक शुभ लाभ माना जाता है। शरीर खुजाने लगे थिरके यात्रा स्थगित कर दें, मल अथवा मूत्र का त्याग करें, भय की सूचना सामने आकर खड़ा हो जाए असफलता, पीठ पीछे दिखे शुभ समाचार, सामने जाता हुआ दिखे यात्रा में सफलता, प्रदक्षिणा करके कोई हिरण वापस घूम कर दिखे अर्थ लाभ की सूचना, रति क्रिया करता हुआ दिखाई दे विजय प्राप्ति।

इन सब बातों का ये मतलब है सुनने वालों कि हिरण हमें अगर ज़्यादा संख्या में इकट्ठे झुंड में दिखाई दे और तो हमें सफलता मिलती है। काले रंग के हिरण ज़्यादा शुभ माने जाते हैं सुनने वालों। अगर हिरण शरीर खुजाने लगे और थिरके तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, तो यात्रा पर नहीं जाना चाहिए सुनने वालों। अगर हिरण मल त्याग अथवा मूत्र त्याग करे, अगर वैसे हमें दिखाई देते हैं तो उसका मतलब है कि भय की सूचना, कि हमें कोई अच्छी सूचना नहीं मिलती। अगर हिरण सामने आकर खड़ा हो जाए तो हमें असफलता की प्राप्ति होती है। अगर हिरण पीठ पीछे दिखाई दे तो शुभ समाचार मिलते हैं सुनने वालों। अगर हिरण सामने जाता हुआ दिखे तो यात्रा में सफलता मिलती है। अगर हिरण प्रदक्षिणा करके कोई हिरण वापस घूम कर देखे तो अर्थ लाभ की सूचना मिलती है। रत्ती क्रिया करता हिरण दिखाई दे तो हमको विजय की प्राप्ति होती है, कि हम विजय की ओर बढ़ते हैं सुनने वालों।

अब हम आगे बढ़ते सुनने वाले लोमड़ी। आप तो सब तो जानते हो कि लोमड़ी बड़ी चालाक जानवर होता है। अगर लोमड़ी हमें यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे या रास्ते में मिल जाए, अभीष्ट की सिद्धि बाईं अथवा दाईं ओर से आ जाए सर्वदा शुभ। दाईं ओर काली पूंछ वाली लोमड़ी मिल जाए कार्य में सफलता। सम सफेद सम जीविका नौकरी मिले, किंतु लड़ाई आदि करती दिखे तो पराजय होती है। इन सब का ये मतलब है सुनने वालों कि अगर हमें लोमड़ी रास्ते में सामने से दिखाई दे तो हमें कष्ट मिलता है। बाईं अथवा दाईं ओर से लोमड़ी दिखे तो हमें हमेशा शुभ कार्य की प्राप्ति होती है। अगर दाईं ओर से काली पूंछ वाली लोमड़ी दिख जाए तो हमें जितने भी कार्य हैं उन सब में सफलता प्राप्त होती है। अगर सफ़ेद लोमड़ी दिख जाए तो हमें नौकरी मिल जाती है। अगर लोमड़ी लड़ाई करती दिखाई दे तो उससे हमें पराजय हार का सामना करना पड़ता है सुनने वालों।

सियार गीदड़। यदि हमें सियार दिए हुआ का स्वर करता है और दिशा में दिन के पहर में और उसका फल, अगर पूर्व दिशा में प्रथम पहर में करे तो किसी राज्य का पतन, दूसरे पहर में करे तत्कालीन सत्ता की पराजय, तीसरे पहर में करे देश में विभाजन, चौथे पहर में करे प्राकृतिक आपदा, अगर दक्षिण दिशा में दिखे तो प्रथम पहर में करे शत्रुओं का भय, दूसरे पहर में करे जनता को कष्ट, तीसरे पहर में करे राजा को जनता से कष्ट, चौथे पहर में करे किसी की मृत्यु का समाचार। सुनने वालों, इन सब का ये मतलब है कि सियार और गीदड़, अगर ये दो जानवर हमें दिखाई देते हैं और अगर पूर्व दिशा में दिखाई देते हैं, अगर दिन के प्रथम पहर में दिखाई देते हैं तो किसी राज्य का पतन, कि कोई भी राज्य है वो नष्ट हो जाता है, अगर दूसरे पहर में दिखाई दे तो तत्कालीन सत्ता की पराजय, कि वहाँ की सत्ता पलट जाती है, वहाँ की सरकार पलट जाती है, अगर तीसरे पहर में देखें तो देश में विभाजन, कि देश का विभाजन, देश में बंटवारा हो जाता है, और अगर चौथे पहर में दिखे तो प्राकृतिक आपदा, कि जितने भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ जाएगी या कुछ भी हो सकता है, और अगर दक्षिण दिशा में दिखे प्रथम पहर में दिखे तो शत्रुओं का भय, तो उससे ये शत्रुओं से राज्य को भय लगा रहता है कि शत्रु हमला ना कर दें, अगर दूसरे पहर में दिखे तो जनता को कष्ट, कि जितने भी जनता है देश की उन सबको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, अगर तीसरे पहर में दिखे तो राजा को जनता से कष्ट, कि जो वहाँ का राजा है जनता अपने राजा को कष्ट देगी, अगर चौथे पहर में दिखे तो किसी की मृत्यु का समाचार सुनाई देता है। सुनने वालों,

सबसे बड़ी जिंदगी है, जिंदगी से बड़ा प्यार है, प्यार से बड़ी दोस्ती है, दोस्ती से बड़ा रिश्ता है। निभाओ तो अपना है और भूल जाओ तो सपना है।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैंने जो आप सबको ये थोड़ा सा प्रोग्राम अपनी तरफ से सुनाया, ये सब स्वपन विज्ञान से लिया गया है और मेरे को लगता है आप सबको थोड़ा सा पसंद आया होगा।

बंसी सब कुछ त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े। सुनने वालों, ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और ज्योति का प्रकाश में ये कोशिश किया जाता है कि ऐसा संदेश रखा जाए कि हम सबका जीवन में जो ज्योत जल रहा है उसमें और भी प्रकाश आए। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मास्टर जी भारत दिल्ली से। और मास्टर जी, दिल्ली में आजकल गर्मी है या सर्दी है, जरा उसके बारे में थोड़ा से हम सबको सुनाइए।
1: दिल्ली में आजकल ज्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि इस बार बारिश बीच में हुआ है और उसी के कारण गर्मी इतना अधिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मौसम तो गर्मी का है ही है। मई जून में थोड़ा ज्यादा गर्मी पड़ता है, लेकिन हर वर्ष के भांति थोड़ा इस बार कम है।
0: तो मास्टर जी, मुझे तो डर है कि जब गर्मी कम है तो भारत का जो जुलाई में जो आम आते हैं ना
1: जी,
0: तो आम कहीं उतना मीठा नहीं होएगा तो कैसे होगा?
1: ऐसा है, लेकिन जो 15 मई से 15 जून के बीच में समय रहेगा, हो सकता है उसमें ज्यादा गर्मी हो और आम अच्छे से पक जाए,
0: ताकि हमें आते आते आम अच्छे से और स्वादिष्ट हो जाए ना।
1: हाँ, क्योंकि आम स्वादिष्ट तभी होंगे जब गर्मी ठीक पड़ेगा और इसके बाद बरसात जब आएगी, तो उस समय बरसात जब होगी उस आम का खाने का आनंद तभी है जब बरसात पड़े। तो जुलाई में बरसात हो जाती है और जून में गर्मी, मई में गर्मी का शुरुआत होती है, तो इस प्रकार से एक कॉम्बिनेशन है गर्मी का और बरसात का और आम के पकने का। तो जब तक आप भारत आते तब तक अच्छे से आम पक जाएंगे और हर वैरायटी के आम, अभी सफेदा और हाफूस और ये अल्फांसो जिसको बोलते हैं और सिंदूरी, अभी यही वाला आम आ रहा है, अभी बहुत सारा नहीं आ रहे हैं, तीन चार प्रकार का आम आ रहा है, लेकिन अभी दशहरी और मालदा और बहुत 35 प्रकार की वैरायटी जो है इस दिल्ली में मिल जाती है, बरांगा है, अभी ये सब 4-5 प्रकार का आ रहा है, कुछ दिन बाद और जा जाएगा।
0: तो दोस्तों, जैसे कि अभी आम का संदेश आपने सुन रहे हैं, राजेंद्र जी, आज का विषय जो रखा गया है कि कृष्ण जी का अंगूठी, और उसमें पता नहीं संदेश क्या रहेगा, पर उस ओर बढ़ने से पहले हम क्यों ना उसका एक झलक सुन लेते हैं आपसे।
1: जी जरूर। आज जो संदेश है, प्रेमाधीन कृष्ण, यानी कृष्ण का नाम लेते ही एक गोपी की आंखें बंद हो गई। जैसे एक गोपी ने कृष्ण भगवान का नाम लिया, उनकी आंखें बंद हो गई, अश्रुधाराएं बहने लगी, अश्रुधाराएं यानी आंखों से आंसू टपकने लग गए। कृष्ण कृष्ण कहते कहते बेसुध होकर वो कब जमीन पर गिर गई उसे मालूम भी ना पड़ा। बस इस बेसुधी में कृष्ण कब उसके पास आकर बैठ गई उसे यह भी पता न चला। कब कृष्ण उनके पास आ गए, कब वो जमीन पे गिर गई, ये सब प्रेम के अधीन जब व्यक्ति हो जाता है भगवान के प्रेम के प्रति, तो यही सब घटना घटती है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुली तो सामने प्रियतम को देखकर हैरान हो गई, पूछा, रे कान्हा कब आया? कृष्ण ने कहा, यह तो पता नहीं कब आया, पर जब से आया तुझी को एक टक देख रहा हूं। गोपी कहती, हद हो गई, हम तेरा दर्शन करें तो समझ लगती है तू हमें क्या देखेगा। कृष्ण ने कहा, मैं तुझे नहीं तेरे इस प्रेम को, रोमांस को देख रहा हूं, तेरी आंखों से बहती हुई प्रेम की अश्रुधाराओं को देख रहा हूं, मैं तुझे नहीं तेरे हृदय में प्रकट हुए इस प्रेम रूपी परमात्मा के दर्शन कर रहा हूं। अरे गोपी, ऐसा दर्शन तो मुझे भी दुर्लभ होता है। तो बात है कि प्रेम, जब गोपी कृष्ण से प्रेम करती थी और बेसुध हो जाती थी, मतलब उनको शुद्ध भी होश नहीं रहता था, तब भगवान कृष्ण वहां आके बैठ जाते थे और उनको निहारने लगते थे, देखने लगते थे। तो इसी प्रेम के जो बात चल रही है कि प्रेमाधीन कृष्ण, जब भगवान स्वयं प्रेम के अधीन हो जाते हैं, कृष्ण प्रेम के अधीन हो जाते हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो क्यों ना एक कृष्ण का सुंदर सा नगमा हो जाए।
0: जरूर शांता जी, जो अपने पिटाड़ा से भर करके और ढेर सारे नगमा ढेर सारे गीत लेकर यहाँ उपस्थित है स्टूडियो में। तो सुनने वालों, एक सुंदर सा गीत के ओर, फिर उसके बाद में अभी जो आज का विषय है, विषय का और शीर्षक यानी कि द तेईमा कि कृष्ण जी का अंगूठी, उसमें और संदेश क्या है, हम सब सुनने वाले हैं। पहले एक गीत के ओर बढ़ते हैं।

0: ये सुंदर सा गीत हम सब जो चलाए, और यहाँ की संदेश जो आज है, आज का संदेश जो हमारा शीर्षक आज का, यानी कि हमारे तेमा जो है कि कृष्ण जी का अंगूठी। तो अंगूठी के ओर बढ़ने से पहले राजेंद्र जी हमें कुछ और संदेश सुनाइए, क्योंकि संदेश हमारे जो विशेषज्ञों लोग हम सब के लिए खोज खोज करके रखे हुए हैं, हमें उसे अपने सभी सुनने वालों के लिए रखना है। तो राजेंद्र जी आप इस समय ऑनलाइन हैं।
1: हाँ, राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम का महाभाव, जो राधा जी और कृष्ण हैं उनका जो प्रेम का भाव है, महाभाव है, मैंने बहुत विशाल रहा, ये अष्ट सखियां हैं। पहली सखी है ललित सखी, ये सखी सबसे चतुर और प्रिय सखी है। जो ललित सखी है वो सबसे चतुर है और सबसे मोई है। तो राधा रानी को तरह तरह के खेल खिलाती है, कभी कभी नौका विहार वन विहार कराती है। ये सखी ठाकुर जी को हर समय बीड़ा पान देती रहती है। ये ऊंचे गांव में रहती है, ऊंचे गांव में मतलब पहाड़ी पर रहती है थोड़ा। दूसरी सखी है विशाखा सखी, ये साक्षात गौरांगी जी का ही अंश है। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर चुटकुले सुनाकर हंसाती है। ये सखी सुगंधित द्रव्यों से बने चंदन का लेप करती है, इनका गांव कमई है। तीसरी सखी है चंपकलता सखी, ये सखी ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम करती है। ये करहला गांव में रहती है, इनका अंग वर्ण पुष्प छटा की तरह है। ये ठाकुर जी की रसोई सेवा करती है, ये ठाकुर जी की कुकर है।
0: कुकर यानी कि उसका कॉक।
1: हाँ, ये भोजन बनाती अच्छे से मोई से।
0: अच्छा।
1: और इनका गांव करहला गांव है। तो जब आप लोग भारत आएंगे तो ये सब चीज गांव चाहे एक बार जाए, जहां भगवान कृष्ण के सखी आठ सखी रहे। चौथी सखी है चित्रा सखी, ये सखी राधा रानी की अति मन भावंती सखी है। ये बरसाने में चिकसौली गांव में रहती है, बरसाना रहा एक जगह, वो चिकसौली गांव है वहां पे रहती है। जब ठाकुर जी 4 बजे सोकर उठते हैं तब ये सखी सेवा में फल शरबत मेवा लेकर खड़ी रहती है। 4 बजे ठाकुर जी सो के उठते हैं दिन में। पांचवी सखी है तुंग विद्या सखी, ये सखी चंदन की लकड़ी के साथ कपूर ऐसे महकती है। ये युगलवर के दरबार में नृत्य गायन करती है, ये वीणा बजाने में चतुर है, ये साक्षात माँ गौरी पार्वती का अवतार है। इनका गांव ढबाला है। तो छठवीं सखी है यह इंदुलेखा सखी, ये सखी अत्यंत सूझबूझ वाली है, ये सुनहरा गांव में रहती है। ये किसी की भी हस्तरेखा को देखकर बता सकती है कि उसका क्या भविष्य है। ये प्रेम कहानियां सुनाती है, इनकी गांव आंजनौक यानी अंजन वन है। जो छठवीं सखी है भगवान कृष्ण की, ये हस्तरेखा देखती है, मतलब हाथों की रेखा देखती है और उसका भविष्य बता देती है कि आप कैसे रहोगे, किस प्रकार से रहोगे। ये सखी हस्तरेखा विशेषज्ञ है। सातवीं सखी है ये है रंग देवी सखी, ये बड़ी कोमल और सुंदर है। ये राधा रानी के नैनों में काजल लगाती है और श्रृंगार करती है। इनका गांव राकोली है, इनका काम है राधा रानी के आंखों में काजल लगाना। जो आठवीं सखी है वो है सुदेवी सखी, ये सबसे छोटी सखी है, बड़ी चतुर और प्रिय सखी है। ये सुनहरा गांव में रहती है, ये ठाकुर जी को पानी पिलाने की सेवा करती है। ये सखी सुनहरा ही रहती है, वहां पे गांव का नाम है वो है सुनहरा। तो इस प्रकार लाडली लाल के बरसाना धाम के चारों ओर गोलाकार मंडल में इन सखियों के गांव विराजमान हैं, और बिल्कुल मध्य में बरसाना लाडली महल है। जब भी किसी सखी की आवश्यकता पड़ती उसे शिखर से आवाज लगाकर बुला लिया जाता है। तो जो बरसाना की एक जगह है, आप गए होंगे संजय जी पहले, तो वहां भगवान कृष्ण का मंदिर है और चारों तरफ उसी के अगल बगल सब सखियां रहती हैं। तो जब किसी सखी की जरूरत पड़ती है उनको बुला लिया जाता है और वो अपना काम जो जो काम उनका है वो करती हैं। तो बहुत ही सखी जो है, सखी यानी सहेली, फ्रेंड्स, वो बड़ा अच्छा मोह से काम करे और भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रेम न्योछावर रहता, हर समय तत्पर रहता है। क्यों ना हम एक सुंदर से नगमा की ओर बढ़े और फिर आगे का कार्यक्रम जारी रखें।
0: जरूर राजेंद्र जी, ऐसे सुंदर रूप से आपने, ये अच्छा रूप से आपने जो भगवान कृष्ण का और अष्ट सखियों के अंतर्गत संदेश सुनाए, सुनने वालों अभी हम सब उस ओर बढ़ने वाले हैं जो कृष्ण जी का अंगूठी जो आज का विषय रखा गया है, तो उस ओर हम सब अभी और छलांग लगाने वाले हैं। हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ये सुंदर सा गीत जो शांता जी ने और चुन करके रखे हुए अपने पिटारा से लेकर आए हुए है, राजेंद्र जी जो भारत से हम सबके साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, अभी हम सबके वो विषय की ओर छलांग लगाते। तो राजेंद्र जी, आप इस समय ऑनलाइन हैं।
1: तो अभी जो बात चल रही थी कि अब क्या रहेगा, तो उसी की बात है कि श्री राधा अमृत कथा, श्री राधा जी की अंगूठी की जो अभी कथा है वो राधा जी की अंगूठी की कथा है, अमृत कथा, यानी बहुत पुरानी कथा है, अमृत के समान है, मीठी कथा है, उसी के बारे में बातचीत रहेगी। श्री कृष्ण जी की अनामिका यानी सेकंड जो छोटी उंगली, उसके बगल वाली उंगली को अनामिका बोलते हैं।
0: रजत जी, जिसे हम यहाँ पर रिंग फिंगर कहते हैं ना, रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं,
1: उसको अनामिका या
0: ऐसा
1: अंगुली में एक अंगूठी नित्य झिलमिल करती रहती है, यानी चलक चल चल चलक चल चलकाती रहती है। झिलमिल यानी जब थोड़ा मुड़ते तो उसमें चकाचौंध रहे थोड़ा, तो वो अंगूठी बड़ी अद्भुत है। वो नीले रंग का नग की अंगूठी पारदर्शी है, यानी नीले रंग की अंगूठी है जिसका कलर नीला है, पारदर्शी यानी आर पार देख सके जैसे कांच है। उसे थोड़ा पास से देखने से कितने ही अनंत तरंगों से युक्त श्री राधा रानी की मुस्कुराती हुई छवि दिखाई देती है। वो अंगूठी ऐसी है कि जब वो चलकती है छलकती है तो राधा रानी की जो मुस्कुराहट है उससे एकदम हौर मोए से दिख सके, इस प्रकार रहे। इस अंगूठी की एक अद्भुत बात और है, श्री राधा जी का जो भी स्वरूप श्रृंगार पल पल लगता है, पल पल सुंदरता को प्राप्त होता है, वो सब उस अंगूठी में दिखता रहता है। जब राधा जी का श्रृंगार होता है, श्रृंगार जाने कपड़ा पहनाए जाए या कुछ वो करा जाए, श्रृंगार किया जाए,
0: टूटी भाषा में राजेंद्र जी की सज सज धज जिसे हम कहते हैं ना,
1: सजावट धजावट करी जाए, वो श्रृंगार बोलता है, वो अंगूठी चमकती रहती है और उसमें सब दिखाई देता है, पारदर्शी है ना। एक पल का श्रृंगार हाव भाव उस अंगूठी में दिखता रहता है, जिसे श्याम सुंदर नित्य निहारते हैं, आनंद पाते हैं, आनंद यानी मोई लगिला श्याम सुंदर को, कृष्ण को। वो अद्भुत अंगूठी श्री राधा छवि की श्याम सुंदर से चित्रा सखी से पाई थी। वो अंगूठी कौन दिया था उनको? चित्रा जो सखी है उनकी, उनसे पाए। एक दिन सब मंजरियां यहाँ योजना बनाती हैं कि किस तरह यह अंगूठी श्री श्याम सुंदर से ले ली जाए। तो एक दिन सब लोग योजना बनाए कि भगवान कृष्ण से यह अंगूठी कैसे हम लोग निकाल ले, कैसे ले ली जाए। तो क्यों ना उससे पहले, जैसे किस प्रकार से ले ली जाए अंगूठी, इसको सुनने से पहले एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े, फिर कथा आगे जारी रहेगी।
0: जरूर, जैसे आप कहे राजेंद्र जी, और हम एक सुंदर सा नगमा जैसे आप कह रहे हैं हम प्लेयर पे रख रहे हैं, और फिर ये वृतांत जो आप सुनाने वाले हैं कि श्री कृष्ण जी का अंगूठी और उनका सखा से मिला हुआ, और उसमें क्या संदेश है, अभी हम सब और सभी सुनने वालों के लिए रखने वाले हैं जो आप हम सबको सुना रहे हैं। तो हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ रहे हैं।

0: कृष्णा तेरा जन्म जन्म का नाता। राजेंद्र जी, हम सबको उस ओर ले चलिए जो आज का और शीर्षक जो है, आज का तेमा जो है।
1: हाँ, तो बात चल रही थी कि सब लोगों ने योजना बनाई कि कैसे वो किया जाए, उनसे अंगूठी ले लिया जाए। सब मंजरिया योजना बनाती है कि श्री कृष्ण लसिका मंजूरी को निकुंज द्वार पे खड़ा कर दिया जाए। जो लसिका है मंजरी, उसको एक द्वार है, उसका नाम दरवाजे का नाम रहा, द्वारी का नाम निकुंज द्वार। और जैसे ही नीलमणि अंदर प्रवेश करने की कोशिश करी तो अंदर घुसने न दिया जाए, तब तक उसने उनकी अंगूठी न मिल जाए। कह रहे हैं कि जैसे वो अंदर घुसने की कोशिश करें, उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। तभी लसिका मंजरी निकुंज द्वार पर खड़ी कर दी। जैसे ही नीलमणि अंदर निकुंज में प्रवेश करने लगी, तभी लसिका मंजरी बोली, अरे भाई कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? यह सुन श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो, कौन हो तुम? श्याम सुंदर बोले, अरे कैसी बाबरी हो, मुहे न जाने तू। कह रहे कि अरे तुम कैसे पागल हो गई हो कि मुझे जानती नहीं हूँ, मुहे मजाक पसंद नहीं। कृष्ण कह रहे हैं, वो भाषा है वहाँ की ब्रज भाषा, तो कह रहे हैं कि अरे कैसी बावरी हो गई हो, मोहे न जाने तू, मोहे मजाक पसंद नहीं है, अंदर जाने दे, नहीं तो मेरी श्यामा ब्रह में डूब जाएगी। यानी ब्रह मतलब होता है कि दुख, किसी के दुख प्यार में दुखी हो जाए उसको ब्रह बोले। बोले कि तुम नहीं तो अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं वो ब्रह में डूब जाएगी। फिर मंजरी बोली, हम कैसे मान ले कि आप श्याम सुंदर हो? वो बोले कि हम कैसे माने कि आप ही श्री कृष्ण भगवान, हम न माने ला। तो श्याम सुंदर तो महाप्रेम करुणामयी सिंधु हैं और हमारी राधा के प्राण हैं, और हमने सुना है कि उनका भेष, जो भेष है उनका बना, आजकल निकुंज में बहुत श्याम सुंदर घूम रहे हैं, छलिया भेष में घूम रहे हैं। वो जानबूझ के मजाक करे उनसे बोले कि हमने सुना है कि भगवान कृष्ण जो है उनके भेष में कई लोग झुट्टे ही वैसे भेष बनाए ला और वो चल रहे हैं, इसलिए हमें चाहे मोह से कि कौन असली रहा कौन नकली रहा, वो ये चाहे पता करे। तभी श्याम सुंदर ताली मार कर बोली, बस यही सत्यापित करना है कि हम असली हैं, तो रुको अभी मैं अपने सखागण मधुमंगल श्री दामा को बुलाता हूँ, तो यह बता देंगे कि हम हैं असली श्याम सुंदर, हमारा मित्र मधुमंगल कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो बोले उनका एक मित्र रहा वहाँ मधुमंगल, तो मधुमंगल को ताली बजाए ऐसे दोनों हाथों के ऐसे, तो मधुमंगल तुरंत आए। फिर मधुमंगल बताए कि ये एक कृष्ण है, यही असली है।
0: राजेंद्र जी, आप आपने ताली तो बजा दिया, यहाँ हम लोग जो दनाख शहर में लगभग ये बात को पता चल गया कि किस प्रकार से ताली बजाया हुआ, पर हमारे सुनने वालों जो इस समय सूरीनाम से सुन रहे, इस समय गोवा से सुन रहे हैं और अन्य स्थानों से, एंथोफ शहर से, तो उनको भी इस बात को पता भी चल गया होगा कि किस प्रकार से ताली बजा करके कृष्ण जी ने और ये सवाल किया।
1: जब ताली बजाया तो ब्राह्मण है, बस मधुमंगल का नाम सुनते ही मंजरी और अंदर निकुंज में बैठी सब मंजरिया जोर से अट्ठास करने लगे। अट्ठास मतलब हंसने लग गए जोर जोर से, हा हा हा ऐसा करके हंसने लग गई। मंजरी बोली, ओह हो ओ मधुमंगल, जो दो लड्डू के लिए अपना कहा वचन भी झूठा कर दे। अरे मधुमंगल, ब्राह्मण तो लड्डू का भूखा है, लड्डू दो और जो बुलवाना है बुलवा लो, हम उन पर भरोसा नहीं करेगी। वो बोले कि मधुमंगल पे हम भरोसा नहीं करते, वो ब्राह्मण आदमी है, उसको दो लड्डू दे दे कुछ बुलवा दो, हम ना सच माने ला उनका, क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की

0: सुनने वालों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम यहाँ से कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश ब्रॉडकास्ट किया जाता है दनहाग शहर से। अभी हम सब न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं और कमर्शियल के बाद अभी आज का विषय जो है कृष्ण जी का अंगूठी, इस अंतर्गत में हम सबको और भी संदेश रखने वाले हैं राजेंद्र जी। तो हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं और उसके बाद में फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। सुनने वालों, ये था जो न्यूज़ और कमर्शियल और हम सब फिर दूसरा भाग जो ज्योति का प्रकाश लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी जो भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम सबको ये संदेश रखने वाले कि कृष्ण जी का अंगूठी का जो महत्वपूर्ण बात है उसके हम सब के लिए रखने वाले हैं। तो राजेंद्र जी, आप आगे कार्यक्रम को बढ़ाइए।
1: भगवान कृष्ण से अंगूठी किस प्रकार लिए जाए, ऐसे गोपियां मजाक करती उनसे। तभी श्यामा बोली, चलो अच्छा है तो फिर हम श्री राधा रानी की माई श्री दामा को बुला लाते हैं। जो राधा रानी की माई है दामा, उनको बुला लाते हैं। अगर वो कह दे कि हम असली हैं तब जाने देंगे अंदर। मंजरी बोली, हाँ अगर राजकुंवर श्री दामा स्वामी हमारी स्वामिनी के भाई बोले कि आप असली हैं तो मान लेंगे। तो फिर उन्होंने बुलाया। श्याम सुंदर बोले, तब ठीक है। तब मंजरी बोली, परंतु या हम कैसे मान ले कि आप असली श्री दामा लेकर आओगे, वो भी तो आप नकली वेश बनाकर ला सकते हो। आपने कितनी बार श्री दामा का नकली वेश बनाया है?
0: राजेंद्र जी, श्री दामा यानी कि उनका फ्रेंड।
1: हाँ, श्री दामा जी जो थी उन्होंने बोला कि अगर दामा बोल ले कि ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं तुम नकली दामा बना के लाओ, अगर वो बोलेगा तो हमको वो भी मंजूर नहीं।
0: तो राजेंद्र जी फ्रेंड जो कहते हैं दोस्त उनका, तो यहाँ शांता जी जो पनील के पीछे लगा दिया है गीत, क्यों ना वो गीत के सुन लेते हैं।
1: सुन लेते हैं।

0: लेते हैं कि मुरली वाला जब से मेरा फ्रेंड हो गया, जितने दुख है सब का एंड हो गया है। ये सरल भाषा में यानी कि हिंदी में और अंग्रेजी में इसका भी शब्द इसमें इस्तेमाल की है, पर कितने अच्छे कितने सुंदर एक अलग सा गीत है जो आपने यहाँ सुने पावन हिंदुस्तानी रेडियो में। और अभी हम बात कर रहे थे राधा के भाई,
1: राधा जी के भाई हैं दामा।
0: हाँ श्री, हाँ राधा जी के भाई है दामा।
1: हाँ जी।
0: और
1: कृष्ण जी के मित्र हैं सुदामा।
0: हाँ जी। ऐसे दोनों लिंक लगाने तो ऐसे
1: सू लगाने से सुदामा बन जाता है, और वैसे खाली दामा अगर सू हटा दो।
0: हाँ तो ऐसे हम जल्दी भी भूल नहीं सकेंगे, अगर कहीं सुनेंगे कि दामा तो याद हो जाएगा ये राधा जी का भाई है, तो उसमें ये सोच लेगा सुदामा तो वो कृष्ण जी के मित्र।
1: हाँ जी सही बात।
0: और ये भी है जाने के, कभी सत्संग में मैं सुनी थी कि सीता जी के माता जो है उसकी नाम है सुनैना ना, सुनैना माता जी के नाम सुनैना, और पार्वती के माता जी के नाम है
1: नैना।
0: हाँ तो ध्यान में रखने के लिए तो बहुत आसान है कि नैना और सुनैना,
1: उसमें भी से सू का अंतर है।
0: हाँ देखो ना, हाँ कितने आसान से हम इसके याद कर सकते हैं।
2: जो संदेश सुनाए हैं नैना सुनैना के बारे में, और दामा जो गोपी का भाई है भगवान कृष्ण का, जो मित्र है सुदामा जी, बहुत ही अच्छा लोगों को जो सुनने को मिला। यही पावन हिंदुस्तानी रेडियो के जो प्रोग्राम है ज्योति का प्रकाश, यही एक प्रकाश रहता है कि कुछ ना कुछ नया सुनने को मिले और ज्ञान वर्धक बातें मिले। बहुत ही अच्छा शांता जी और बबली जी, तो हम बात कर रहे थे लस्सी का मंजरी की। तो श्याम बोली चलो न करो भरोसा मेरे मित्र पर, कृष्ण भगवान बोले कि मेरे मित्र पे भरोसा ना करो, तुम बोलो तो अपनी यशोदा माँ को बुला लाऊं कि मैं ही असली हूँ। लस्सी का मंजरी बोली सुन रे तेरी यशोदा माँ बड़ी भोली है, उसने पूतना जैसी राक्षसणी को अंदर घुसा के श्याम को ही उसकी गोद में दे दिया था, तब तो उनको भी बातों में लगा लेगा और बुलवा देगा कि तू असली है। वो बोले कि यशोदा मैया को भी हम ना मान सकेला कि उन्होंने पूतना राक्षसी को अंदर बुला दिया और श्याम को कृष्ण भगवान को उनके गोद में दे दिया था, जो कि इतनी खतरनाक राक्षसणी रहे, तो हम उनको कैसे मान लेंगे कि वो बता दे कि तुम असली हो।
3: राजेंद्र जी आप कह रहे हो पूतना राक्षसनी, कैसे कहते हैं
2: जी राक्षसनी?
3: हाँ
2: राक्षसी
3: पूतना राक्षसी। ये हमारे सुनने वालों इस बात को भी सुन करके शायद सोच में पड़ गए होंगे कि ये पूतना कौन था, ये कैसे उसका नाम पूतना पड़ा, और वो
2: हाँ पूतना राक्षसी जो थी वो कंस की बहन थी, और वो जब कंस ने सुना कि ब्रज में कोई यानी पैदा हो गया जो कि कंस को मारेगा, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से छल से भेजा कि कृष्ण को ही मार दिया जाए, लेकिन वो उल्टा हो गया, वो मारी गई पूतना। तो पूतना का शरीर बहुत विशाल शरीर रहा, जब ऊपर से गिरे तो पूरा जंगल टूट गया पूर्ण गया उससे, तो वही पूतना थी जो जब वो राक्षस के वेश में आई, पहले वो सिंपल स्त्री के वेश में आए तो यशोदा मैया से कृष्ण को ले लिया और दूध पिलाने लगी, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि वही मर गई, और जब वो मरी गिर के मरी तो एकदम कंस को फिर वो लगा कि ना ना ये तो कुछ मेरे अंत होने वाला है, कोई सरल नहीं, तो वही पूतना थी
3: यानी कि देवकी का बहन।
2: हाँ कंस का बहन,
3: कंस और देवकी भाई बहन थे ना।
2: हाँ
3: तो देवकी का बहन यानी मासी लगे ना। राजेंद्र जी आगे संदेश रखिए।